0: किसानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। नमस्कार, लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज सुनिए डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी से जायद में ढीचा उत्पादन विषय पर जानकारी।
1: शुभ प्रभात। जैसे जैसे हमारी खेती आधुनिक हो रही है, वैसे वैसे कुछ नई समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। मसलन फसल उत्पादन में धान गेहूं आधारित फसल चक्र बहुतायत से लोग अपनाते हैं और अपनाते रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें जितनी बड़ी मात्रा में शुरू हो गया है अब पहले की अपेक्षा, उसका मूल कारण यह है कि पहले जो सूक्ष्म पोषक तत्व या जीवांश हमारी मिट्टी में हुआ करते थे, वह धीरे धीरे इन रसायनों के प्रयोग के कारण खत्म होते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यकता वही पुरानी बनती है कि खाद की आपूर्ति के लिए हमें गोबर की खाद या फिर हरी खाद का प्रयोग करने की स्थिति उत्पन्न करनी होगी। ढांचा हरी खाद के रूप में बहुत पहले से उगाया जा रहा है और आज और ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। कारण यह है कि जो भी रसायन हम प्रयोग कर रहे हैं उनके कुप्रभाव को समाप्त करने, फसल को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आगे आने वाली फसल के लिए भूमि की दशा को सुधार करने में यह बहुत बड़ा सहयोग देता है। इसलिए ढांचा की हरी खाद जरूर आप अपनाएं। प्रति हेक्टेयर 60-80 किलोग्राम नाइट्रोजन यह उपलब्ध करा देता है। ढांचे के हरे पौधे में लगभग आप मान के चलिए कि 0.5% से लेकर 0.8% तक नाइट्रोजन, 0.8% फास्फोरस और 0.6% के आसपास पोटाश पाया जाता है। भूमि की भौतिक, रासायनिक, जैविक स्थिति में तो सुधार होता ही होता है। ढांचा

0: में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने से सोडियम लवण हटाकर भूमि की क्षारीयता कम करती है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाएगी और भूमि संरक्षण में इससे सहायता मिलेगी। भूमि और भूमि की तैयारी करनी होगी इसके उत्पादन के लिए, कोई खास बात नहीं होती है, लेकिन एक सामान्य तरीका यही है कि ढैंचा की खेती विविध जलवायु दशाओं में लगभग सभी भूमियों में चिकनी, बालू, रेतीली, कम या अधिक पीएच वाली भूमि में आसानी से की जा सकती है। लेकिन बढ़वार की दृष्टि से बलुई दोमट से दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। क्षारीयता के प्रति प्रतिरोधी होने के कारण इसे 9.5 से 10 pH पर भी उगाया जा सकता है। बुआई से पूर्व भूमि को पलेवा कर लेना बेहतर माना गया है। बुआई का जो समय है इसका धान की रोपाई से 45 दिन का, तो जब भी आप लक्ष्य बनाए हैं धान की अपनी रोपाई का, उससे 45 दिन पहले इसकी बुआई करें, यानी ढांचा बोएं खेत में। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम लीजिएगा, अगर ऊसर भूमि है तो उसमें 60 किलोग्राम। बीज शोधन भी कर लेंगे तो अच्छी स्थिति होगी। बीज को रात भर पानी में भिगोना भी एक बेहतर स्थिति पैदा करता है। बीज छिटक कर सुबह या फिर शाम को बोएं, जब भी एक सामान्य सी स्थिति बने। हाँ, पौधों की बढ़वार के लिए उपयुक्त नमी आवश्यक है, इसलिए वर्षा शुरू होने के पूर्व 1 या 2 सिंचाई की आवश्यकता अमूमन पड़ ही जाती है। सामान्यतः अच्छी भूमियों में उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु बहुत कमजोर भूमि में बुआई के 15 से 20 दिन बाद प्रति हेक्टेयर 20 से 30 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करने से अच्छी खासी वृद्धि हो जाती है, और यही वृद्धि हमें हरी खाद प्राप्त करने में सहयोग करती है। फसल को मिट्टी में पलटना भी आवश्यक होता है। जब फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है अमूमन, तब पलटने वाले हल से इसे पलट दिया जाता है। यदि धान की रोपाई करना हो तो इसके 3 से 4 दिन पूर्व पाटा लगाकर फसल को गिराएं और मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके भूमि में 15 सेंटीमीटर गहराई में दबा दें, 15 सेंटीमीटर पानी भर दें। यदि धान की फसल न भी लेना हो तो भी हरी खाद बनाने के लिए ढैंचा की बुआई करके उसे जमीन में संरक्षित कर सकते हैं। धान के खेत में ढैंचा की हरी खाद प्रयोग करने पर प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत हो जाएगी। अब आप इस स्थिति में समझ सकते हैं कि कितनी यूरिया की बचत आप कर पाएंगे। इसलिए हम पुनः आपसे यही कहेंगे कि इसकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए यह जरूरी है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने तथा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक स्थिति में सुधार के लिए जब हरे तथा बिना सड़े पौधों के किसी भाग या संपूर्ण पौधे को खेत में पलटकर सड़ा दिया जाता है तो इसे हरी खाद देना ही कहते हैं। हरी खाद के लिए कई फसलों का तो प्रयोग करते ही आप, ढैंचा के अतिरिक्त सनई का भी प्रयोग कर सकते हैं, यह भी बेहतर होती है। वैसे जो जायद में मूंग या उड़द बोई गई है उसको भी आप खेत में पलटकर हरी खाद बना सकते हैं।
1: कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जायद में ढीचा उत्पादन विषय पर जानकारी डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी से। कृषि चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। नमस्कार लखनऊ में अब समय है सुविचार का। आज का विषय है पद्मिनी एकादशी।
2: माह में 2 एकादशी होने के कारण वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। परंतु जिस वर्ष अधिक मास या मल माह, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, पड़ता है, तब एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। उन एकादशियों में से एक है पद्मिनी एकादशी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत या उपवास किया जाता है। एकादशी के दिन श्री नारायण की पूजा की जाती है। भगवान को नारियल, नैवेद्य और ऋतु फल का भोग निवेदन कर श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। रात भर प्रभु का जागरण किया जाता है। ऐसा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में जीव वैकुंठ धाम को जाता है। कहा जाता है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी है। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति और दंपत्ति को अजय संतान की प्राप्ति भी होती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत निसंतान दंपतियों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा कृतवीर को भी एक पराक्रमी और अजय पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए मान्यता है कि निसंतान दंपतियों को पद्मिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि त्रेता युग में एक परम प्रतापी राजा थे कृतवीर। उनकी 3 रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी से राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। संतानहीन होने के कारण राजा बहुत दुखी रहते। तब वो संतान प्राप्ति की कामना से रानियों के साथ तपस्या करने गए, परंतु उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। तब

0: रानी ने देवी अनुसुईया से इसका उपाय पूछा। रानी के इस प्रकार कहने पर देवी ने रानी को मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत को करने को कहा। देवी अनुसुईया द्वारा विधि विधान से बताए गए व्रत के अनुरूप रानी ने व्रत रखा और पूजा अनुष्ठान संपन्न किया। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और रानी से वर मांगने को कहा। तब रानी ने भगवान से कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे स्वामी को वर दीजिए। जब भगवान ने राजा से वर मांगने के लिए कहा तो राजा ने कहा कि आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो सर्वगुण संपन्न हो और तीनों लोकों में आदरणीय हो, उसे आपके अतिरिक्त कोई भी पराजित न कर सके। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और कालांतर में यही बालक अत्यंत पराक्रमी राजा कृतवीर अर्जुन के नाम से लोकप्रिय हुआ। कहा जाता है कि पद्मिनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। निर्जला व्रत रखकर व्रत कथा का श्रवण अथवा पाठ करना चाहिए। भजन कीर्तन कर पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए और अलग अलग प्रहर में भगवान को अलग अलग भोग निवेदन करना चाहिए। द्वादशी के दिन व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन सफल होता है और संतान सुख की मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी का व्रत संबंध स्वास्थ्य और मन दोनों से है। एक ओर स्वास्थ्य संतुलन का आधार है तो दूसरी ओर ये मन को एकाग्रचित भी करता है। नियमित रूप से एकादशी व्रत करने से कोई व्याधि आदि नहीं होती। एकादशी व्रत करने से शरीर और मन को बल मिलता है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार पद्मिनी एकादशी। आज हमने जाना पद्मिनी एकादशी के महत्व के बारे में। वाचन स्वर शिवा राकेश का था। आज का सुविचार संपन्न हुआ।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से, प्रत्येक बुधवार सायं 6:30 पर। सुनिए कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और अब समय है आराधना का। तो चलिए आप और हम मिलकर प्रभु के प्रति सच्चे प्रेम और समर्पण की साधना करते हैं, ताकि वो आराधना बन जाए।

आज बुधवार है, भगवान गणपति का दिन, जिन्हें विनायक भी कहा जाता है। प्रथम पूज्य देवता बुद्धि, विद्या, समृद्धि और शुभता के प्रतीक हैं। उनकी कृपा से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए आप और हम भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रभु गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी लाज राखें।

मेरे श्याम घन श्याम, आपकी करुणा का कोई पार नहीं। हे मुरलीधर, हे नटवर, थाम लो मेरी भी वहाँ, तेरे चरणों में ही मिलती है जीवन की सच्ची राह।

जिनकी महिमा अनंत है, जिनके ध्यान मात्र से ही मन को शांति और धैर्य मिले और जीवन में सत्य, सरलता और संयम का संचार हो, ऐसे महादेव को हम सभी का प्रणाम।

माँ अपने बच्चों के हर भाव को बिना कहे जान जाती है। ऐसे ही जगत जननी माँ दुर्गा भी अपने सभी भक्तों के हृदय के भाव को जान लेती है और उनके हर कष्ट को हर लेती है, क्योंकि वो शक्ति

हम सभी प्राणियों पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। आपका दिन शुभता और समृद्धि से भरपूर हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की आराधना संपन्न होती है।

राम नाम का सहारा सब दुखों को हरने वाला है। नमस्कार, लखनऊ में भक्ति रस की धारा को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनिए भाग 184।

पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकेयी की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाए। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थीं। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते, दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते। दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायु वेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। हमारे दिल्ली के

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ में। दोस्तों, हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। तो आज सुनिए स्वास्थ्य के लिए गन्ना विषय पर जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राकृतिक पेय की जो गर्मी की तपिश में राहत का काम करता है और साथ ही शरीर को ताजगी और ऊर्जा से भर देता है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा पारंपरिक और बहुप्रसिद्ध गन्ने का रस है, जिसे भारत के लगभग हर शहर, गांव और नुक्कड़ पर गर्मियों में बड़ी आसानी से देखा और चखा जा सकता है। गन्ना एक ऐसी फसल है जो केवल मिठास नहीं देता बल्कि हमारे शरीर को संतुलित और पोषित रखने का काम भी करता है। जब सूरज की किरणें तेज होती हैं, तब शरीर पसीने के रूप में नमक और पानी

0: होता है। जब थकान, सिरदर्द और चिड़चिड़ापन हमें घेरने लगता है, तब एक गिलास ठंडा गन्ने का रस जीवन दायिनी लगने लगता है। ये केवल स्वाद में मीठा नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक गहरा पोषण विज्ञान भी छिपा होता है। गन्ने के रस में प्रचुर मात्रा में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही कारण है कि लंबे समय तक धूप में काम करने वाले लोग, खेतों में श्रम करने वाले किसान और स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र, सभी के लिए ये रस एक प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। जहां आधुनिक पेय पदार्थ केवल अस्थायी राहत देते हैं और उनमें केमिकल्स और अतिरिक्त शक्कर की मात्रा ज्यादा होती है, वहीं गन्ने का रस एक संतुलित, प्राकृतिक और शरीर के अनुकूल विकल्प है। गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन की समस्या आम होती है। शरीर जब पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स खोता है तो थकावट, चक्कर और लो ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियां सामने आने लगती हैं। ऐसे समय में गन्ने का रस शरीर को फिर से संतुलन में लाने का काम करता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे खनिज तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर के तरल संतुलन को बनाए रखते हैं और मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करते हैं। गन्ने का रस केवल शरीर को ताजगी ही नहीं देता, बल्कि ये लीवर के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। आयुर्वेद में इसे पित्त शामक बताया गया है। जिन लोगों को पीलिया या अन्य लीवर संबंधी समस्याएं होती हैं, उनके लिए गन्ने का रस एक सहज उपचार की तरह काम करता है। इसका शीतल प्रभाव लीवर को ठंडक देता है और विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। गर्मियों में शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। धूप में ज्यादा समय बिताने से हीट स्ट्रोक या लू लगने की संभावना बनी रहती है। गन्ने का रस शरीर की आंतरिक ठंडक बनाए रखने में मदद करता है। ये पाचन तंत्र को भी संतुलन में रखता है। जिन लोगों को एसिडिटी, पेट जलन या मूत्र मार्ग में जलन जैसी समस्याएं होती हैं, उनके लिए ये रस विशेष रूप से लाभदायक होता है। अगर हम इसके और भी गहरे गुणों की बात करें तो गन्ने का रस एक सौम्य मूत्रवर्धक भी है। ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है और किडनी की कार्य प्रणाली को सुधारता है। साथ ही ये पेशाब की जलन, मूत्र की रुकावट और बार बार पेशाब की समस्या में भी राहत देने वाला माना गया है। गन्ने के रस को नींबू और पुदीने के साथ लेने से इसके गुण और भी बढ़ जाते हैं। नींबू न केवल स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि विटामिन सी प्रदान करता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत करता है। वहीं पुदीना शरीर में ठंडक बनाए रखने में मदद करता है और पाचन को भी बेहतर करता है। इस तरह एक गिलास गन्ने का रस कई रूपों में शरीर को फायदा पहुंचाता है। पोषण से लेकर शीतलता तक, पाचन से लेकर प्रतिरोधक क्षमता तक। श्रोताओं, आज जब हम बड़े बड़े ब्रांड्स के शीतल पेय से घिरे हैं, ऐसे में हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे देश की मिट्टी ने हमें पहले से ही इतने सारे पोषक और लाभकारी पेय दिए हैं, जिन्हें अपनाकर हम न केवल स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि अपने पारंपरिक ज्ञान को भी सम्मान दे सकते हैं। हाँ, एक बात जरूरी है कि गन्ने का रस ताजा ही पिएं, उसे अधिक देर तक खुला न रखें, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया जल्दी पनप सकते हैं। यदि किसी सड़क किनारे की दुकान से रस ले रहे हों, तो साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। घर में भी अगर मशीन है तो खुद रस निकालकर पिया जाए तो सबसे बेहतर होगा। तो अगली बार जब गर्मी सताए, शरीर थका थका महसूस हो या मन सुस्त लगने लगे, तो किसी महंगे बोतल बंद पेय की ओर न भागे, बल्कि एक गिलास ताजा गन्ने का रस पीकर देखिए। ये न केवल आपके शरीर को ऊर्जा देगा, बल्कि भारत की मिट्टी से जुड़ने का एक मीठा एहसास भी कराएगा। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य के लिए गन्ना, विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम और लीजिए अब सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय। इसका प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। हिंदी कार्यक्रम का समय होगा रात 8 बजे। आज आप सुनेंगे हर गोविंद से काव्य पाठ, वाचन एवं संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का होगा।

सुगम संगीत कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 8:10 पर। आज आप सुनेंगे बेला सुलाखे के गाए भजन। शाम 7:31 पर समय होगा कार्यक्रम कानून की बात का। सुबह 9:15 पर आप सुनेंगे जिले की हलचल। आज के जिले हैं उन्नाव और भदोही। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समाप्त फरमाइएगा खुसूसी प्रोग्राम। पेशकश आकाशवाणी गोरखपुर की होगी। लोकगीत के कार्यक्रम लोकरंग में आप आनंद ले सकेंगे डॉक्टर भक्ति शुक्ला के गाए अवधि लोकगीतों का। समय होगा सुबह 9:50 और दिन में 2:45 पर लोकमाद्री कार्यक्रम में। मैंने सुनेंगे अपना कार्यक्रम आंगनवाड़ी दिन में 1:15 पर। आज सुनिए वार्ता, महामारी के दौरान स्वच्छता का रखे खास ध्यान, इन्फेक्शन और बीमारियों से रहेंगे दूर। विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर नीरू मित्तल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, और उनसे भेंट करेंगी नीना सोनकर। दिन में 2:30 पर हाजिर होंगे कार्यक्रम विज्ञान और किसान लेकर। आज सुनिए भेंट वार्ता, कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में सावधानियां, जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर लाल बहादुर यादव, और आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा तरंग। नई उड़ान कार्यक्रम का समय होगा शाम 5:45। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो किसान। कार्यक्रम में आज किसान भाई जानेंगे खरीफ उत्पादन की उन्नत तकनीक, जायद फसलों में सामायिक कार्य, समन्वित नाशी जीव प्रबंधन, कृषि रक्षा रसायनों का सुरक्षित प्रयोग। इन सब विषयों पर जानकारी देंगे डॉक्टर रमेश कुमार मौर्य, अपर कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश। प्रस्तुति एवं संचालन होगा डॉक्टर सुशील कुमार राय का। समय समय पर श्रोता आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम का चित्रपट से। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7:31 और रात्रि 10:30 पर। रात्रि 10:00 हमारे श्रोता सुनेंगे पुराने फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों की। नमस्कार, लखनऊ में अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। नमस्कार, लखनऊ में अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम विविधा का। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम नित नई नई जानकारियाँ और ज्ञान से भरपूर लेकर आते हैं विविधा कार्यक्रम को। आज के इस विविधा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मैं आपकी रेडियो सखी श्रद्धा। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हमारी आज की विविधा का विषय है एनर्जी ड्रिंक्स और हमारी युवा पीढ़ी।

बिल्कुल साथियों, आजकल के युवा सब कुछ तुरंत पा लेना चाहते हैं, चाहे वो कामयाबी हो या एनर्जी, हमेशा शॉर्टकट की तरफ भागते हैं। और आजकल के युवाओं में एनर्जी ड्रिंक्स का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि देर तक जागना है, तत्काल ऊर्जा मिल जाए, थकान कम हो जाए और सोशल मीडिया के भ्रामक विज्ञापनों में फंसना और खुद को कूल दिखाने की दिखावटी प्रकृति, ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से युवाओं में एनर्जी ड्रिंक्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है। पहले तो हम स्वाद स्वाद में पीते और फिर हमें इसकी आदत हो जाती है। तो साथियों, हम जान लें कि ये एनर्जी ड्रिंक्स है क्या। विशेषज्ञों के अनुसार एनर्जी ड्रिंक्स में उच्च मात्रा में कैफीन और चीनी होती है, जो मानसिक सतर्कता और शारीरिक ऊर्जा को तो तुरंत बढ़ा देती है, लेकिन इसके अत्यधिक सेवन से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। युवावस्था में इनके अत्यधिक सेवन से रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, ये एनर्जी ड्रिंक्स की आदत हमें एडिक्शन की ओर भी ले जाती है, जो कि एक तरह से नशे की लत की तरह है, जिसमें हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और हमें गलत राह पर भी ले जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो प्राकृतिक नहीं है उसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। इसीलिए कहा गया है, जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन। तो साथियों, इनके सेवन से हमारी सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है, सही गलत का निर्णय भी नहीं कर पाते और अक्सर युवा अपराध की ओर बढ़ जाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, इनके इन एनर्जी ड्रिंक्स के अत्यधिक सेवन से मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक चिंता, घबराहट और सिरदर्द का ये कारण बनते हैं। साथ ही चिड़चिड़ापन भी इनके सेवन से बढ़ता है और अनिद्रा की समस्या भी उत्पन्न होती है और पाचन और दांतों की समस्या भी, क्योंकि अत्यधिक अम्लता और चीनी के कारण पेट की दिक्कतों के साथ दांतों के इनेमल को भी नुकसान होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि एनर्जी ड्रिंक्स किसी भी रूप में पौष्टिक आहार का विकल्प नहीं है। कई संस्थान युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के प्रति आगाह करते हैं। आजकल के युवा स्वाद और सेहत के विकल्प में स्वाद को चुन लेते हैं, लेकिन उन्हें समझना होगा कि प्राकृतिक ऊर्जा हमेशा बेहतर होती है। पर्याप्त नींद, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम के माध्यम से स्वास्थ्य को बिना किसी कृत्रिम नुकसान के दीर्घकालिक रूप से ऊर्जावान बनाया जा सकता है।

बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले तंदुरुस्ती 100 की सीधी एक बात। तो क्यों ना हम आज से ये प्रण लें कि ऐसे एनर्जी ड्रिंक से दूर रहेंगे जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और उन पेय पदार्थों को अपनाएंगे जो हमारी सेहत के लिए लाभकारी हैं।

जैसे गन्ने का रस, नारियल पानी, बेल का शरबत, सत्तू शरबत, लस्सी, मट्ठा, ताजा जूस, ये वो प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक्स हैं जो हमारी सेहत को लंबे समय तक ऊर्जावान रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप रखेंगे अपनी सेहत का ध्यान। इसी वादे के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और दिन इसी समय। तो आज की विविधा में बस इतना ही। दीजिए अनुमति अपनी दोस्त श्रद्धा को। नमस्कार।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किया उच्च स्तरीय समिति का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे समिति की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे हुए केंद्र सरकार के 12 वर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है ये दौर। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज और लखनऊ में महापौर के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में तेज धूप, भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव

0: की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। एक रिपोर्ट।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी है मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2014 में कल ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष बताया।
3: मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा को नई गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके विस्तृत चर्चा की। इस दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बीच CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया। साथ ही नगर निगम के नए लोगो का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यूनेस्को द्वारा प्रयागराज महाकुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थान दिए जाने की उपलब्धि के बारे में चर्चा की।
4: जब 19 में हमारी सरकार को पहली बार प्रयागराज कुंभ के आयोजन को करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके प्रयास से प्रयागराज के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता के अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता देकर के हमारी पूर्वजों की इस परंपरा को, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के इस आयोजन को वैश्विक मान्यता देने का काम किया था।
0: मुख्यमंत्री ने गंगा दशहरा के अवसर पर कल प्रयागराज में संगम तट पर मां गंगा का दर्शन पूजन किया और आरती

0: में भी शामिल हुए। उन्होंने प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री योगी ने नगर निगम में महापौर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में 3रा स्थान मिला है, हमें इसे पहले स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों और नगर निगम ने पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना।
1: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती है, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर कल विशेष अनुष्ठान किए गए। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ 56 भोग लगाए गए। हमारे अयोध्या प्रतिनिधि ने बताया कि वहां दिनभर विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में कल भी दिनभर तेज धूप, भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहा। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किया उच्च स्तरीय समिति का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे समिति की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे हुए केंद्र सरकार के 12 वर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है ये दौर। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज और लखनऊ में महापौर के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में तेज धूप और भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। नमस्कार, लखनऊ में अब समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। लीजिए आज सुनिए रामचंद्र भागवत का वायलिन वादन।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। नमस्कार, लखनऊ से आप दीजिए अनुमति। सुबह के 8 बजे हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति

0: समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने

0: सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग यूआरएल पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
1: सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा गैट के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि गैट के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है।

0: आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। सुबह के 8:15 और 10 सेकंड हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम यंग वरेली।

0: श्रोताओं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कार्यक्रम यंग बरेली में। श्रोताओं कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि आकाशवाणी बरेली आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा है और आपके कानों में गीत संगीत का मीठा मीठा रस खोल रहा है। साथियों कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। जीवन में कुछ करने के लिए हमारे मन में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक चाह होनी चाहिए, तभी हमारे लिए राहें खुलती नजर आती हैं। सिर्फ मन में सोचने से कुछ भी हासिल नहीं होता। आज करके यंग बरेली में हमारे साथ एक अचीवर हैं, यश सक्सेना, जिन्होंने साइंस का एक प्रोजेक्ट बनाया और उसे राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस अवसर पर हमने उनसे बात की, तो वही सुनते हैं ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम यंग बरेली में आज हमारे साथ यंग अचीवर हैं यश सक्सेना। यश, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर।
0: आपका जो एक प्रोजेक्ट है साइंस का, उसको भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF द्वारा जो संस्था है, राष्ट्रीय पहल है, उसमें आपका जो प्रोजेक्ट है उसको पुरस्कार से नवाजा गया है, उसका चयन हुआ है। कैसा लग रहा है आपको?
1: सर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।

0: है और जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा है उसके लिए, और मुझे और इनकरेज करा है इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
1: आपकी सोच वैज्ञानिक है, कैसे आप इंस्पायर जो मानक है इस ओर,
0: जी
1: आपको किसने प्रेरित किया, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे?
0: सर, मेरे को मेरे स्कूल ने इस बारे में बताया था और उनने मुझे इस बारे में आगे इंकरेज भी करा कि मैं इसमें पार्ट लूं। मेरा पहले से ही कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए फिर मैंने जब ये मुझे एक प्रोजेक्ट का आइडिया आया साइन लैंग्वेज डिटेक्टर और जनरेशन का, तो मैंने इसमें पार्ट करा और
1: जी
0: मेरा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया फिर।
1: यश, ये इंस्पायर मानक जो है वो क्या प्रक्रिया है और किस तरह से ये छात्रों के लिए उपयोगी है, प्रेरित करती है या उनका सहयोग करती है?
0: जी सर, इंस्पायर मानक जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट हमारी गवर्न करती है और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भी इसमें पार्ट लेता है। ये बेसिकली यंग आइडियाज को, न्यू न्यू इनोवेशंस को इनकरेज करने के लिए है और उसमें स्टूडेंट्स और आगे बढ़े, नए नए आइडियाज सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए आए, उस पे बच्चों को प्रोत्साहित करता है। इसमें 6 to 12 तक बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैटेगराइज होते हैं बस। जैसे किसी का प्रोजेक्ट अच्छा इस लेवल तक होगा तो वो इस क्लास से आ सकता है। जैसे मेरा प्रोजेक्ट जो था साइंस का, वो 12th क्लास में मेरा सबमिट हुआ है, ऐसे करके 2008 और 9 to 12।
1: जी अभी आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं?
0: मैंने सर इस साल 12th पास करा है।
1: 12th में कौन कौन से विषय रहे थे आपके पास?
0: मेरे पास अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज एंड कंप्यूटर साइंस।
1: तो आपका रुझान कंप्यूटर साइंस की ओर है।
0: जी
1: यश, बहुत खुशी की बात है कि आपने 12th पास कर लिया है और ऐसे वक्त में रुचि भी थी कि हम कुछ बेहतर करें अपने जीवन में, और इस दौरान आपका जो प्रोजेक्ट है साइंस का वो भी नेशनल लेवल पर उसका चयन हुआ है, तो आप वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। आपके माता पिता, आपके स्कूल के टीचर्स और आपके जो गुरुजन हैं, आप परिवारजन हैं, यही हमारी कामना है कि आप जीवन में बहुत आगे जाएं और हमारे देश के लिए बहुत सी चीजों का आविष्कार करें, चीजों को बनाएं जो देश हित में रहें। अभी क्या करने का विचार है इस 12th के बाद?
0: सर, फिलहाल तो अभी मैं कंप्यूटर में मेरी रुचि है तो मैं उसी में ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी करूंगा और इसी प्रोजेक्ट पे मैं काम करने का सोच रहा हूँ। इसी में और ज्यादा इनोवेशंस और इसी को और अपडेट करना चाहता हूँ।
1: क्या गवर्नमेंट की ओर से आपको कोई मदद मिलने वाली है इस दौरान जब आप पढ़ाई करेंगे?
0: जी सर, मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 रुपीज का अवार्ड मिला है जो मैं इस प्रोजेक्ट में अपना लगा सकता हूँ, और जैसे जैसे क्लियर होते जाएंगे मुझे अवार्ड सपोर्ट मिलता जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से।
1: सरकार कोई इस तरह की कोई स्कॉलरशिप भी करती है जो बच्चे इस तरह से योग्य हैं के लिए? कोई स्कॉलरशिप भी इंस्पायर नाम से चल कोई है?
0: जी सर, उसका है, वो मेरा स्कूल मेरे को इन्फॉर्म करेगा उस बारे में, क्योंकि अभी तो मेरा स्कूल लेवल क्लियर हो चुका है। जब मैं एडमिशन लूंगा तब उस टाइम पे मेरे को सरकार से मदद मिलेगी, किसी
1: जी,
0: कॉलेज या जिस भी किसी भी कोर्स में मैं जब अप्रोच करूंगा उस टाइम पे।
1: अभी जब आपका नाम अखबारों में आ रहा है और रेडियो पर आपकी बातचीत चल रही है तो कैसा लग रहा है आपको? आपके आसपास के जो लोग हैं, छात्र हैं, आपके साथी हैं, जो आपके टीचर्स हैं, बधाई दे रहे हैं आपको?
0: जी सर, बहुत अच्छा लगा है, सब लोग बहुत बधाई दे रहे हैं, सब लोग बहुत खुश हैं।
1: जब आसपास के लोग आपको बधाई देते हैं तो कितना अच्छा लगता है यश?
0: मुझे सर वैसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत से लोग आसपास जो मेरे बच्चे हैं और जो मेरे साथ कॉलोनी में साइड में रहते हैं, वो लोग भी और ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, और मुझे वो ये देख के भी अच्छा लगता है कि मतलब लोग इतना ज्यादा वो करते हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी अप्रिशिएट करा, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।
1: अब आप पर जो लोगों की उम्मीदें हैं, चाहे वो फैमिली की हो, आपके स्कूल की हो,
0: जी
1: और कितना खरा उतरना चाहेंगे आप जब आपका, देखिए आपका जो साइंस का प्रोजेक्ट वो भी चयन उसका हो ही गया है, और
0: हाँ जी
1: आपको तो अब आपको कितनी जिम्मेदारी निभानी है? आप कितना सोचते हैं मन में कि नहीं, आप तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे कुछ करना ही करना है देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए? क्या सोचते हैं इस बारे में आप?
0: सर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो अब है क्योंकि अब मैंने जिस चीज में पार्ट लिया है तो, और मुझे अप्रिशिएट भी करा जा रहा है स्टेज पे इतना ज्यादा, आपने भी बोला कि मुझे अप्रिशिएट करा, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेंस आ जाता है कि हाँ अब अगर कोई चीज स्टार्ट करी है तो मैं उसको मैक्स लेके जाऊं, उसमें जितना मैं कर सकता हूँ कंट्रीब्यूट करूँ अपने देश में, जितना कंट्रीब्यूट मैं कर सकता हूँ सोसाइटी में, मैं वो मैक्स टू मैक्स जितना मैं कर सकता हूँ बिल्कुल करूंगा सर।
1: जो इस वक्त छात्र 12th में हो या हाई स्कूल में है या 6 to 8 में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो भी अगर साइंस में रुचि रखते हैं, है ना,
0: जी
1: तो वो किस तरह से वो भी अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाए तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा?
0: सर, मेरा ऐसा मानना है जैसे आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो ऐसे बच्चे इसको बस एक शॉर्टकट की तरह ना देखें, बल्कि

0: एक मतलब पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह इसको रिस्पॉन्सिबली यूज करें
1: जी
0: और इससे नए नए इनोवेशंस करने का ट्राई करें, तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगा और हमारे देश में भी बहुत ज्यादा मदद होगी।
1: बिल्कुल, बहुत आपसे बात करके अच्छा लग रहा है इस समय हमेश सक्सेना जी,
0: थैंक यू।
1: और बहुत खुशी वाली बात है आपके लिए, दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आकाशवाणी जो परिवार है वो आपके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता है, और आप अपने जीवन में जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं और इस क्षेत्र में आप खूब आगे बढ़े, आप अपने जीवन में अनंत ऊंचाइयों को छुए, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और
0: थैंक यू सर।
1: हमें समय देने के लिए यश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। धन्यवाद,
0: थैंक यू सर।
1: वेलकम।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यंग बरेली। समय हुआ है 8:29:07। श्रोताओं, कार्यक्रम है यंग बरेली, तो हमारे जो यंग लोग हैं, जो यंग हमारे साथी हैं, अभी देखिए अभी हाल ही में 12वीं के रिजल्ट आए हैं, है ना, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हों। तो अब हमारे बहुत सारे साथी सोच रहे हैं भाई अब क्या करें हम इंटर के बाद, क्या करें हम 12वीं के बाद। तो बता दें भाई, अब जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार रोहिलखंड विश्वविद्यालय में जो कृषि संकाय है उसमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीएससी और एमएससी के लिए प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो गई हो। तो अगर आपको रुचि है कृषि संकाय में पढ़ने की, तो भाई आप भी इसमें प्रवेश ले सकते हैं और अपने करियर को संवार सकते हैं। आप www.mjpru.ac.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो शिक्षा है कृषि की, उसमें एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर और जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग शामिल है। तो आप चुकिए मत, सोचिए मत, अगर आपका मन करता है तो आप भी कृषि संकाय में यानी कि बीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी हमारे साथी प्रवेश लेना चाहते हैं तो भाई प्रवेश आप ले लीजिए।

बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम यंग बरेली में एक बार फिर से आपसे रूबरू हो रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से। तो हम बता दें आपको कि कल अगर कहीं आपको जाना हो यानी कि 28 मई को, तो भाई थोड़ा जल्दी करिए क्योंकि कल से यानी कल भर ही बरेली में सवेरे 5 बजे से लेकर डायवर्जन लागू होगा। हो सकता है आप जहां से जाना चाहते हो वहां मार्ग बंद हो, है ना, तो थोड़ा पहले निकले ताकि आप वहां पहुंच के वापस तो हो सके टाइम से। तो कल ये जो बरेली यातायात पुलिस है उसने ये नियम व्यवस्था लागू की, कल ईद है या फिर कल नमाज रहेगी, तो इस दौरान जो ट्रैफिक पुलिस ने ये जो नियम है वो बनाए हैं, शहर में जो भारी वाहन है उनका प्रवेश नहीं होगा और नमाज के वक्त कई जगह पर वाहन पर रहेगी रोक। इसके अलावा जो रोडवेज बसे हैं उनके भी मार्ग बदल दिए जाएंगे। तो अगर कहीं जाना है आपको जल्दी तो भाई पहले आप निकलें ताकि आप पहुंच के पता कर लें कि सही मार्ग क्या है आपके जाने का।

शुभम, अगर बात करें मौसम की तो आज बरेली के मौसम में जो अधिकतम तापमान की उम्मीद है वो 42 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, और साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके अलावा तेज गर्म हवाएं भी चलने की संभावना है, और 29 मई से इस मौसम से थोड़ी राहत के आसार नजर आ रहे हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमारा, हमें आप जरूर लिखें अपने पत्रों के माध्यम से। हमारा पता है कार्यक्रम आपका पता मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन नंबर है 2430001। और अब इस कार्यक्रम से आपका दोस्त चैतन्य मोदी, नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यंग बरेली। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मैं अविनाश सिंह, जिलाधिकारी बरेली, आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत कलाकार थी अनिता द्विवेदी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं और अब आपको जोड़ रहे हैं विविध भारती प्रसारण सेवा कार्यक्रम से, रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
2: सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने संतराल के बाद।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। शाशा तिरुपति और अरिजीत सिंह की आवाज में अतरंगी रे फिल्म से ये गाना इरशाद कामिल के बोल या रहमान का।

बकरीद इस्लाम धर्म का प्रमुख और पवित्र त्यौहार है। अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की भावना के प्रतीक बकरीद पर्व की ढेर सारी बधाई।

0: रॉक स्टार फिल्म से आप सुन रहे थे एआर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाज में ये गाना, इशाद कामिल के बोल, एआर रहमान का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं, जरा याद करो कुर्बानी।
0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं नील एंड निकी फिल्म से, सोनू निगम, महालक्ष्मी अय्यर, क्लिंटन सेरिजो, डोमिनिक सेरिजो की आवाजों में अन्विता गुप्तन के बोल और संगीत है सलीम सुलेमान का।

0: क्यों भाई?
1: गर्मी के मौसम से तो हम सब बेहाल हैं ही, लेकिन अब लग रहा है लव का सीजन भी स्टार्ट हो रहा है। यकीन नहीं आ रहा? आ जाएगा यकीन, अगला गाना सुन लीजिए। लव ब्रेकअप्स जिंदगी फिल्म से बेनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल, सलीम सुलेमान का म्यूजिक।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी

0: को चूमे जब चले तू।
1: सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी, 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हाँ कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म।

दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल।

करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है।

जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, जो फिल्म में बिरजू की माँ का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह कर लिया।

सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती, डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार। सुनील दत्त के करियर के कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब बी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुमराह,

सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं।

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: बोला, तुम गाने में हमको हराया,
2: हाँ,
1: तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या?
2: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
1: तुम खोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम हमारा खोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: इसे काय को झगड़ा करना जी? आमा, बोला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
2: तुम ठीक कहते हो।
1: देखो, एक चौकरा एक चौकरी गार्डन में घूमता है, तो फिर कबाब में अड्डी काय को?
2: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
1: बोला आगे नहीं आना।
2: हम आएगा।
1: आगे नहीं आना।
2: आएगा।
1: तुम आगे आएगा?
2: आएगा।
1: तुम आएगा?
2: आएगा।
1: अच्छा, तो फिर हम पीछे जाएंगे जी।
2: अबे तुम कैसे पीछे जाता है? ये कसर का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार।
1: यो यो यो यो यो।
0: सन 1965 फिल्म

सन 1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल राय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है जो उनसे ये गाना सुन रही है।

दौर ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थीं। तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते हैं प्यार के।

इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई थी।

किया। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की यह फिल्म है, रेशमा और शेरा। संगीत जयदेव।

सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा, सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए, सन 1976 नागिन, सन 1979 जानी दुश्मन और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान। सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया, रॉकी। 26 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई फिल्म रॉकी, जिसके जरिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थी। इधर रॉकी फिल्म रिलीज हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की मां नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए।

0: अपने जीवन के इस दुख को सुनील दत्त ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जगजीत, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात कर ली जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।
1: एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
0: 90 के दशक में सुनील दत्त की दो बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आगे चलकर सन 2007 में आई राजकुमार हीरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई MBBS, ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहां उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी मुसीबत से

हारे नहीं, डटे रहे और अपने निजी जिंदगी की मुसीबतों के बावजूद समाज की बेहतरी के लिए लगे रहे। सुनील दत्त को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। जी हाँ, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। आइए सुनते हैं हमारे श्रोता प्रदीप जी के ये विचार।
1: नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही खास दिन है, उस आवाज का जन्मदिन जिसने पीढ़ियों को जोड़ा है। ये आकाशवाणी, ये शब्द सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि हम भारतीयों की भावना बन चुके हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मैं इस महान संस्थान और इसके पीछे के उन अनगिनत कलाकारों, पत्रकारों और तकनीशियनों को बधाई देता हूँ। रेडियो के उस छोटे से बक्से से निकलकर आज डिजिटल दुनिया तक आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, मनोरंजन का जो सफर तय किया है वह अतुलनीय है। जय हिंद। 90 साल का बेमिसाल सफर, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य को सार्थक करते हुए आकाशवाणी ने अपने 9 दशक पूरे कर लिए हैं। खेती किसानी से लेकर खेल के मैदान तक और शास्त्रीय संगीत से लेकर मन की बात तक आकाशवाणी हर भारतीय के दिल की धड़कन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आकाशवाणी को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां। कार्यक्रमों के नाम लेकर उन सभी आकाशवाणी से जुड़े कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहता हूं। सबसे पहला जो कार्यक्रम आता है हवा महल, बहुत ही लोकप्रिय रेडियो नाटक और प्रसारण है। बिना का गीतमाला फिल्मी गीतों का ऐतिहासिक काउंटडाउन है। मन की बात प्रधानमंत्री जी का संवाद है। किसान बाड़ी कृषि जगत जानकारियां हैं। युववाणी युवाओं के लिए समर्पित मंच है। चौपाल ग्रामीण जीवन और लोक कलाएं हैं। सैनिकों के लिए सरहद पर तैनात जवानों का पसंदीदा प्रोग्राम है। प्यारे दोस्तों, आकाशवाणी का जो मेरे जीवन का लगाव है, मैं आज 49 ईयर्स ओल्ड हो चुका हूँ। मैं 49 साल

0: का हो गया हूँ और 12 जुलाई को पूरे 50 वर्ष का हो जाऊंगा। तो जिनमें मुझे याद है कि मैं 4 दशक से तो खूब अच्छे ढंग से इस आकाशवाणी के साथ जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से मेरा दिली लगाव है, इसके बिना मेरी सुबह शुरू नहीं होती है। एक सच बताना चाहता हूँ, मैं एक समाचार पत्र में रिपोर्टर भी हूँ, मैं एक निजी विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ, मैं इस व्यस्त जीवन शैली में समाचार वितरक के रूप में भी कार्य करता हूँ, लेकिन मैं जब सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे उठ जाता हूँ तो प्यारे दोस्तों, ये आकाशवाणी मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा हमसफर मुझे अपने साथ जोड़ लेता है और मैं इसकी ध्वनि तरंगों से अपने आप को एक ऐसे समूह के साथ जुड़ा पाता हूँ और नई नई जानकारियों का मैं आनंद उठाकर अपना वर्ग पूरा करता हूँ। मैं आवाज की दुनिया के उन दोस्तों को सलाम करता हूँ और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को 90वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। आज मेहमान थे प्रदीप। लीजिए अप्रस्तुत कार्यक्रम आपकी पसंद। तो श्रोताओं, आपके बहुत सारे कमेंट्स इस कार्यक्रम के माध्यम से हम शामिल करने जा रहे हैं। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं, फिल्म का नाम है धर्मात्मा और इस गीत को सुनने की पसंद हम तक भेजी है। आप हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गायबा मल्होत्रा, भाई सच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव। ये हैं ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज भटकूजर, कैलाश मिस्त्री, गोरधन धरा, इष्ट घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का। आप हैं सदर शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ जी, और ये पसंद है गंजनवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी और मोहम्मद उस्मान अंसारी। ये पसंद भेज रहे हैं पदमा डाकिज ने पढ़ा रहे हैं बिसे, सुदन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। आप है श्रीरामपुर भोकर महाराष्ट्र से पत्रकार भाई हैं हरिभाव बिडवे, निकेतन सोनवड़े, शुभांगी श्रावण और अनीता विडवे। ये है अवधूत कुमार दीक्षित, मणिनाथ बरेली से हमें लिख रहे हैं। और ये हैं बरेली एमपी से हुकुम करमकर, साथ में हैं सुनीता करमकर। टेरोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। आप लिख रहे हैं पदम पुजला, श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कृति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर यूपी से हैं मुकेश कश्यप, नीलम कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। ये हमारे साथी हैं वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख और करोला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और शेब खान साहब। आप हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा हमें लिख रहे हैं। और ये साथी हैं गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी। ये हैं जिला खरगोन सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, यशी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितूर, मुकेश और जगताप। गांव बांडी वाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, साथ में रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। आप हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी लिख रहे हैं नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से। और ये

साथी हमारे हैं मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, गांव थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीतार गीता, और आप हैं मतलब महाराष्ट्र से विजय सोलकर, रतनमाला सोलकर और आरती कुमारी। हांसी से हैं राजीव मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू बाबू, और आप हैं जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और दिशानी और निमित आहूजा। आप हैं भोपाल राजस्थान से रेमंद छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। आप हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और एमपी से उमंग मलिक, आकाश मलिक और माही मलिक लिख रहे हैं मयूर कटीला से। ये साथी हमारे हैं आर नगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोर जंगेल, अली जंगेल, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और अनंदनी जंगेल। धमधमा ग्राम कला से हैं अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आयुषि जंगेल, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। आप हैं ग्राम वीरपुर पोस्ट बिलसड़, तहसील एटा से हैं, अलीगंज से उत्तर प्रदेश से मिस्त्री विनोद कुमार शाह के, सपना शाह के, रविंद्र शाह के, राजेंद्र शाह के, राजेश मिस्त्री, रमेश चंद्र शाह के, राजीव टेलर और प्रदीप भाई, रंजीत, सिद्धार्थ शाह के, सुजाता शाह के, कुमारी संगमता शाह के, कुमारी प्रज्ञा शाह के, कुमारी प्रतिज्ञा शाह के, इनके माता पिता और समस्त शाह के परिवार। आप हैं अंडार नांदघाट चित्तगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी और भूपेश राज में दीपेश वर्मा। आप हमें लिख रहे हैं, ये पसंद भेज रहे हैं, अपनी गांव है गढ़ी कुटाहा जिला पंचकुला हरियाणा से सजन अंसारी, नसीबन बेगम, सानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा अंसारी, उमर अंसारी और समीना अंसारी। ये पसंद तक पहुंची है रंगनी से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से हैं मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सजदरानी और हिना कौशल जी। आप हैं नई बस्ती कैंडवारा से हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। आप हमें लिख रहे हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, मायादेवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। ये हैं नारायण प्रधान। राम ब्रह्मपुर बुगाड़ा गंजम से लिख रहे हैं और ये हैं आशीष चौधरी साहब हमें लिख रहे हैं, साथ में हैं अदीब और काजल चौधरी, ये हमें लिख रहे हैं बिजनौर से। ये हैं ओखला संगम बिहार दिल्ली से राधेश गुप्ता, बबीता राधी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदर गुप्ता। ये होली चौक उत्तम दिल्ली से जयराग खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल और सभी साथी इनके। आप हैं बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से राज्य से हैं रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, मेरी स्वाती माखीजा हम और महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा खुटकी, शरद कुमार डोडवानी एवं पूरा माखीजा कुटुंब परिवार है इनका। आप हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी से शाहदरा से हैं दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष कुमार, चैतन्य मस्कीन और मेधा मस्कीन। तो सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। आकाशवाणी बरेली हरदम आपके साथ। कार्यक्रम में आप सुनवाने जा रहे हैं आपको फिल्म का नाम है साजन। इसे गाया है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और गाया है अलका याग्निक ने। पसंद आप सभी की। आप हैं सहारनपुर से राधा नामदेव, अपना नामदेव, अभिषेक नामदेव और साथ में है हर्ष शर्मा। निकट बिजली घर से हैं मीरगंज से भाई कल्लू मिस्त्री, मोहम्मद नईम, हमजा, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद नसीम एडवोकेट, दानिश भाई, बाबर अजीम और अनाबिया फातिमा। और इसी गीत के लिए हम तक ये पसंद पहुंची है आप सभी साथियों की। आप हैं साथी हमारे, हमें लिख रहे हैं गांव हीरा वाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पर्वती, हिमांशु गोदारा और सभी साथी इनके। आप हैं कटाचांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनुकलाल मौर्य, प्रकाश मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य, स्वाति मौर्य का ये पता हम तक उन्होंने भेजा है। पसंद अपनी शेरवानी स्कूल को द्वारा यूपी से आफ्ताब अंसारी है, रियाज भाई, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लोबना अंसारी और आलिया अंसारी का। आप पसंद भेज रहे हैं अपनी। साथी हमारे हैं डावकी रोड अकोला से सुजीला देवी हैं मधुरकर, साथ में हैं कुमार गौरव मधुरकर और सदानंद मधुरकर। ये हैं साथी हमारे बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, शक्रांति चौहान, रितेश कुमार और साथ में राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान। ये हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, शशि घटे, जयश्री मेहरत्रे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा, साथ में है रामनिवास अग्रवाल और धनंजय भाई, साथ में है पी वी कुलथे। ये हैं गली सिकलापुर बरेली मौर्य मंदिर से रत्ना माला, माफ कीजिए रतन माल मातल मौर्य। ये हैं साथ ही हमारे मुकेश मौर्य, प्रिंस मौर्य।

अंशी मौर्य, पुष्पा मौर्य, गौरव मौर्य, चंद्र प्रकाश मौर्य साथ में हैं, रतन माला मौर्य, और आप हैं ग्राम पीपल रोड सर गांव छत्तीसगढ़ से हम लिख रहे हैं, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। आप हैं गांव रावर जिला करनाल से विनोद लखनपाल, और ये हैं महाराष्ट्र से उमरी नांदेड़ बालू अप्पा बातें और लौकी घटना। ये सब पसंद हम साथियों हमारे भेज रहे हैं हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी बरेली पर, आप भी हमें भेज सकते हैं। और आप हैं चनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बरमईलाल कुशवाहा, राम और श्याम, रवि, आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और साथी साथ में लिख रहे हैं मंजुलता कुशवाहा भी साथ में हमें ये कमेंट कर रही हैं। कट्टा चंद का पुराना शहर बरेली से हैं किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य, मानवी मौर्य और साथ में हैं जमुना प्रसाद मौर्य। ये हैं दत्तरेगी भाटापारा से तिकर से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नुखेलाल वर्मा। आप हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिक्रेस्टो, रोजी डिक्रेस्टो, पायलट डिक्रेस्टो और विलिस डिक्रेस्टो। रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर। कस्बा कलोड़िया रामगंज बरेली जिला उत्तर प्रदेश से हैं राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अमोल गंगवार, कमलेश गंगवार, तुलाराम गंगवार, अंकुश मौर्य और साथ में राजू जरी कारीगर, चंद्रपाल कारीगर, उल्फत शर्मा, बबलू गंगवार, बेतपाल गंगवार, साथ में हैं संजीव गंगवार। और आप हैं साथी हमारे मुकेश मौर्य, ये हैं साथी कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज और फरहीन फरहान, साथ में है फारिया ताहिरा। ये हैं होली चौक साथी हमारे हमें लिख रहे हैं, ये हैं गणेशपुर गंजनडुबार एटा यूपी से एम फारूक शेख, शमा परवीन शेख, शमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। तो सुनते हैं गीत।

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। और अब हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है गजल। बोल हैं शायर के, संगीत है मदन मोहन का और इसे गाया है मोहम्मद रफी ने। पसंद आप सभी के, आप हैं हानिखड़ा सरसद से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा का। इसी गीत के लिए हमें पसंद भेजी है। साथ ही हमारे हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने। और ये हमारे साथी

हम तक ये पसंद भेज रहे हैं। आप हैं सेक्टर नंबर 2 से आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा, और आप हैं छत्रपति संभाजीनगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, श्री राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, और आप हमें लिख रहे हैं बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन एमपी से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मैत बूड़त, चेतन नाहटा और सभी साथी इनके। आप हैं ग्राम चारभाटा जिला राजानंद गांव से हैं छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मेश्राम और मधु मेश्राम, साथ में हैं सत्यार्थ और ईवी। साथ ही आप सभी हमें ये पसंद भेज रहे हैं। आप साथी हमारे हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से लिख रहे हैं अभिजीत गौंडकर, राही सरिता गौंडकर, पंडिता सिद्धांत गौंडकर, अर्जुन गौंडकर और टुक टुक। और ये साथी हमारे हमें लिख रहे हैं उन्हें जिला उज्जैन एमपी से भेलूलाल बागतरिया, भोला बागतरिया, प्रवीण बागतरिया, रियांश बागतरिया और प्रतीक बागतरिया। यह है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजित कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका है मन्नत गुरकीरत और गुरशप सिंह राहुल, ये हमें लिख रहे हैं। साथ ही हमारे कदमा जमशेदपुर से हैं चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश महतो और सभी साथी इनके। ये हैं गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साहिबा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नाज और बेबी चाहत। और ये साथी हमें लिख रहे हैं ये विनेश कुमार, रागिनी और मुस्कान। आप हैं बहेड़ी से अंजुम भाई, खालदा बेगम और सभी साथी इनके। पाकुड़ झारखंड से लिख रहे हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशुतासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। बोगड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। और ये पसंद तक पहुंची है ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज यादव, अमन यादव, केशव यादव, सोनी यादव, अंकिता, विनीता, सुनीता, सुरश्री यादव। आप हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुगंध सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुर से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह और सभी साथी इनके। आप हमें लिख रहे हैं राजकमल संघ से हैं आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से हैं सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाव तांडले में लिख रहे हैं। धोतरा जोड़ा आष्टी से हैं दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते। ये पसंद तक पहुंची है धनुट तिलीवाल उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू की। आप हमें लिख रहे हैं अपनी पसंद भेज रहे हैं हमारे ये साथी जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापर यूपी से मोहम्मद फरहान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नर्स खातून। और ये हैं चरडोगरी पिपरिया से जिला कबीरधाम से हैं दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, किशन साहू, जयकिशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू और पूरा परिवार। और आप हैं कस्बा मीरगंज बिजलीघर से आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, उमेंद्रपुरी गोस्वामी और भाई कल्लू मिस्त्री। जसपुर उत्तराखंड से हैं माहिरा नूर, समरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, रियाज, रिफाकत, नाजमा बेगम सिद्दीकी और साथ में हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब। और ये हमें लिख रहे हैं साथ ही हमारे कमल साहब ने, डॉक्टर अफजाल मलिक, संदीप मक्कड़ और लिख रहे हैं हमें रामकंड झारखंड से निप्पी साहब ने। और ये हैं साथ ही हमारे सेक्टर 24 से कोमंडल खेरर खंडवा से योगेश गुजराती, अभय गुजराती। और आप हमें भेज रहे हैं आपके ये पसंद फिल्म है, माफ़ कीजिए, ये हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर का। आप हैं मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम और शालू गौतम लिख रहे हैं चंद्रसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से। और आप हैं आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, मैंडी शर्मा। आप हमें लिख रहे हैं वन बखेरा जिला राजदानंद गांव छत्तीसगढ़ से योगेश शर्वा, आशा शर्वा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी शर्वा। और ये पसंद हमें मिली है साथ ही हमारे हैं गांव नंगखेड़ा
फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मनीष शर्मा और राहुल शर्मा।

ये हैं ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अमान अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार। ये हैं मौलागढ़ निवासी भोजपुरा जिला बरेली से तरन्नुम अंसारी, तरन अंसारी भाई अजरुद्दीन मोहम्मद हसन अंसारी, और ये हैं सेक्टर 17 से मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से हैं शुभ चंद्र बजाज और साहिल बजाज, साथ में हैं बिट्टा बजाज। ये हैं पलारी से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पलार टेलर, दुर्जा देवांगन, दीशान देवांगन और सभी साथी। आप में लिख रहे हैं भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार सिन्हा, लक्की सिन्हा लिख रहे हैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा से, और ये पसंद करता है गांधी चौक रोपड़, माफ़ कीजिए, गांधी चौक बाड़मेर से हैं राजस्थान से, बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। रामदेवरा से हैं दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बाबड़ी से हैं खुदा बख्श खलीफा। आप हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती, सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना गुड़ाने, हीरामणि शेठ जी, प्रणय सिद्धि प्रसिद्धि और प्रतिभा गुड़ाने। और आप हैं मझा दौलतपुर आंवला जिला बरेली से हैं अर्पित यादव, देव सिंह यादव और भगवान सिंह यादव। ये पसंद मिली है हमें संतोष भाकर की, सुनैना सुकन्या और सविता भाकर लिख रहे हैं हमें शाहजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। आप हैं नाम ये हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रेमणा ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर लिख रहे हैं हमें ग्राम चरौदा बार नवापारा अभयारण्य से, जिला बलौदाबाजा और स्टेट है छत्तीसगढ़। और ये साथी हमारे हमें लिख रहे हैं पंचकुला चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रिश्ता खुराना, केशव खुराना, रिधाना रिधान खुराना और साथ में तुलसी मस्कीन। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीनो हमें सही राह दिखाती।
2: अब टेलीनॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
3: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। कार्यक्रम में सुनवाने जा रहे हैं फिल्म का नाम है नागिन, संगीत है हेमंत कुमार का और शब्द रचना है राजेंद्र किशन की। इसे गाया है लता मंगेशकर ने। पसंद है आप सभी की। आप हैं खुर्जा से तिलराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा की, और ये हैं आप हैं राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। और आप हमें लिख रहे हैं इसी गीत के लिए ये पसंद। साथी हमारे हैं आलखना मंदिर के सामने हैं बरेली से बिचला गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देवी, ज्ञानेंद्र देव, इला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार, विनोद कुमार दीक्षित और साथ में राज, महावीर कश्यप, रमेश चंद्र सैनी और राविन भाई कॉस्मेटिक वाले। आप हैं राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह और ये हैं राजस्थान से हैं चित्तौड़गढ़ से लिख रहे हैं मोहम्मद आजाद मोहम्मद और ये हैं राम प्रसाद शर्मा, वंदना शर्मा, मनोरमा शर्मा, मनोरमा, अजय, रीता, विनोद, मित और मिहिलाल। साथ में हैं फैजुद्दीन भाई, ये लिख रहे हैं छावनी अशरफ खां पानी के पास होली चौक से।

लाल कुर्ती कैंट से हैं, राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा और युवान और आर के राजा, ये हैं। साथ ही हमारे डॉक्टर आर वी सिंह, अरजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित यादव, अभय यादव लिख रहे हैं थाने के सामने, अल्लाहगंज जनपद शाहजहांपुर से। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विष्णु खेड़ा, शालनी खेड़ा गीत, और आप लिख रहे हैं हमें गांव खोकरा वाली से हैं विनोद बरासा, विशाल बरासा, विकास बरासा, रोशनी बरासा और शगुन बरासा, और आप लिख रहे हैं हमें ये पसंद अपनी वारिस अली खान, इस्लामुन निशाफ, शकील अहमद, शहनवाज खान और बेबी नुसरा खान लिख रहे हैं संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। आप हैं महाराणा दरवाजा रोड एटा से नवी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी हैं, नवे हसन अब्बासी, रशीद वासी, सुहेल हसन अब्बासी, आनम अब्बासी और यशव अब्बासी। ये हैं उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नचानी, विनीत नचानी और मिथिल नचानी। आप हैं मसरूर रेडियो स्वतः संघ से हैं, मुंगेशरपुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शविस्ता मोहम्मद, नसीम पलक, लोबना और यश मंसूरी। ये हैं भाटापारा से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, लोकेश जोशी, शिव कुमार शर्मा, वैदेही जोशी और वे भी हंसिका जोशी साथ में हैं, कुमारी अंकिता जोशी। अनूपपुर एमपी से हैं श्रीमती जयवंती केवट जी, खंडवा एमपी से हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। आप हमें लिख रहे हैं जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी, और ये हैं साथ ही हमारे पसंद भेज रहे हैं अपनी पुरानी भलाई तीन चरौंदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीमुद्दीन सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी और पूरे सिद्दीकी परिवार हमें ये लिख रहा है। बोरखेड़ा से हैं नेहा जैन, दीपक मैंग मूर्त, चेतन नाहटा और सभी लोग इनके। ये हैं देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रज्जक और मुरली क्षत्रिय। आप हैं धर्मेंद्री नगर जलपुरा एमपी से अशोक सिंह, अंकिता सिंह, प्यारी गुड़िया, वेदा सिंह और साथ में है सुनीता सिंह। आप हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूरनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बाहिमाक्ष। ये हैं कुलदीप सक्सेना, मणिपुरी मैनपुरी पोषण की है किन हावार। आप हैं सिद्धार्थनगर दरियापुर भापली से गजान हेले, नवदीप हेले, विश्वदीप हेले, अवंतिका हेले, और ये पसंद हमें भेज रहे हैं उच्च भट्टी लासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश कश्यप, मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशा शिवन्या गोस्वामी और अनु गोस्वामी। आप हैं काशी विश्वनाथ धाम से वाराणसी से अजय कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनीत, विनायक सिंह, मोहनी सिंह, मोहित सिंह एवं प्यारी बेटी कोकुरानी। आप हैं शहनवाज सलमानी, सफन सलमानी, हसन और जैन सलमानी। पथरिया भरेवा से हैं चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल और नेहा और वान्या सिंगरौल। रामपुर रोड किला छावनी बरेली से हैं प्रदीप कुमार पाल, उषा रानी, नमन, प्रिया सिंह, अनीता, गरीब भाई और श्री रामतार साथ में हैं परिवार के सभी लोग। आप हैं सरगांव बाजार नसीब बेगम से हैं नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद, फजान रेहान। गुजरात गांधीधाम से हैं प्रवीण सोनी, कलावता सोनी और साथ में जगदीश चौरी। ये पसंद तक पहुंची है जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांवड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कांवड़े। आप हैं ग्राम नगर कोहरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से बाबलू साहू, जमन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या और साहू। ये हैं मीरगंज से हल्दीखोर अपनी ग्राम हल्दीखोर से शकील अहमद, मिसवाह उल सजर, समसुन स्निशा और सभी साथी इनके। आप ये पसंद भेज रहे हैं साथी हमारे उगैती।

से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज भाई, पंकज कुमार गुप्ता, प्रिंस गुप्ता, प्रशांत गुप्ता और साथ में कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता। ये है प्रेषक सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ होजरे, सैफुल्ला सबाहत और साथ में किरत होजरे, साथ ये है रेहान शेख। आप एक गाँव भोजपुर तंगवा चिरकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हसन, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नायद रानी, आयात और मोहम्मद इंतजार। यह हैं दीवाना रेडियो संघ से हैं बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखबीर काजल बड़वाल, रखबीर बड़वाल, रानो, कृष्णा, श्रीमती छिंदू, प्रवीण, शीतल, नवीन, रंगीला, निशान, अनमोल और प्यारे बड़े चटकू मटकू इनके हैं। आप हैं साथ ही हमारे मुबारकपुर उचतकिया आजमगढ़ से हैं दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदरा, कनी सकीना और हसीना दिलशाद। आप हैं सनाबत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना। आपने हमें पसंद भेज रहे हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय लिख रहे हैं हमें बापट्टी बलिया से और दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। आप हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और यशस्वी यादव। ये हैं प्रेमपाल हमें लिख रहे हैं पंचायत शिवपुरी पोस्ट कल्याणपुर खास पीलीभीत से। आप हैं गांव बांडी फाला फलिका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बढ़िया, योगेश बढ़िया और साथ में बेबी करीमा बगड़िया, माफ़ कीजिए ये हमें लिख रहे हैं राम सिंहपुर जिला गंगानगर से अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मनु। ये हैं दादीगेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से हमें लिख रहे हैं अपनी पसंद भेज रहे हैं। आप हमें लिख रहे हैं गांव जाखो से समुद्र खटक, विमला देवी खटक, अमर जी, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक। और आप हमें ये भेज रहे हैं अपनी पसंद रेलवे रोड गुंजनडोबारा से हैं मोहन कलीम जख्मी, भवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबाना मंस अनवार, नजर बेगम नाज और साथ में हैं सरिता गौतम। आप हैं राजेश सेन और ये पत्र है, ये माफी जी हमें पसंद भेजिए कमेंट के माध्यम से। अनामदशी विश्वमित्र, राजकुमारी, सिद्धार्थ कुमार, एंजल और सभी मित्रगण ये लिख रहे हैं जिला भिंड एमपी से। आप हैं नलेश्वर नगर नरबेली महाराष्ट्र से पीएस नोहाकर, निर्मला विशाल नोहाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायके और आशीष मोहरेकर। आप हैं बरवट बकाल बड़ावाला से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या, अजय हागे। आप हैं बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद कारवां, गीतांजलि कारवां और आकांक्षा कारवां। लाड़ा ये लिख रहे हैं सागर लखना धवन एमपी से लाला जी चौबे, लाडी जी चौबे, रंजन चौबे और समक्ष चौबे। ये हम तक पसंद पहुंची है तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहमिन मुन्ना और दानिश आसिफ। आप हमें भेज रहे हैं पसंद अपनी दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू लिख रहे हैं रघुवीर नगर से। ये हैं मौर्य, माफ कीजिए बरेली से हैं गौतम ऋषि मौर्य, मिहिलाल मौर्य, प्रीति मौर्य, रीना मौर्य और सुनीता मौर्य। आप लिख रहे हैं दिल्ली से बोधराज खोरबाल, कमल रानी, प्रखंड प्रकाश और ऋतिक खोरबाल। मामूल बाड़ी महाराष्ट्र से हैं सोपान ताइडे, बसंतराव भोजबर और तुषार करंगले। ये हमें लिख रहे हैं महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रतिगेश संघई, पूरा संघई परिवार में पसंद भेज रहा है अपनी। आप हैं मलुकपुर जुगन गली शेर खान मस्जिद के पास से बेबी इमान, अनम, हानिया, तमन्ना, तैवा, नूर, नूर जारा, आलम हसन और सभी साथी। ग्राम चारभाटा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से हैं नरेंद्र मेश्राम, मधु मेश्राम और सत्यार्थ और ईवी। ये हैं फैसल भाई, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकलम, नसीफा प्रवीण और जौहानुल हुद्दा लिख रहे हैं हयात कॉलोनी रड़िया बिहार से। ये हैं भंजन उत्तर प्रदेश से राजकुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। मऊ से हैं मुन्ना कुमार स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन,
कृष्णा और पीयूष सोनकार लिख रहे हैं।

हैं शिवमंदिर की मऊ से, ये हैं सौगा धमतरी से, तिगड़ से फणीश कुमार चंदन, साथी देव चंदन, मोहित कुमार चंदन, देवकी किरण चंदन, इंद्र कुमार चंदन और साथ में है यहाँ कुमार चंदन। आप है जिला करनाल से अभिजंत कुमार जैना जांच, कांता रानी, गुंजन, साहिल, वाणी, जैनाज और कृष्ण कृप सभी साथी। ये हैं सावनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर और वेवी प्रियांशी। ये हैं एमएलवी रोड कॉलेज से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या खुराना और एस के पप्पी। आप हैं अजीत कसाना, मायादेव ऋतिक, अजीत कसाना, ग्राम पोस्ट लदावली, जिला मुरादाबाद से। और ये हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, माशुरी देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य, दिनेश और सभी लोग। राजकोट से हैं जयमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन, राकेश जैन। और आप लिख रहे हैं जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खार, मीनाक्षी प्लोमा, डॉक्टर शानी। ये हैं चंद्रोसी संभल उत्तर प्रदेश से आमिन अली। आप हैं ग्राम कली पंडित मस्जिद बरेली से लालू अंसारी, अली मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद नजारी अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ भाई, आशिक भाई और मुन्ना अंसारी। आप हैं इटर रोड गंजबारा से बीपी गौतम, श्रद्धा गौतम, अहम कलीम जख्मी और डी एच बच्चन साहब। और नखेड़ा से हैं पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आप हैं राजनारायण, सुमित्रा सोनी, ब्यावर राजस्थान से। ये हैं गांव व डाकघर निम्नावास, जिला जींद हरियाणा से हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमरजीत कौर। पिपरिया से हैं कमाल कांत गुप्ता। और ये हैं श्रवण कुमार प्रजापति, शिव प्रजापति, आर्यन, लविश और मुनीत देवी। गांव जलालपुरा, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हमें लिख रहे हैं। और ये साथी हमारे हैं तहसील जलगांव जाखो, जिला खामगांव महाराष्ट्र से राजू माडे, गजानन माडे, संजय माठे, गणेश माठे, प्रकाश दांगड़े। शेरगांव से संतोष एस कालीची। ग्राम उमरा अटाली खामगांव से श्रीमती गजानन सलोकर, सुरेश भिसे पाटिल जी। मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र जी भटकर जी। और आप हैं साथी हमारे ये पसंद भेजने वाले पप्पू क्लब से हैं फारसिबगंज बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू कुमार विमल और सभी लोग। नवरत्न हाता बाड़ी हाट पूर्णिया बिहार से ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता राडो, दीक्षा देव, देवांशु और डब्लू। जजरना से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। ग्राम करली भिंडी मोहला बरेली से शाकमंद अंसारी, अफसार भाई अंसार भाई, दिलदार अंसारी, मोहम्मद अर्श, मोहम्मद आरिश। नए मजे करली से हैं इंतजार भाई, बेटी हिफजा नूरी, नेतु चाचा मिस्त्री और नसीर अंसारी, अख्तर अंसारी, नन्हे भैया और सभी लोग। गिरगांव महाराष्ट्र से हैं गिरान नादरे और मारुत पांचाल। ये हैं साथी हमारे शंकर जोशी मुंबई से। और आप हैं निखिल कांगड़ा, तनवी बोट, बबीता बोट, सीताराम कांगड़ा लिख रहे हैं एकता कॉलोनी रोहतक से। ये हैं सूर्यनंद खुराना न्यू मुल्तान दिल्ली से। और आप हैं मोहम्मद वकील अहमद, नाजमा बेगम, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद मोहम्मद आकिब, मोहम्मद साकिब और सभी साथी इनके। ये हैं साथी हमारे बंडू लोहार, पोपलाड, चंद्रकला पोपड़ा लिख रहे हैं हमें नेबासा खुपटी से। सुनते हैं ये गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मैं अविनाश सिंह, जिलाधिकारी बरेली। आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे देश में जो जनगणना हो रही है वह दो चरणों में होनी है। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण, जिसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं, का कार्य चल रहा है, तथा द्वितीय चरण माह फरवरी 2027 में होगी। यह पूर्तियां डिजिटल मोड में होगी। प्रथम चरण की जो अवधि है वो 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक तय की गई है, तथा इसके पहले 7 मई 2026 से 21 मई 2026 तक स्वगणना हेतु तिथि निर्धारित है, जिसमें आमजन स्वगणना से संबंधित पोर्टल पर जाकर स्वयं ही अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा देश में पहली बार स्वगणना की विधि लाई गई है। इसमें कोई भी व्यक्ति सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल पर जाकर बड़ी आसानी से भारत सरकार द्वारा तय किए गए प्रश्नों के संबंध में जानकारी प्रदान कर सकता है। इस प्रक्रिया के अंत में एक ऐसी आईडी जनरेट होगी जिसे दिनांक 22 मई 2026 से दिनांक 20 जून 2026 के मध्य प्रागणक को प्रदान कर जनगणना की प्रक्रिया चंद मिनटों में ही पूरी की जा सकती है। इस प्रक्रिया में प्रागणक द्वारा उन्हें आवंटित हर उस मकान भवन को सूचीबद्ध करना है जिसमें कोई व्यक्ति रहता है या भविष्य में रह सकता है। साथ ही कुल 33 अधिसूचित प्रश्नों की जानकारी भी उसे प्रत्येक परिवार से लेनी है। प्रथम चरण में केवल परिवार

से संबंधित जानकारियां ली जाएंगी, जबकि द्वितीय चरण में प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग जानकारी एकत्र की जाएगी। मकान सूचीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 33 प्रश्न अधिसूचित किए गए हैं, जिनके उत्तर प्रागणक प्रत्येक घर से प्राप्त करेंगे। इस जनगणना के कई फायदे हैं। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही सरकार आम जन मानस को लाभान्वित करने के लिए योजनाओं का निर्माण करती है। इसके आंकड़े क्षेत्र विशेष के लिए भी योजनाएं तय करने में सहायक सिद्ध होते हैं। विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के सीमा निर्धारण, लोकसभा विधानसभा आदि क्षेत्रों के परिसीमन, शहरीकरण, साक्षरता इत्यादि कई पहलुओं में जनगणना के आंकड़े आधार का कार्य करते हैं। मेरा जनपद बरेली के सभी सम्मानित निवासियों से यह अपील अनुरोध है कि अपनी जनगणना स्वगणना के माध्यम से अधिक संख्या में करें तथा जब प्रगणक आपके घर जाएं तो उन्हें पूर्ण सहयोग एवं बिल्कुल सही सही जानकारी प्रदान करें। आपके द्वारा जनगणना में दिए गए चंद मिनटों का समय आगामी योजनाओं का निर्धारण करेगा, अतः अपना बहुमूल्य समय देकर सभी जानकारियां प्रगणक को दें, जिसके आधार पर सरकार आपके लिए आवश्यक एवं कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण कर सके। जय हिंद, जय भारत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं सब रंग कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। आइए सुनते हैं ये भजन, स्वर है अनुपलोटा का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सब रंग करके, हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
4: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
3: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
4: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
3: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
4: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
3: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
4: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
3: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
4: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
3: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
4: बिल्कुल।
3: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
4: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है।
3: जी,
4: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
3: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
4: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
3: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
4: जी,
3: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
4: जैसे
3: जैसे लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
4: जी,
3: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
4: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
3: जी,
4: विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
3: अजीत जी, सबसे रोचक

0: बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहां तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
0: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
0: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
0: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
0: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते
1: और
0: हैं।
1: सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोच

0: में और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क,
2: होशियार।

0: مشق،
1: होशियार,
0: समझदार,
1: पेंसिल तराश,
0: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
1: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
0: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
1: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
3: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
4: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना, और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
5: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
6: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
5: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
6: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
5: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
7: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
6: क्या बात है,
7: सुनकर ही जोश आ गया।
6: हाँ
7: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो, और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
8: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे, और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है।

0: इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है।

0: कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
1: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999, स्थान 0.5140, 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल 1 रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
1: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
4: हमला करो! दुर्गा माता की!
1: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
5: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
0: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
6: क्या बात कही है?
5: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
0: धन्यवाद।
1: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यहीं पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नारायण तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा।
4: मैं जा रहा हूं।
5: साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीरगति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया। और अब आपको जोड़ रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र, सुनवाते हैं FM 99 के कार्यक्रम।
1: 12 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। साथ ही मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों और सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं को आधुनिक तकनीक, बेहतर मानव संसाधन और प्रभावी प्रबंधन से सशक्त किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग की सभी कार्य योजनाओं पर ठोस व प्रभावी एवं त्वरित गति से कार्रवाई की जाए और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। कार्य धरातल पर नजर आने चाहिए। योजनाओं को अमली जामा पहनाने में कोई कोर कसर बाकी न रखी जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव व गरीब का विकास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री केशव प्रसाद मौर्य कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसंख्यांकिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्यांकी के बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। झांसी पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा और साइबर ठगी से एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह चाइनीज वेबसाइटों, इंडोनेशिया सिम और हवाला नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दे रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे में से 8 मोबाइल फोन, 114 बैंक खातों की पासबुक और करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच में 4,35,64,000 रुपए से अधिक की रकम फ्रीज कराई गई है। वर्ष 2025-26 के लिए अग्निवीर श्रेणी के अंतर्गत भारतीय सेना में महिलाओं की भर्ती का अंतिम परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। इस साल की शुरुआत में लखनऊ स्थित मध्य कमान के प्रतिष्ठित आर्मी ग्राउंड पर कुल 592 अधिक महिला अभ्यर्थियों ने फिजिकल टेस्ट में अपनी किस्मत आजमाई है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: लखनऊ है तो महज गुंबद और मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
2: को एक ना मल्टीपल
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
3: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार।
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
8: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के
8: अब 0 रुपए कैसे दूं।
7: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए है ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
11: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों पता है कल मेरे घर मेहमान आए थे और खाना खिलाया हमने उनको और बहुत सारी तारीफ भी की उन्होंने। और क्यों पता है, खाना जितना स्वादिष्ट और टेस्टी था उससे ज्यादा कहीं पौष्टिक भी था। जी हाँ, इसमें मैंने बहुत कुछ खास नहीं किया था क्योंकि ये होता है बहुत आसान दोस्तों, क्योंकि हमारे किचन में ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में हमें पूरा ज्ञान यानी कि नॉलेज नहीं होता है, और जब हो जाता है तो आप फिर बन जाते हैं परफेक्ट स्वाद में भी और हेल्थ में भी। तो कुछ आज हम प्रोग्राम शत्रुपा में बात करने वाले हैं खास चीजों की, जो कि होती तो है हमारी किचन में लेकिन कहीं ना कहीं उसके बारे में हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है या हम नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, अच्छा बताइए, जब आप अपनी रसोई में देखते हैं तो वहां पर तरह तरह के बीज मिलते हैं ना, कई सारे मसाले भी मिलते हैं, सौंफ, अलसी, अजवाइन, तिल, मेथी, जीरा, जी हाँ बहुत सारी चीजें हैं कलौंजी, और हम सब उसका इस्तेमाल भी करते हैं खाने में और अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज और आपके किचन में रहती है, जरा सोचिए। जी हाँ, हम सीड्स की बात कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल आजकल हम सभी कुछ ज्यादा ही करने लगे हैं। और वैसे भी कहा गया है ना कि अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चूप, मतलब लिमिट से ज्यादा किसी भी चीज का इस्तेमाल नुकसानदायक होता है, और अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी नुकसानदायक होता है। तो बस सोचिए हम किस चीज की बात कर रहे हैं और क्या खास है उसकी बात हम बताएंगे आपको, लेकिन इस गाने के बाद। दोस्तों शालिनी आपके साथ, 12:12 और 52 सेकेंड हो चले हैं, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow,
6: धड़कन लखनऊ की।

इस गर्मी में जो सबसे ज्यादा आराम पहुंचाता है वो क्या है बताइए? हमारा एफएम रेनबो, जी हाँ, जो सभी को कूल रखता है। और जब माइंड कूल होता है ना दोस्तों, सब चीज कूल दिखाई देती है। अच्छा चलिए, अभी हम बात कर रहे थे रसोई में दिखने वाले सीड्स की, और आज हम अपने प्रोग्राम शत्रुपा में बात करने वाले हैं चिया सीड की। जी हाँ, जो कि आजकल हेल्थ और फिटनेस के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। और ये देखने में छोटे छोटे काले और सफेद रंग के जो सीड्स है ना, देखने में आपको भले ही बहुत साधारण लगे, लेकिन इनके अंदर पता है पोषण का खजाना छुपा होता है। जी हाँ, और अगर चिया सीड की बात करें तो ये मूल रूप से मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। और कहते हैं कि जब पुराने समय में जो योद्धा थे ना, उनके एनर्जी का जो स्रोत था वो चिया सीड्स था। वो लोग चिया सीड्स का ही इस्तेमाल करते हैं, और आज हम इन्हें सुपर फूड कहते हैं, जो क्योंकि इससे हमारे शरीर को जो है ना, जरूरी वाले कई पोषक तत्व मिलता है। कौन कौन से मिलते हैं बताए? फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन होता है, ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर को ताकत देने के साथ साथ कई सारी बीमारियों से भी बचाते हैं। हाँ, सारी बातें अभी थोड़ी ना करेंगे, एक गाना लेते हैं और उसके बाद होंगी और भी बातें।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 12:31 और 55 सेकंड का वक्त, प्रोग्राम शत्रुपा में शालिनी है आपके साथ आज लेकर सीआरसी की बात। देखो अभी हमने ढेर सारी बातें की ना, ये कब कैसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता था और इस वक्त हम इसका यूज कैसे करते हैं। आप कैसे करते हैं? अच्छा, इससे आपका वेट कम हो जाएगा। जी हाँ, बहुत से लोग इसे अपनी डाइट को हेल्दी बनाते हैं और कई सारी चीज़ों के साथ इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका कोई अलग से स्वाद नहीं है। मतलब है तो बहुत हल्का सा है और इसके खाने के भी कई आसान तरीके हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। रात भर पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह खाली पेट भी खाया जा सकता है। कुछ लोग इसे दूध, दही, स्मूदी, ओट्स या फ्रूट सलाद में भी मिलाकर खाते हैं। कुछ लोग या आप भी नींबू पानी या नारियल पानी में भी मिलाकर इसको खा सकते हैं। इसका अलग से कोई स्वाद पता नहीं चलेगा। और अगर आपको अपना दिल सही रखना है, हाँ हम कौन से दिल की बात कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, वो दिल नहीं जो इश्क मोहब्बत प्यार में पड़ जाता है, हम आपके दिल की बात कर रहे हैं, सेहत की बात कर रहे हैं। इसके लिए भी चिया सीड्स को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना, वो शरीर में अच्छे फैट को बढ़ाने और ख़राब जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में हमारी मदद करता है। और साथ ही साथ जो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। जो लोग दूध कम पीते हैं उनके लिए भी चिया सीड्स कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तो अगर आपको दूध नहीं अच्छा लगता है, नहीं पीते हैं, तो आप चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।

दोस्तों 12:39 और 52 सेकंड का वक्त शालिनी आपके साथ लेकर प्रोग्राम शत्रुपा में खास बात चिया सीड्स की हो रही है बात। और अभी तक बहुत सारी चीजें हमने बात कर ली, कैसे खाना है, इसमें क्या क्या है, कब हुई इसकी शुरुआत, कहां से। तो अब सबसे ज्यादा जरूरी बात जानने वाली ये है कि इसकी जो संतुलित मात्रा है उसका भी हमें जरूर पता होना चाहिए। वैसे भी किसी भी चीज की तरह चिया सीड्स का भी जो यूज है वो भी संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। आमतौर पर

अभी तक बहुत सारी चीजें हमने बात कर ली, कैसे खाना है, इसमें क्या क्या है, कब हुई इसकी शुरुआत, कहाँ से। तो अब सबसे ज्यादा जरूरी बात जानने वाली ये है कि इसकी जो संतुलित मात्रा है उसका भी हमें जरूर पता होना चाहिए। वैसे भी किसी भी चीज की तरह चिया सीड्स का भी जो यूज है वो भी संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। आमतौर पर इसे हम 1 से 2 चम्मच ही इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए पर्याप्त होता है। और इसे बिना भिगोए बहुत ज्यादा मात्रा में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये पेट में आपको एसिडिटी या मतलब गैस की भी शिकायत हो सकती है और पेट में भारीपन भी हो सकता है। और जब इसको हम भिगोकर रात भर भिगोकर सुबह खाते हैं ना, तो ये ज़्यादा सही होता है, इस तरह की कोई शिकायत नहीं होती है और पेट हमारा बहुत देर तक भरा भी महसूस होता है। और वैसे भी हम सभी आजकल की जो भाग दौड़ की जिंदगी है ना, इसमें हम हेल्दी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। और अब क्या कर रहे हैं हम, वापस से कोशिश कर रहे हैं नेचर की तरफ लौटने के लिए, पौष्टिक चीजों का इस्तेमाल करने के लिए। तो बस चिया सीड्स उसी दिशा में एक छोटा सा लेकिन असरदार कदम होगा आपका अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: हमारी जनगणना हमारा विकास।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

प्रोग्राम शत्रुपा में शालिनी आपके साथ हम बात कर रहे हैं चिया सीड्स की। और पता है आपको, चिया सीड्स से कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है, जैसे कि स्किन में खुजली हो सकती है, रैशेस आ सकते हैं, या सांस लेने की दिक्कत या बेचैनी की भी समस्या हो सकती है। अगर पहली बार खाने से आपको शरीर में कोई इस तरह के बदलाव हो रहे हैं या दिख रहे हैं तो उसे तुरंत खाना बंद कर देना चाहिए। और साथ ही साथ चिया सीड्स के लिए हम ये कहेंगे कि जो डायबिटिक हैं, जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या है, जो मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं, वो डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद इसका कितना सेवन करना है उसके अकॉर्डिंग आप सोच लीजिए। और साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके लिए भी ये कहना है कि बिना सलाह के इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर शरीर अलग होता है, इसीलिए किसी भी सुपर फूड को ज्यादा खाना मतलब ज्यादा फायदा ये नहीं समझना चाहिए। किसके बॉडी पर क्या सूट करता है इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, खासकर जब किसी गंभीर बीमारी से हम जूझ रहे हैं तो भी हमें बिना किसी की राय लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

और दोस्तों 12:56 और 23 सेकंड हो चले और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी प्रोग्राम शत्रुपा को करना होगा यहीं पर वाइंड अप। बस इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले इतना ही कहना चाहेंगे कि सही मात्रा में और सही तरीके से लिया जाए तो चिया सीड्स शरीर के लिए लाभकारी होता है, लेकिन संतुलन और सावधानी हमेशा जरूरी है, चाहे वो बात चिया सीड्स की हो या किसी और चीज की बात हो। तो बस ध्यान रखना अपना और इस्तेमाल करना इसका, और सलाह मिल सकती है किसी की तो जरूर ले, और बने रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। नेक्स्ट प्रोग्राम ऑटम पे तेरी बात में आप ये बताइए कि गर्मी का प्लान क्या है आपका, समर वेकेशन हो चुके हैं बच्चों के, तो इसमें आप क्या प्लान कर रहे हैं, फटाफट मैसेज कर दीजिए।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। अपराह्न का 1 बजे है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम में सुनवाने जा रहे हैं आपको फिल्म हिमालय पुत्र का ये गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। बोल है निदा फाजली के, संगीत है नू मलिक का। अनुरोध है आप सभी का, आप हैं सेक्टर 67 से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा और जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप कालका से हैं, सुभाष चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल भाई। एक कोटबा, नारायणपुर, बाबापट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, दिव्य हा निवादा गाजीपुर से, प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुरकला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, और राम प्रसाद शर्मा जी लिख रहे हैं हमें, ये छावनी अश्रम खां पानी टंकी के पास होली चौक बरेली से। साथ में है मनोरमा, अजय, जशी देवी, वंदना और रीता, विनोद, घर के सभी लोग ये लिख रहे हैं। और ये हम तक अनुरोध पहुंचा है बरेली जंक्शन से। गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, वीरेश सिंह चौहान, विक्की भारद्वाज, अमान खान, प्रदीप पाल और नमन। साथ में हैं श्री राम राठौर। तो सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म का नाम है और प्यार हो गया। इसे गाया है उदित नारायण और नुसरत फतेह अली खान साहब ने। बोल हैं जावेद अख्तर के, संगीत है नुसरत फतेह अली खान साहब का। अनुभूत आप सभी का है। आप हैं योगेंद्र माधुप, शनि बाजार कस्बा उगती से हैं प्रभाकर गुप्ता, अवधेश गुप्ता, सचिन गुप्ता, देव गुप्ता, प्रियाल गुप्ता, कारव गुप्ता और सभी साथी ये हैं। लवेश प्रजापति, मुनेश देवी प्रजापति, आर्यन शिवम, श्रवण कुमार लिख रहे हैं गांव जलालपुरा, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से। और इसी गीत के लिए ये अनुरोध मिला है प्रेम पूजा दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा, बेबी आराध्या साहू का। और आप हैं उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विवेश पाल, दिव्यांश बघेल और परिवार के लोग ये लिख रहे हैं ग्राम रजौनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से। और ये हमारे साथी

जिन्होंने भेजा है हमें ये अपना पत्र, कमरा ठेकेदार नसीबन बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आफिया, और पत्र मुमताज खान, पैराडाइज करण शाहिद भाई, आसिफ, परवीन, अल्फिया, सद्दाफ, सुफियान, फातिमा सरोज, और लिख रहे हैं हम चौक अमरावती से। और ये अनुरोध पत्र हमें मिला है छावनी अशरफ खां, पानी टंकी के पास, होली चौक बरेली, यूपी से, राम प्रथा शर्मा, जयश्री देवी, वंदना, मनोरमा देवी, अजय और फजरुद्दीन भाई। ये हैं साथ ही हमारे जो हमें अनुरोध पत्र भेज रहे हैं, लिख रहे हैं हमें चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, और आप हैं वार्ड नंबर 11 प्राणा शहर बरेली से, अनुखलाल मौर्य, प्रकाश मौर्य, सुंदरदेवी मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील, खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य का। आप हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता, शिल्पी रानी और आकाश कुमार। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत।

इस वक्त आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम आकाशवाणी का बरेली केंद्र, आकाशवाणी बरेली हरदम आपके साथ। और इस वक्त आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत कार्यक्रम। कार्यक्रम में आप सुनवाने जा रहे हैं आपको फिल्म का नाम है आशिक बनाया आपने। इसे लिखा है समीर ने, संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने और गाया है श्रेया घोषाल और हिमेश रेशमिया ने। अनुरोध आप सभी का है, आप हैं गैक्टा काशीपुर धर्मपुर बरेली से फहीम खां सिद्दीकी और साबिया राम प्रसाद शर्मा, दूरनगर से ठाकुर मोड़ा से कढ़ेरिया हैं फैजुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई, और इसी हैं में जो साथी हमारे ये नाम हमें दिख रहा है आप हैं हाजी तूफ़ैल अहमद हैं, ये लिख रहे हैं हमें नरियावल से। और आप हैं बहड़ी से अंजुम भाई खालदा बेगम, और ये खत हमें मिला है जसपुर उत्तराखंड से नाजमा बेगम, रियाज भाई, रिफाकत भाई, रानी, तबस्सुम, रुखसार और मोहम्मद आशिफ साथ में हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी। और आप हैं जो हमें ये अनुरोध पत्र भेज रहे हैं, ये हैं मॉडर्न डाउन्स करनाल से सुधीर नूतन, संदीप उगलानी और जगमोहन प्रजापति, साथ में साइना रफ़ी। और ये पत्र हमें मिला है मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद बका फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी खान, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, साथ में हैं हिना कौसर। और ये हमारे साथी हमें लिख रहे हैं भाटापारा से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और साथ में हैं जयवंत कुमार वर्मा।

इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है हाँ मैंने भी प्यार किया है। इसे गाया है उदित नारायण ने, संगीत है नदीम श्रवण का और इसे लिखा है समीर ने। अनुरोध आप सभी का है, आप हैं सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदीबा थापा, बिहार के लोनी से हैं परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अस्करम आसमा बेलदार और उल्ला आसमा बेलदार। ये हैं साथी हमारे, हमें लिख रहे हैं ये अपना अनुरोध। गांव है इनका लाहौर डड्डा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मोनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन और आप हैं। इसी गीत के लिए हम तक ये अनुरोध किया है कनेरा मोहल्ला पटेला से बत्ता परिवार लिख रहा है, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। सुनते हैं ये गीत।

इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं अनुरोध गीत का, आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप कार्यक्रम में सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है कुर्बानी, से गाया है किशोर कुमार ने, और अनुरोध आप सभी का, आप हैं कस्बा बीरगंज से हैं, निकट बीलघर के पास से, भाई कल्लू मिस्त्री, मोहम्मद नईम, हमजा, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद नसीम एडवोकेट, दानिश भाई, बाबर अजीम और अनाबिया फातिमा का ये अनुरोध है। साथ में हैं दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी साहब। इसी गीत के लिए हम तक ये अनुरोध पत्र पहुंचा है। पता है इनका मनकारा महेंद्र बीडिया कॉलोनी करगना से, भाई पंडलाल सागर, बनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमोजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, ममता चौधरी, साथ में है श्रीमती ओमवती भारती, बेटी खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, डुबरण तालाब डुमराव से अब्बली उल्ला अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एच डी अंसारी, इंदिरा बिहारी कॉलोनी से हैं डब्लू अंसारी, जेल रोड बक्सर से हैं नरेंद्र कुमार यादव, और छठिया पोखरा डुमराव से सुनील कुमार वर्मा, मुस्तफाबाद दिल्ली से हैं लालबाबू दीवाना और साथ ही इनके सभी साथी। तो सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। अब हम सुनवाने जा रहे हैं आपको, फिल्म का नाम है चल मेरे भाई। समीर ने लिखा है इस गीत को, संगीत दिया है आनंद मिलन साहब ने, इसे गाया है द्रोत राठौर और सोनू निगम ने। अनुरोध है आप सभी का, आप हैं रेंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

साथ में ये साथी हमारे लिख रहे हैं, गुड़िया स्वाति रिंकी मौर्य और सुंदर देवी मौर्य लिख रहे हैं हमें कटरा चांद खां से, साथ में कैलाश भाई वेदराम कपिल सुनील और प्रकाश। ये हैं मोहल्ला कढ़िया बरेली से मोहम्मद कैश शमसी, मोहम्मद अजीम शमसी, सलीम शमसी, मोहम्मद नवेश शमसी और रजिया शमसी, साथ में हैं बेवी। और ये अनुरोध हमें भेजा है मालवा रेडियो संघ से, प्रेमिलागंज आलोट जिला रतनमाल एमपी से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति अतुल, पायल वर्मा, प्रियांशी वर्मा, ऋषि वर्मा। आप हैं विमल ठाकुर, सरिता, शुभ, लव, गुनगुन लिख रहे हैं हमें बक्सर दादागंज बधाइयों से। और आप हैं यादव मोहल्ला सनावत एमपी से।

पाकिस्तानी दादागंज से बदायूं से, और आप हैं यादव मोहल्ला सनाबत एमपी से, दीप मालाकर, योगेश मालाकर, सुनीता मालाकर और मुस्कान मालाकर। तो सुनते हैं इन सभी के अनुरोध पर ये गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, इसे गाया है अलका याग्निक और साथियों ने। गीत लिखा है समीर ने और अनुरोध है आप सभी का। आप हैं साथी महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, ज्योति, रियांश, सूरज और सभी साथी इनके। दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। परी मलकासगंज से आवाद खान, नबील खान, आरफा खान, निल्फा खान और सभी साथी ये लिख रहे हैं। दीदर गेट संघ से हैं बिलासगंज से एम असलम सैफी, जैबोन शबेगम, अकरम सैफी और आवाद खान। आप हैं बदायूं से ककराला से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, विकास सक्सेना, करमबीर, प्रवीण, अनिल नागर, सागर बख्शी और अमजद अंसारी। खुर्जिया उत्तर प्रदेश से हैं भाई तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंद्र अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। गुरु नानक नगर मलोट पंजाब से हैं राजीव सेतिया, आरती सेतिया, तनीश और रजनी सेतिया। आप हैं यादव मोहल्ला सनावत एमपी से दिलीप मालाकर, योगेश मालाकर, सुनीता मालाकर और मुस्कान मालाकर। गांधी चौक रोड पंजाब से मीका बिरक, बरविंदर बिरक, जतेक बिरक और हरदेव मीका। तो सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आप तक पहुंचा रहे हैं। फिल्म है मासूम, इसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, बोल हैं आनंद राज आनंद के, संगीत है आनंद राज आनंद का। और अनुरोध आप सभी का, आप हैसनावद एम पी से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश कौड़ और शादाब खत्री। आप है फूलवा कछावनी बरेली से विश्वनाथ भारद्वाज, शिवदत्त भारद्वाज, गंगाधर भारद्वाज, विक्की भारद्वाज, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देवकी भारद्वाज, शिप्रश, नीलम भारद्वाज और मुनिदेवी भारद्वाज। साथ में है श्रीराम राठौर। सरोजचौक अमरावती से हैं, महाराष्ट्र से कमल ठेकेदार, नसीबन बेगम, आयशा खान, हादिया, आसमा, सालिया, सोएब खान। पोतरा से मुश्तबा खान, रऊफ भाई और शाहीन शाहिद भाई। गांधी बाग कोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आप हैं मोहम्मद अकरम अंसारी, जमील अहमद अंसारी, बरकत अली, सुल्तान अहमद अंसारी, हसन अंसारी। साथ में हमजा अंसारी लिख रहे हैं। आप में

बरेली यूपी से, ये हैं जेल रोड रायगढ़ से रमेश तिवारी, रुस्तम तिवारी, आदिवा तिवारी, और राजनांद गांव से हैं यकूब आसमा, यूसुफ इमरान और इरफान आसमा। रायगढ़ से हैं वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां, वली अकरम नूरजहां और उल्ला अकरम नूरजहां। बजीगंज से हैं प्रेम कमल वाष्णे, सुशीला प्रभात, अमरीश सलोनी, सचिन नीरू, वेदिका देविका, वेदरिचा कार्तिक और ऐशा कमल वाष्णे। यह है उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौड़कर, सरिता गौड़कर और प्रिंस एकांश गौड़कर। बदलापुर मुंबई से हैं सिद्धांत गौड़कर, प्रणीता गौड़कर, अर्जुन गौड़कर। और नागपुर से हैं वैशाली वैशाली शैलेश गौड़कर, सुनीत सुमित, ध्वनि गौड़कर।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे अनुरोध की कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। अपराह्न के 2 बजे हैं, आप प्रस्तुत कार्यक्रम रसरंग।

ट्यून किया है आपने 100.4 FM और सुन रहे हैं प्रोग्राम रसरंग। प्रोग्राम में लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए ये गैर फिल्मी गीत।

काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। अभी आप सुन रहे थे ये मधुर गैर फिल्मी गीत मधुर शर्मा की आवाज में। कार्यक्रम में अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं जावेद का गाया ये खूबसूरत नगमा। माफ कीजिएगा श्रोताओं, गीत में स्वर जो है वो है नूरा सिस्टर्स का।

रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। इसी मधुर नज्म के साथ प्रोग्राम रसरंग अब यहीं संपन्न होता है। प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं भेजिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड है 243001। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 2:30 हो रहे हैं और अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे दाग फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे।

हम सुन रहे थे दीवाना फिल्म का यह गीत, मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत, रामी धोबन फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज में राम मूर्ति के बोल और हीरेन बोस के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत जलपरी फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में जफर राही ने इसे लिखा, सुरेश कुमार ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। यह था कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत। और आज्ञा दीजिए मुझे इस कार्यक्रम से। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, नमस्कार।

0: की सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारे सभी सहेलियों सखियों को और सखा को दीपा माहेश्वरी
2: राती श्रीवास्तव का नमस्कार।
3: क्या बात है आरती, हम देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे पसीने में तरम तर हो रही हो आप और भागते भागते आ रही हो, क्या बात है। पूरी सखियों पूरी पसीने में हो रही है, ये ऊपर से लेके नीचे तक
2: क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि बता नहीं सकते। मतलब बाहर आप थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं ना तो एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, इतनी गर्मी इतनी उमस हो रही है।
3: बात तो बिल्कुल सही है। और भाई देखो इसमें अपना सब है, हमारे सभी साथी बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम सब भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार एक दूसरे को अगर याद दिला दिया जाए ना तो अच्छा रहता है। वो क्या कहते हैं ना, रिवीजन होते रहना चाहिए,
2: बिल्कुल होते रहना चाहिए। और गर्मी के जो दिन है ना इसमें पसीना जब बहता है, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है जब हमारे शरीर से, तो बहुत ज्यादा हमें पानी की कमी अंदर हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें, बहुत ज्यादा मत पिए लेकिन थोड़ा थोड़ा घूट घूट भर के पानी पीते रहें,
3: बिल्कुल
2: तो शरीर में नमी बनी रहेगी।
3: और ऐसे पेय जो ठंडे होते हैं तो जैसे कि जलजीरा हो गया है या आम का पन्ना, इसका भी सेवन करते रहें, और अपना गन्ने का रस है इसका करते रहें, नारियल पानी लेते रहें ताकि जो खनिज है मिनरल्स हमारे शरीर में पसीने के साथ साथ निकल जाते हैं उनकी कहीं पे भी किसी तरह से कोई कमी ना हो। और जरूरत ना हो तो भर दोपहरी में बिल्कुल बाहर ना निकले,
2: बिल्कुल
3: है ना। और साथ ही 11 बजे के बाद से तो ऐसा लगता है कि धूप जैसे तप रही है और हम 5 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं आज तो जाना जरूरी है तो पूरे तरह से अपने आप को ढक कर जाए, हाथ पे सर पे भी हम स्टोल लगाती हैं महिलाएं, और अब तो बंडाना भी आ गए हैं जो कि हमारे सखा भाई सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरह के अलग अलग आ गए हैं, तो उन सबको आप अच्छे से बिल्कुल अपने शरीर
2: बिल्कुल अपने
3: पर
2: को पूरा ढक लगा के, जिससे कि धूप जो है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान ना कर सके। और साथ ही आप जैसे खीरा है, ककड़ी है, इस तरीके जो पानी वाले जो फल हैं, जो सैलेड हैं, वो आप जरूर खाएं,
3: बिल्कुल।
2: और खाने से ज्यादा आप इनका सेवन करें और पानी पिए, बहुत ज्यादा जरूरी है समय अपने आप को बचा के रखना।
3: जी, और खाने में भी ऐसा नहीं है भाई, मन क्योंकि छुट्टियों के भी दिन चल रहे हैं ना, बच्चे भी आए हैं घर में और मेहमान भी हैं, कुछ ना कुछ तो अलग अलग तरह के व्यंजन तो बनते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि तला भुना ना हो, पर अगर खाना भी पड़े तो उसको सीमित मात्रा में, और दूसरे दिन कुछ हल्का भोजन हल्का इस तरह का रेसिपी बना ले,
2: कोशिश करें कि हल्का फुल्का ही खाएं जिससे कि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस मौसम में अगर हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं तो शरीर के ऊपर बुरा असर तो पड़ता ही है क्योंकि हजम नहीं हो पाता ना वो चीज
3: जी,
2: तो इसलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा हल्का खाना खाएं। अगर एक टाइम आपने भारी भोजन किया है तो आप दूसरे टाइम बिल्कुल हल्का लें,
3: हल्का
2: वगैरह।
3: और बात जब इतनी व्यंजन की चल रही है तो हम ये भी बताते चलते हैं अपना श्रोताओं को सखियों को कि आज हम चावल के व्यंजन के बारे में बातचीत करेंगे।
2: तरह तरह
3: आपके घर में जी
2: तरह तरह के चावल
3: तरह तरह के चावल के व्यंजन आपके घर में कोई स्पेशल बनता है क्या, तो वो जरूर बताइएगा। वैसे संदेश आए हैं पर हम चाहते हैं आपके घर में अगर चावल का कुछ ऐसा बनाना हो जाए तो आप क्या बनाएंगी, हमारी सखियां बताएं और हमारे सखा भी बताएं कि उन्हें किस तरह का,
2: बिल्कुल, क्योंकि आजकल सखा भी बनाते हैं।
3: हाँ बिल्कुल,
2: हर घर में सखा भी इसमें भोजन बनाने में अपनी पूरी सहायता करते हैं सब कामों में। तो आप बताइए आपको कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा व्यंजन है बहुत ज्यादा पसंद है जो आप आते भी हैं और खिलाना आपको पसंद है।
3: बिल्कुल, और आरती आज हमने हमारे जो भी सखी सहेली परिवार के सारे श्रोताओं को एक शब्द दिया है, आलोचना। तो शब्द यहाँ से स्टूडियो से आए हैं लेकिन आप तक पहुंचे हैं, तो आप बताइए इस शब्द आलोचना के लिए आपके क्या विचार हैं, क्या अनुभव हैं और क्या आपको लगता है ये
2: आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि इसको सकारात्मक तरीके से भी समझा जा सकता है और नकारात्मक तरीके से भी इसके पहलू हो सकते हैं,
3: और उसकी वजह से कई सारे जिंदगी में हम लोग ने अलग अलग तरह के अनुभव भी सब लोगों ने उसको जिया है ना, तो वो जरूर बताइएगा। और साथ में देखिए

0: बुजुर्गों में जो एक मोबाइल के प्रति प्रेम जो हम देखते आ रहे हैं, हम अपने घर के नीचे गार्डन में या कुछ ऐसा कॉमन एरिया होता है वहां देखते हैं, बड़े मतलब बच्चे तो मोबाइल की तरफ है ही आकर्षक। हाँ। अब जो घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें भी मोबाइल देखने की आदत बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बढ़ रही है आदत, उसके फायदे भी हैं क्योंकि वो सीख भी रहे होते हैं कि टेक्निक क्या है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करें, अगर हम घर में अकेले हैं तो क्या क्या चीजें हमें इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। और कुछ हमारे बड़े ऐसे भी होते हैं वो जो बहुत आसानी से चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए ये एक मनोरंजन का साधन भी हो जाता है। देखिए, इसके सकारात्मक विचार भी
1: हर चीज के दो पहलू होते हैं,
0: गुण हर एक चीज के सिक्के के तो दो पहलू हमेशा होते हैं। तो बहुत सारी राय हमारे श्रोताओं ने तो लिख भेजी, हम चाहते हैं आप और लिख के बताइए
1: कि इसमें नकारात्मक पहलू क्या है, क्या इसके है? और सकारात्मक क्या है। और साथ ही आज हम बात करेंगे साड़ियों संसार लेकर आए हैं,
0: तो साड़ियों के संसार आज कहाँ चलने वाले हैं।
1: आज हम साड़ी लेकर आए हैं, कलमकारी साड़ी जो आंध्र प्रदेश में बहुत की है।
0: बहुत सारी सखियों को ये प्रिय होगी साड़ी, मुझे तो पूरा विश्वास है। तो बहुत सारे संदेश लिखने हमने अपने श्रोताओं को कह दिए हैं,
1: तो गीत सुन लेते हैं पहले।
0: चलो चलते हैं।

0: यही तो सवाल हम आरती से कर रहे हैं कि भाई आरती आप हमारी कौन है?
1: हम आपकी सखी हैं और सभी सखियां जो हैं अब सुन रही हैं उनकी भी सखी हैं, सखाओं के भी,
0: तो हम सबकी हैं सखियां सहेलियां और ये संसार है बातों का, ज्ञान का, मनोरंजन का और गीतों के सफर का, जहाँ बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। आज हम कलमकारी साड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
1: बिल्कुल, साड़ियों के तो बारे में सुनने के लिए वैसे भी हमारी जो सखियां हैं, जो सखा तो इसलिए उतारू रहते हैं कि भाई चलो हम कोई गिफ्ट कर देंगे अपने
0: बिल्कुल
1: तो इस वजह से तो हम आज लेकर आए कलमकारी साड़ी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मसूलीपट्टनम कलमकारी साड़ियों की उत्कृष्ट डिजाइन और सुंदरता के जो जन्म स्थान, मतलब यहीं से ये साड़ियां निकली हैं। ये साड़ी कॉटन, मलमल और सिल्क जैसे फैब्रिक में आती हैं और ये पहनने में बहुत ज्यादा हल्की, आरामदायक और क्लासी लुक देती हैं। क्योंकि हम लोग ऐसी साड़ियां ढूंढते हैं ना कि थोड़ी एकदम आरामदायक हो और बहुत ज्यादा भारी ना हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि आरती रोजमर्रा में पहनने की आदत उतनी बची नहीं है ज्यादातर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की हो, कंफर्टेबल हो और साथ में एक एक जो उनके लुक आए,
1: हाँ, गरिमामय
0: लुक आए। तो कलमकारी साड़ियां कला और कहानी कहने की परंपरा का संगम है। ये हाथ से बनी होती है, ब्लॉक प्रिंटेड डिजाइनों के लिए ये साड़ियां हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इनके अनूठे रूपांकन और जीवंत पैटर्न इन्हें पारंपरिक अवसर और आधुनिक पहनावे दोनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंट होती है और हाथ से बनी होती है, फूल होते हैं, कहीं पे जानवरों के डिजाइन होते हैं, कहीं पे ज्योग्राफिक पैटर्न होते हैं, तो बहुत
1: सुंदर लगती हैं
0: जी।
1: और कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम और करी से बना है, जो कि यानी कि कलम और कारीगरी
0: जी,
1: जिस तरह से इसमें कारीगरी करते हैं ना, जिसका अर्थ है कलम का शिल्प। ये प्राचीन कला जो शैली है वो 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पन्न कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जटिल हस्तचित्रण या ब्लॉक प्रिंटिंग का टेक्निक अपनाई जाती है।
0: बिल्कुल, और परंपरागत रूप से अगर देखें तो इन साड़ियों में महाभारत, रामायण, पुराणों के पौराणिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। अक्सर इनका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। उस समय समय के साथ साथ कला का यह रूप फिर धीरे धीरे विकसित भी हुआ। फिर इसमें पुष्प, पशु और जैसे हम बात कर रहे थे ना, ज्यामिति आकृतियों को, इनको भी सबको शामिल किया गया।
1: बिल्कुल, और इससे कलमकारी साड़ियां विभिन्न अवसरों के लिए एक बहुत ज्यादा बहुमुखी बन गई, मतलब आप किसी भी अवसर पर इनको पहन सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल हैं, प्राकृतिक रंगों के उपयोग से इन साड़ियों को उनके विशिष्ट मिट्टी जैसे रंग और जीवंत रंग मिलते हैं। और कलमकारी डिजाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहाँ तक कि ऑर्गेन्जा जैसे कपड़ों पर तैयार किए जाते हैं, जो आरामदायक भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं
0: जी। अब एक अगर साड़ी बनानी होती है सखियों, तो उसमें कई तरह के चरण है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे पूरा करने के लिए अक्सर हफ्तों लग जाते हैं। अब इनमें जितनी जो मनमोहक कलाकृति है, उसमें कृष्ण रास लीला है, पार्वती, विष्णु या महाभारत, रामायण के दृश्य चित्रित होते हैं। ये दिव्य आकृतियां कलमकारी साड़ियों में एक आध्यात्मिक आकर्षण इसे जोड़ती है।
1: बिल्कुल, और अक्सर लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो इनको लेना पसंद करते हैं
0: जी।
1: और ये साड़ी कला के माध्यम से समृद्ध प्राचीन इतिहास को संरक्षित भी करती है। पौधों और सब्जियों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से इसे जीवंत रंग और अनूठी बनावट मिलती है। रंगाई और छपाई की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित अंतराल कलमकारी साड़ियों की कारीगरी को और भी ज्यादा जटिल बना देता है।
0: बिल्कुल, और कलमकारी साड़ी बनाने में एक पीस को बनाने में आप ये समझिए कि 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। बेहतर रंग अवशोषण के लिए कपड़ों को धोया जाता है, गोबर और दूध से उपचारित किया जाता है, गुड़ और लोहे के जंग से बने रंग का उपयोग करके वो काली रूपरेखा, जो एक उसमें बॉर्डर हमेशा जो इसमें आकृतियों की बॉर्डर होती है वो काले कलर की होती है, तो वो इस तरह से तैयार की जाती है। फिर जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रंगों को धीरे धीरे एक एक परत दर परत फिर लगाया जाता है
1: जी। इतना अलग ही तरीके का एकदम प्रोसेस है इसका।
0: और हम देखिए ना, जाके दुकान पे फिर कितना बार्गेनिंग करते हैं। हम जानते ही नहीं कि ये साड़ी, अगर आप मतलब एक प्योर कलमकारी साड़ी लेने जाते हैं तो कितना उसमें
1: बहुत मेहनत है,
0: कितनी मेहनत है, परिश्रम।
1: बिल्कुल, और पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग होता है, लाल रंग के लिए अनार का छिलका और नीले रंग के लिए नील। प्रत्येक रंग लगाने के बाद धुलाई और सुखाने की आवश्यकता होती है। कुछ कपड़ों को रंग स्थायी रूप से लगाने के लिए उबाला

0: जाता है। एक बार जब रंग कपड़े पर पूरी तरह से समा जाता है तो कारीगर हाथ से चित्रकारी करके या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा डिजाइन बनाते हैं।
1: क्या बात है। और कलमकारी डिजाइनों को उत्तम फिनिशिंग और बारीकियां देने का काम केवल वर्षों के अनुभव और उत्कृष्ट कौशल वाले कारीगर ही कर सकते हैं। और डिजाइनों की रूपरेखा बनाने के लिए एक महीन नोक वाले ब्रश या स्याही से भरे लकड़ी के ब्लॉक का इसमें उपयोग किया जाता है।
0: जी, और रूपरेखा पूरी होने के बाद रंगों को भरा जाता है। फिर रंगों और प्राकृतिक बनावट को पक्का करने के लिए साड़ी को धूप में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद अतिरिक्त रंग को हटाने के लिए कपड़े को दोबारा धोया जाता है। और कलमकारी डिजाइन भारतीय पारंपरिक कला और रचनात्मकता की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करते हैं।
1: जी, कलमकारी साड़ियां आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जब इनकी देखभाल होती है बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इन्हें हमेशा अलग से धोइए, ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें। साड़ी को ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि उसको अगर आपने घर में धोया भी है, ड्राई क्लीनिंग नहीं कराया, घर में धोया भी, तो बस डालना है और बाहर
0: बस,
1: निकाल देना
0: हाँ
1: है। और इसे छाया में ही सुखाना है, तेज धूप में कभी नहीं सुखाना है, कम आँच पर उल्टी तरफ से ही इस्त्री इसे करना है।
0: बिल्कुल। और सही देखभाल करने पर कलमकारी साड़ियां वर्षों तक चलती हैं। समय के साथ ये और भी मुलायम होती जाती हैं और इनके रंग भी बरकरार रहते हैं। क्योंकि सब कुछ हाथ से बनाया जाता है, इसलिए कोई भी दो साड़ियां पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती। मामूली अंतर ही इसकी प्रामाणिकता का सूचक होता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसके जो नेचुरल रंग है, आध्यात्मिक डिजाइन, कलात्मक प्रक्रिया, समृद्ध परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव मनाते हैं। विकास, सद्भाव, संरक्षण और दिव्य आकर्षण का प्रतीक प्रत्येक कलमकारी साड़ी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बयां करती है। और
0: बिल्कुल,
1: ये सच में ये साड़ियां इतनी सालों तक चलती है कि हाँ, नानी माँ को दे सकती है, माँ अपनी
0: बिल्कुल
1: बेटी को दे सकती है, तो आपके लिए एक धरोहर के रूप में ये साड़ी बनकर आती है।

0: हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होता है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि साड़ियों के बिना हमारा मन ही नहीं लगता,
1: मन नहीं लगता। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले विषय पे।
0: हाँ, वो भी तो कुछ ऐसी चीज है जिसके बिना बिल्कुल
1: मन नहीं लगता है
0: भाई। बात हम सिर्फ बुजुर्गों की या बड़ों की कर रहे हैं, लेकिन सबका हाल कुछ
1: बच्चे बूढ़े जवान सबका एक ही है बिल्कुल। जिसके लिए सब लोग, मतलब जिसके बिना जी नहीं सकते, वो है मोबाइल।
0: बिल्कुल। और ये स्मार्टफोन ना आरती, हमारे जीवन का जैसे एक अभिन्न अंग सा बन गया है।
1: जी,
0: जीवन को आसान बनाने के लिए हम तरह तरह के गैजेट्स पे देखो ना आजकल निर्भर होते ही चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे, लेकिन आज हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण गैजेट है वो है हमारा स्मार्टफोन।
1: जी, चाहे कॉल करना हो, चैट करना हो, खरीदारी करनी हो, पैसों का लेन देन करना हो या कुछ और, हमारा स्मार्टफोन सब कुछ संभाल लेता है। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का जो शौक है वो उनके लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों ही हो सकता है। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए बुजुर्ग अपने दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि वरदान की तरह है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मदद की जरूरत पड़ने पर मोबाइल एक जीवन रक्षक साबित होता है। इसके अलावा मदद पहुंचाने के लिए जीपीएस से उन्हें ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। मोबाइल पर वो अपनी पसंद के पुराने गाने हो या भजन हो, धार्मिक प्रवचन हो या समाचार, जो भी चाहे आसानी से देख सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन बिल जमा करना, दवाइयां मंगाना या बैंकिंग से जुड़े काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बस एक क्लिक पर वो सारा काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। कई मोबाइल फोन में स्वास्थ्य संबंधी एप्स भी होते हैं जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं। मोबाइल के ई पुस्तकें भी होती हैं, संगीत वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बढ़ती उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो उस वो भी रहता है और मनोरंजन भी हमारे बड़ों को मिलता रहता है।
1: बिल्कुल। और मोबाइल फोन अब महज विलासिता के उपकरण नहीं रह गए हैं, ये जीवन रेखा की तरह बन गए हैं जो बुजुर्गों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। संचार और आपातकालीन सहायता से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग तक, ये उपकरण कई ऐसे फायदे प्रदान करते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, सभी उपकरणों की तरह तकनीक को समझना और सही तरह से इसका उपयोग करना जरूरी है। लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ बुजुर्गों में फोन का प्रेम बढ़ रहा है, वो दूसरों से बातचीत करने के बजाय स्क्रीन देखने में, हम ऐसा देख रहे हैं कि स्क्रीन देखने में समय उनका ज्यादा बीतता है और इससे अवसाद हो सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय तक अगर इन सब चीजों में लगे रहते हैं ना, तो एक जो हमारा जो दिमाग है ना, वो उसमें लगे लगे अवसाद का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन सा होने लगता है हमें,
0: क्योंकि वो बाहरी दुनिया से ऐसा लगता है जैसे कट से गए और घंटों फोन पे गर्दन झुकाए अगर देखते रहते हैं तो एक किसी और ही दुनिया में चले जाते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: और वो हमारे शारीरिक बनावट पे भी बुरा असर डालता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि एक ही तरीके के उसमें हम बैठे रहते हैं, एक ही तरीके के पोज बनाए हम बैठे होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से परेशान करता है। और हम सभी ने बाहर घूमते फिरते देखा ही है कि लोग अपने फोन में इतना मगन रहते हैं कि वो अपने काम का आनंद ही नहीं ले पाते। और जब बुजुर्ग लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं या अन्य गतिविधियों में स्क्रीन से चिपके रहते हैं, तो वो खुद को और अपने प्रियजनों को उन यादों से वंचित कर देते हैं जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन सकती थी। जब वो साथ में सबके बैठ के बातें करते करें या बच्चों के साथ में खेलें या उनसे कुछ सवाल पूछें, उन्हें अपने अनुभव बताएं, तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो खेलते हैं अपने दादी दादा के साथ में, तो वो जो समय है वो उनका रह जाता है।
0: बिल्कुल, वो कहीं छूटता सा चल जा रहा है। एक रिपोर्ट भी आई आरती इसमें कि अब बच्चों की तरह बुजुर्ग में भी फैमिली टाइम के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के साथ साथ AI चैटबॉट से चैटिंग में लगे रहते हैं। ये

0: इस तरह की रिपोर्ट आई
1: जी
0: है।
1: हाँ
0: और एक और रिपोर्ट आई है कि अगर स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी समेत सारे डिजिटल डिवाइसेस को मिला लिया जाए तो बुजुर्ग लोगों का स्क्रीन टाइम युवाओं से ज्यादा
1: बिल्कुल,
0: हो रहा
1: ये
0: है।
1: शोध में सामने आया है
0: जी
1: कि बुजुर्ग युवाओं से ज्यादा फोन देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा फोन देखने की वजह से फोन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है, वो जो ब्लू लाइट कहते हैं जिसे,
0: जी
1: वो जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है वो उसको रोकती है, जिससे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती और सारे दिन की दिनचर्या बिगड़ जाती। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना, तो सारा दिन अजीब सा रहता है, बिल्कुल सुस्ती
0: बिल्कुल।
1: छाई
0: और
1: रहती
0: हम
1: है।
0: शिकायतें करते रहते हैं, आज हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई, आज हम परेशान से हो रहे हैं, तो
1: बिल्कुल
0: कहीं कारण ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं देर रात तक हम फोन पे तो नहीं बैठे हुए
1: बिल्कुल।
0: थे।
1: और बुजुर्गों में फोन की लत डिजिटल डिमेंशिया भी, तनाव वाला भी, और तनाव भी पैदा कर रही है, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग पर दबाव पड़ता है, वो भूलने लगते हैं हम चीजों को।
0: हाँ ये बात तो है, बिल्कुल सही। और भूलने की आदत और चिड़चिड़ापन देखो ना बढ़ता चला जाता है। सोशल मीडिया या वर्चुअल दुनिया में समय अधिक बिताने से वो जो असल की दुनिया है उसमें अकेलापन उनका बढ़ने लग जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है फिर ये। इसके अलावा घंटों गलत तरीके से झुक कर बैठे बैठे रहना, फोन चलाने से गर्दन, रीढ़ की हड्डी, आप ये देखिए सब में उनमें दर्द की ये शिकायतें करने
1: बिल्कुल।
0: लगते हैं।
1: और फोन में उलझे रहने के कारण लोग टहलना बंद कर देते हैं, जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है, और लगातार छोटी स्क्रीन देखते रहने से आंखों में सूखापन, जलन और धुंधलेपन की समस्या भी हो जाती है। और बहुत से बुजुर्ग अक्सर तकनीकी रूप से इतने ज्यादा, बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि शहरों में, छोड़ दीजिए गाँव में या और किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा वो तकनीकी रूप से उसमें सुदृढ़ नहीं हुए हैं, तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है।
0: बिल्कुल। और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बुजुर्ग अक्सर ऑनलाइन ठगों के जाल में भी फंस सकते हैं
1: बिल्कुल
0: और फंस भी जाते हैं। ऐसे में लॉटरी, बैंक या सस्ते सामान के जो लुभावने संदेश आते हैं ना,
1: हाँ
0: उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। उसके बदले में वो अपनी गाड़ी, जो कमाई होती है मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो सब गंवा बैठते हैं। तो बड़ों के पास समय खूब तो रहता है, लेकिन ऐसे यूजर्स के लिए कंपनियां एंडलेस गेमिंग के कंटेंट को डेवलप कर रही है।
1: ऐसे गेम
0: तो
1: बना रहे हैं ना वो लोग, कि
0: जी
1: जिससे कि वो गेम में लगे रहें, फिर अगला लेवल करना है, अगला लेवल करना है, जैसे कि बच्चों में होता है, वैसे ही
0: हाँ बिल्कुल।
1: बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके के गेम्स बनाए जाने कि वो अगले लेवल पे जाने के लिए पैसा लगाएं, तो जिससे कि
0: तो
1: उनको
0: ये
1: फायदा
0: और
1: हो।
0: उनको लुभावना और आकर्षित करने वाली
1: जी
0: चीजें
1: हाँ
0: हो जाती है और वो फंस जाते हैं उसमें। तो अपनी पैसों को भी संभाल के रखें, वो ध्यान रखें कि हम इन सब
1: बिल्कुल।
0: चीजों से
1: और
0: ना
1: सबसे बड़ी
0: फंसे।
1: बात है दीपक, कि हमको वास्तविक दुनिया से ज्यादा जुड़ना चाहिए, बजाय इस तरीके की वर्चुअल दुनिया में रहने के।
0: बिल्कुल। और इसी को लेके देखो ना, कई सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। ये एक संदेश कहता है कि बड़े बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल आने के अनेक फायदे हैं। वो अपने पुराने मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर मुलाकात हो जाती है। शरीर साथ नहीं देता है मोबाइल, लेकिन तो साथ देता है, वो आपस में परिवार के साथ भी जुड़े रहते हैं। मोबाइल आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है।
1: बिल्कुल। और एक कविता भी एक हमारी सखी ने लिखकर भेजी है, जिसको हम पढ़ लेते हैं। गुजरे हुए जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग करते थे चिट्ठी पत्री मुलाकातों का इंतजार, जीवन सीधा साधा था, यारों का मेला भी था, तब गप्पों की नगरी में कोई नहीं अकेला था, सब सुख दुख के साथी थे, होठों पे मुस्कानें थी, जब से आई नेट की आंधी सब उसमें उड़ चले, उससे इससे सीखा उससे सीखा, ज्ञान का पान कर लिया, अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करते करते थकते नहीं हैं उनके हाथ, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं, हंसी मजाक और किस्से जमकर खूब सुनाते हैं, नींद उड़ गई उनकी लेकिन रातों को भी बतियाते हैं, डर है इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार, फ्रॉड कॉल्स में फंसे कभी ना हो जी का जंजाल, डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं, बुजुर्ग बने हैं बड़े सियाने दवा खोज कर खाते हैं, उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो रम जाते हैं, नए जमाने के संग चलकर वे खूब मजे उड़ाते हैं। ये कविता उन्होंने भेजी है, बहुत
0: क्या
1: बढ़िया।
0: बात है, बहुत सुंदर कविता। और बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं एक अंतराल के बाद।
1: जी।

0: हम अंतराल के बाद एक संदेश सुनते हैं और फिर बातों का सिलसिला जी जारी रखेंगे।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: पड़े, सबके लिए अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना,
1: बिल्कुल
0: पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है, जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं और वो भी थोड़ी ऊंची आवाज में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी, और उनके घर के भी सदस्य चिढ़ जाते हैं और इसी तरह बातों को लेकर के माहौल कुछ गर्म हो जाता है। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास आप उनके पास प्यार से उनको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने का समय है, या 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए बातें कीजिए, तो उन्हें लगता है हमारे सखी को वो हमेशा मोबाइल पर नहीं बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहती हैं कि कुछ गलती उनकी भी नहीं है, या यूं कहिए कि कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मोबाइल पर पूरा वॉल्यूम इसलिए उस पर सुनते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। साथ में कहती हैं फायदा तो मुझे यही नजर आता है कि कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कभी कभी फिल्में भी देख लेते हैं, तो ठीक है, अति हर चीज की बुरी होती है, उसके चलते उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आंखों में ड्राइनेस आ जाता है, तो जब समय पर दवा नहीं मिलती तो उसके लिए भी वो हल्ला करते हैं, तो हर चीज का एक
1: बिल्कुल
0: संतुलन
1: देखिए,
0: उन्हें जरूरी
1: बिल्कुल
0: है।
1: ये जो चीजें हैं इनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए ही बुरी हैं। अगर कोई इफेक्ट होता है, अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो वो सभी के लिए, बच्चे हों उनकी भी आंखों पे खराब असर पड़ता है, बड़ों के लिए भी, है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझें, समझ के तब उसका उपयोग करें, ताकि आप किसी इस तरीके की चीजों में ना फंसे, जैसे गेम्स हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, जो लॉटरी निकला या आपके ऐसे इस तरह की चीजें आती हैं, तो उसमें ना फंसे, ठीक है। जिससे कि वो इतनी अपनी पूरी उम्र लगा के वो जिस पैसे को कमाते हैं वो अपनी कमाई को इस तरह गंवा ना दें, बस
0: बिल्कुल
1: कहने का ये मतलब है। और बेहतर होगा इस तरीके की चीजों को हम समझें।
0: और एक और संदेश आया है कि बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम और या फायदे, तो वैसे देखें तो मोबाइल का जो सही उपयोग करता है उसके लिए सही है, पर बड़े जो हमारे घर के बूढ़े हैं वो लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, वो कुछ देर कुछ देख लेते हैं, सीखते भी हैं कुछ दुनियादारी की बातें, उनका समय एक तरह से अच्छी तरह से गुजर जाता है। इस उम्र में कुछ बुरा तो वो शायद सीखते भी नहीं है, कुछ इस तरह से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है मोबाइल फोन बड़े बुजुर्गों के लिए।
1: नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल ये हम कह भी ये नहीं कह रहे कि वो कोई चीज़ बुरी है। सिर्फ उन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चीज़ें करें, अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए चीज़ें को करें, तो कोई चीज़ इस तरह से बुरी नहीं, बल्कि और फायदेमंद है कि
0: बिल्कुल
1: वो अपना दवाइयाँ मंगा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जिनसे वो बात नहीं कर पाते, जा नहीं पाते मिलने, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें देख के बातें कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर बहुत फायदे हैं। नुकसान बस इतना है कि बहुत ज़्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो आंखों में या उसी पोस्चर में एक ही तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में परेशानी आ सकती है। और दूसरी चीजें, चलना फिरना, जो आपसी बातें करते हैं वो चीजें छूटने लगती हैं कहीं पीछे, और वो इतना कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनको लगता है कि हाँ, उसको मोबाइल को देखते देखते कि हम ये चीज कर पाते काश हम, तो वो अवसाद में भी आने लगते हैं। बस ये चीजें जो बुरा असर अगर आप पे नहीं डाल लिए तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छा है,
0: बिल्कुल सही
1: जब
0: कहा।
1: तक आपके
0: और
1: ऊपर
0: जो
1: बुरा नहीं
0: अकेले
1: पड़े।
0: रहते हैं घर में,
1: जी
0: सीनियर सिटीजन,
1: जी
0: उनके बच्चे बाहर हैं या नहीं, उनके किन्हीं कारणों से उनके साथ रह पाते हैं, तो उनके लिए इसका बहुत फायदा है
1: जी बिल्कुल
0: कि वो अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, यहाँ तक कि कई कई घरों में वो नहीं सीसीटीवी टाइप लगा दी
1: हाँ
0: जाती
1: हाँ
0: हैं ताकि वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी सीखने में बुराई नहीं है,
1: बिल्कुल
0: बस
1: नहीं,
0: अगर उसका
1: सही
0: किस तरह से
1: तरीके से।
0: संयमित
1: और ये
0: इस्तेमाल
1: सिर्फ
0: करना है
1: बुजुर्गों के
0: ये
1: लिए नहीं,
0: हमें
1: बच्चों के लिए भी है, हर इंसान के लिए जो भी इन सब इन गैजेट्स का उपयोग कर रहा है, सभी के लिए चीजें हैं।
0: जी
1: और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखती हैं कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए मोबाइल बहुत फायदेमंद होता है। मोबाइल के जरिए वो लोगों से जुड़ पाते हैं और कुछ काम स्वयं कर पाते हैं, जैसे बैंकिंग है, डॉक्टर से परामर्श करना है, टिकट बुक करना है। और बताती हैं कि वो, मेरे पापा भी पहले छोटा फोन चलाते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब हमने उन्हें स्मार्टफोन लेकर दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसे चलाना सीख लिया। अब सुबह उठकर उसका सबसे पहले यही काम उनका रहता है कि वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसके अलावा वो विविध त्योहार भी फोन भी जो होता है उसको भी फोन पर ही सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये।
0: तो चलो विविध भारती का ही कुछ एक गीत सुनते हैं।

ಕಥೆಯ

0: तो अब हम कहाँ आ गए हैं?
1: अब हम दूसरे सेगमेंट पर आ गए हैं। अपने विषय है हमारा, जो हमने शब्द दिया था अपने श्रोताओं को कि आप इस पर अपने विचार लिखें, वो है आलोचना।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। ये पहला संदेश कहता है कि अगर सकारात्मक हो तो उसे समीक्षा कहते हैं। किसी किताब, कविता, नाटक, फिल्म या कार्यक्रम की भली या बुरी विशेषताएं सहज सुंदर शब्दों में सूचित करना। आलोचना अगर जानबूझकर नकारात्मक वृत्ति से हो तो उसे कहते हैं बुराई, जिसमें ऐसे आलोचना ही ज्यादातर दिखाई देती है, जिसमें मत्सर अहंकार की गंध आती है।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि भाई आज का शब्द आलोचना है, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, और ऐसा देखा जाता है कि लोग वाह वाह तो सुनना चाहते हैं लेकिन आलोचना नहीं, ये लोगों की प्रियता की बात है। फिर वो है ना कि मीठा मीठा गप और तीता तीता थू, आलोचना ऐसे ही तिक्त रस युक्त ऐसी चीज है। जो किंतु जो लोग आलोचना सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपने अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है।
0: क्या बात है, अच्छी उन्होंने जानकारी हमें हमारे श्रोता ने लिख भेजी। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है और उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। बिना किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए आलोचना, रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं, बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि इस तरीके से की जाने चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोष को का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान को आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की जाए तो मन को चोट पहुंचाती है। और हमें आलोचना से घबराने के बजाय उसे सीख की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियां वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनता देखना चाहते हैं। और साथ हमें अपने किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों पर विनम्रता और सम्मान बनाए रखना चाहिए। और सच्ची आलोचना वही है जो इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने,
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश

0: कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता की भावना हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है। सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। ये बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे, बल्कि इस तरीके से की जानी चाहिए कि वो सामने वाले को अपने कमी को सुधारने में मदद कर सके।
0: तो अब क्या करना चाहिए?
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: चलिए।

0: आरती, देखो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई हमारे सिर्फ होश नहीं उड़ रहे हैं, अब हमें कुछ तृप्त भी कीजिए क्योंकि हमें अब कुछ खाने की इच्छा हो रही
1: खाने
0: है।
1: की इच्छा। तो आज हम लेके आए चावल के व्यंजन, जो हमारे श्रोताओं ने खूब अच्छे से बहुत अच्छी ढेर सारी रेसिपी भेजी है, जिसको हम जाके घर पर भी बना सकते हैं। तो
0: पहले पहले रेसिपी कौन सी बताने वाली हैं आप?
1: पहली रेसिपी मैं बताने वाली हूँ, गाजर और चावल की खीर।
0: क्या बात है।
1: मीठी मिठास से शुरुआत करते
0: बिल्कुल।
1: हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर और 1/4 कप चावल और 1.5 लीटर दूध और आधा चम्मच इलायची पाउडर, 10 काजू भीगे हुए, 1 चम्मच घी और स्वाद अनुसार चीनी। आवश्यकता के अनुसार ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा आप वो से ले सकते हैं। और साथ ही इसकी विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर छोटे चावल को धोकर 30 मिनट तक पानी में भिगा कर रखें, काजू को भी पानी में भिगा कर रखें, फिर 2 चम्मच चावल और काजू में थोड़ा सा दूध

0: डालकर उसको दरदरा पीस लीजिए। एक तरफ एकदम सिम पर फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन में एक चम्मच घी डालकर गर्म कर लीजिए। फिर कद्दूकस किए हुए गाजर को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। अब इसमें आप दूध डाल दीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए। फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद के जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि खीर ज्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से आधा कप दूध डालकर 1 मिनट और पकाइए और स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डालिए और तैयार है आपकी खीर।
1: क्या बात है। तो देखिए ये खीर बन गई है चावल की। अब हम बता रहे हैं आपको चावल की पिन्नी। इसके लिए लेना है 2 कटोरी चावल का आटा, 1 गिलास दूध, आधा कटोरी चीनी, 5 इलायची, 15 के करीब बादाम, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसी तरह काजू लेना है, 1 सर्विंग स्पून किशमिश और 1 कटोरी देसी घी। बनाना है चावल की पिन्नी के लिए आप चावल के आटे को कोरा भून लें जिससे उसकी नमी निकल जाए, यानी थोड़ा मॉइस्चर उसका बाहर निकल जाए। अब उसमें आधा घी जितना आपने लिया है ना नाप का, उससे आधा घी डालें, 5 मिनट तक उसको भूनना है। फिर 1 गिलास जो दूध लिया है इस आटे में मिक्स करना है धीरे धीरे। अब पहले तो थोड़ा सा धीरे और उसके बाद फटाफट फटाफट चलाइएगा ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डालें और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगे तब तक आप उसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर आधा घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम है, काजू है जो आपने भून के रखे हुए हैं, चाहे तो भून लीजिए, ना चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीस के भी उसको डाल सकते हैं। और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए, वो डाल लीजिए। फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए और फिर छिलके सहित इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से, तो खूब अच्छे से ये इलायची पाउडर बन जाती है। इसके बाद अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो आपने भून रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ठंडा होने पर लड्डू इसके बांध लीजिए। आप देखिए कि चावल के आटे की पिन्नी है ये बनकर तैयार हो गई है।
0: बहुत ही बड़े लगते होंगे। और
1: हाँ बिल्कुल
0: जी बिल्कुल। और अब एक हम छोटा सा एक ले लेते हैं।
1: चलिए
0: तो वो मैं बताते हैं कि चावल का डोडा इसमें बताते हैं कि बहुत ही अच्छा बनता है जिसमें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये सादा भी बनता है और हरी लहसुन के पत्ते, हरी धनिया के पत्ते, प्याज के पत्ते, टमाटर, आलू बारीक कटे हुए मिलाकर नमक मिर्च डालकर गूंद लेते हैं और हाथ से थपथपाकर तवे पर सेकते हैं। चाहे तो बेलकर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
1: चलिए तो हम इसको भी खाकर देखेंगे, बनाकर देखेंगे, लेकिन अभी तो सुन लेते हैं हम ये गीत।

0: आरती, देखो ना, बातों का सिलसिला तो लगता नहीं कि कहीं खत्म हो सकता है ना, लेकिन हमारा समय की जो सुइयां है,
1: समय हमें सीमित समय दिया गया है बात करने के लिए,
0: तो आज तो हम लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि कल दो सखियां आकर के फिर ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत सारा होगा मनोरंजन। आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4 बज रहे हैं और आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ।

0: ट्यून किया है आपने 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। और श्रोताओं, बात कर रहे थे हम आपकी बात आकाशवाणी के साथ की, तो ये कार्यक्रम जरूर लेकर हाजिर होंगे हम बस अब से कुछ देर बाद। लेकिन आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी के दीवाने एक सीरीज चलाई गई है। और इस सीरीज में आज हमारी नियमित श्रोता माधुरी कश्यप को और उनके विचारों को सुनते हैं, आइए आकाशवाणी के दीवाने में।
1: नमस्कार, मेरा नाम माधुरी कश्यप है और मैं बरेली की रहने वाली हूँ। आकाशवाणी के 90 इयर्स पूरे हो रहे हैं, इस बात की बहुत बहुत बहुत सारी बधाइयाँ पूरी टीम के लिए। और अगर इसकी यादों की कहा जाए या इससे जुड़े रहने की कहा जाए, तो मैंने तो बचपन से सुना है, तो ये एक्चुअली बचपन से जो काम आप करो ना वो आपके हैबिट में शामिल हो जाता है। तो मैंने आकाशवाणी को बचपन से सुना, हमें याद है हमारे पापा के पास इतना बड़ा और इतना चौड़ा सा एक रेडियो हुआ करता था। और जब हम थाने में रहते थे, क्योंकि मेरे पापा पुलिस से हैं, तो फिर वो सुबह स्टार्ट हो जाता था और वो दिन भर चलता था जब तक कि चालू रहता था। उसके बाद जब प्रोग्राम बंद हो जाते तो फिर बंद हो जाता था, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता था। तो हमें याद है कि उस वक्त मैं, क्योंकि मुझे कुकिंग का बचपन से शौक है, तो कुकिंग की अगर कोई चीजें जानकारी आती तो मैं कॉपी में नोट डाउन करती थी। इवन भजन गीत छंद ये सब मैं कॉपी में लिख लेती थी, ताकि क्योंकि उस समय यूट्यूब वगैरह तो हुआ नहीं करता था, तो यही था एक मनोरंजन का साधन। तो हम ये कॉपी में नोट कर लेते थे, फिर जब कीर्तन वगैरह कुछ होता था तो हम गाते थे। मेरे पास आज भी वो नोट डाउन है। तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उससे। और बहुत सारी महिलाओं से रिलेटेड प्रोग्राम की जानकारियां होती हैं, वो भी हमें यहीं से मिलती थी। और आज के टाइम में तो यूथ के लिए काफी अच्छे काम कर रहे हैं, नई नई जानकारियां देना या बच्चों को किन चीजों से दूर रखा जाए, कौन सी चीजें दी जाए, इस तरह की जानकारियां देना। आज भी मेरे पापा को तो मतलब अभी भी हमारे घर में एक इतना बड़ा सा एक, आजकल तो नए नए तरीके के आने लगे हैं, तो एक FM है, सुबह से स्टार्ट हो जाता है और जब वो सोने जाते हैं, जब वो सोने लगते हैं तब, जब 11 बजे के आसपास जब बंद होता है प्रोग्राम, तभी उनका वो ऑफ होता है। तो हमको रोज पता चलता रहता है कि आज किसकी ड्यूटी है, क्योंकि आवाज ही पहचान में आने लगी है। तो इसलिए लगातार हम सुनते हैं और हमको बहुत खुशी है कि 90 इयर्स पूरे हो रहे हैं, क्योंकि पहले इतना लोकल FM नहीं हुआ करते थे, तो सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ही सुना जाया करता था, और जिसमें महिलाओं के प्रोग्राम आते थे जैसे ममता सखी, तो उनको बचपन से सुना है, तो उनकी आवाजें, उनका बोलने का तरीका भी एकदम जहन में अच्छे से ताजा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ही तरक्की करता है आकाशवाणी, और बहुत सारी
0: तो आपने सुना हमारे नियमित श्रोता माधुरी कश्यप को और उनके विचारों को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर। और अब साथियों, समय जो है वो है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का। ट्यून किया है आपने 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे इन दिनों बढ़ती महंगाई और गर्मी पर केंद्रित है हमारा आज का ये आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम। प्रोग्राम में बात होंगी ढेर सारी आप लोगों से, विषय है गर्मी आपको ज्यादा सताती है या महंगाई है?

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम आकाशवाणी का बरेली केंद्र। और श्रोताओं, आप जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में हम उपस्थित होते हैं हर बार एक ज्वलंत मुद्दे पर, एक प्रासंगिक विषय के साथ, एक समसामयिक विषय के साथ जो कि जरूरी होता है और समय के साथ चल रहा होता है। ऐसे में ही आज जो बड़ा रोचक विषय हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम में, वो विषय है कि आपको ज्यादा महंगाई सता रही है या गर्मी आपको ज्यादा सता रही है। तो इस विषय के साथ हम प्रोग्राम में इस मुद्दे के साथ आज हम बात करेंगे और शुरू करते हैं कॉल्स को लेने का सिलसिला और देखते हैं हमारे साथ कौन से श्रोता है फोन लाइन पर। हेलो
1: हेलो भैया, नमस्ते, मैं शरद सक्सेना बोल रहा हूँ
0: जी।
1: शांति,
0: शरद जी बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं शरद जी?
1: मैं

0: तो शरद जी, आज हमारे कार्यक्रम में मुद्दा है, गर्मी आपको ज्यादा सताती है या महंगाई?
1: तो ये आपका टॉपिक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है जो मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको,
0: जी
1: ना मुझे महंगाई सताती है ना गर्मी सताती है, क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ तो कम से कम 7 लीटर 8 लीटर पानी तो पीता ही हूँ डेली।
0: अच्छा
1: और मुझे हाँ, अब बहुत ठंडा पानी नहीं पीता हूँ क्योंकि इतना ज्यादा नहीं पी पाऊंगा, फिर
0: जी
1: जैसे हैंड पाइप का जो है पानी वो पीता हूँ, और दिन भर और पसीना भी, मुझे थोड़ी गर्मी लगती है तो पसीना बहुत ज्यादा आता है मुझे,
0: ओके
1: शरीर में ठंडा रहता है और मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं सताती, और ना ही मुझे, और घर में ज्यादातर रहता हूँ, खास बात तो ये है शायद धूप में जाऊंगा तब भी नहीं सताएगी, हवा लगेगी काफी अगर बाइक से जाएंगे। और दूसरी चीज आपने महंगाई कही, तो महंगाई मुझे नहीं सताती है, कारण ये है कि जो मुझे खर्चा करना होता है वो मैं कर लेता हूँ पूरा, तो मुझे बिल्कुल महंगाई नहीं सताती। हर तरीके हर चीज का तो मजा लेना चाहिए, अब महंगाई का भी मजा लेना चाहिए, पैसे बचाते हैं।
0: तो शरद जी, बड़ा सुंदर ही एक दोहा है कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खाम, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो आपके पास जो है वो परम धन यानी कि संतोष का धन है, सेटिस्फेक्शन आपके पास है, और ये जो है अपने आप में एक जो पूर्ण रूपेण कला है कि कोई भी परिस्थिति आपको जो है वो प्रभावित नहीं कर पा रही है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो शरद जी, आज आपने हमें फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: वो वाला सुनूंगा, आपके पहलू में आके रो दिए, दास्तान एकदम सुना के रो दिए, ये वाला
0: आपको सुनवाते हैं हम आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो आइए श्रोताओं, देखते हैं कौन से श्रोता है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो,
1: हेलो
0: जी, कौन से श्रोता बात कर रहे हैं हमसे और कहां से आपने हमें फोन किया है?
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: हम बंटू भाई पंजाब की बोल रहे हैं आपके नीमसोता ग्राम पोस्ट ककड़ा कला से।
0: बहुत बहुत स्वागत बंटू जी, कैसे हैं बंटू जी?
1: बस सर बढ़िया, आप सुनाइए गर्मी के मौसम में कैसे हो?
0: गर्मी के मौसम में बहुत अच्छे हैं। और देखिए, ऐसा है हर मौसम में हर चीज होनी चाहिए, जैसे कि गर्मी के मौसम में गर्मी भी पड़नी चाहिए, सर्दी के मौसम में सर्दी भी पड़नी चाहिए और बारिश के मौसम में बारिश भी होनी चाहिए। तो गर्मी का भी अपना एक आनंद है ना, लेकिन यही है कि थोड़ा सा बच के रहें। हीट वेव है, कुछ दिन कहते हैं इन दिनों नौतपा चल रहा है, ठीक है, तो इस नौतपा में अपना जो है बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आज का हमारा कार्यक्रम में विषय भी कुछ ऐसा ही है कि गर्मी आपको ज्यादा सता रही है या महंगाई?
1: सर इस समय तो गर्मी तो बहुत सता रही है और सर महंगाई भी बहुत सता रही है।
0: अच्छा,
1: दोनों चीजें बहुत लगातार सता ही रही है।
0: अच्छा, कुछ बताइए कि गर्मी कैसे सता रही है और महंगाई कैसे सता रही है?
1: जी गर्मी इस हिसाब से सता रही है, जैसे हम काम करने जाते हैं खेत पे, तो मतलब वैसे अगर गर्मी ना हो तो हम मतलब 11 बजे तक रुक जाते थे, ठीक है। अब जब गर्मी होती है तो सुबह उठ के और जल्दी ही खेत में जाना पड़ता है सर, और 9 बजे तक अपना काम निपटाना पड़ता है, 9 बजे तक बहुत धूप हो जाती है, रुकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से हमें गर्मी सता रही है और महंगाई सर इस चीज से सता रही है, मतलब कोई भी चीज लेने जाओ तो वहाँ पर महंगी ही है। अब जैसे हम दुकान चलाते हैं सर, तो यहाँ पर कुछ आइटम जो बिकना चाहिए तो वो आइटम हमें वहाँ पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम वो आइटम उस हिसाब से नहीं दे सकते हैं और महंगाई ही महंगाई है। अब मान लीजिए जैसे अगर हमें भाई करनी है तो इसमें डीजल में पेट्रोल डीजल के पैसे भी बढ़ गए हैं, तो मतलब वो भी झेलनी पड़ रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई का अपना ही जो है, सबका अपना अपना जीवन को जीने का तरीका है और सबके अपने अपने साधन है, उसके ही अनुसार महंगाई उनको प्रभावित कर रही है। वैसे भराई करनी पड़ रही है या फिर पानी लगाना पड़ रहा है, ऐसे में हम सबको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए बंटू भैया कि हम लोग सोलर पंप का यूज करें इसके बजाय कि डीजल पंप का यूज करें। और अब बहुत सारे लोग जो है सोलर पंप पे आ गए हैं, समय रहते हम सभी जो है आ जाएंगे तो हमारी बहुत बचत होगी। इसकी चर्चा हम लोग समय समय पे अपने कार्यक्रम किसान वाणी ग्राम जगत में करते रहते हैं। तो सोलर पंप के बारे में आपको और भी कोई भी जानकारी चाहिए हो, कैसे लगेगा, इससे क्या वित्तीय सहायता मिलती है, आप हमारे जो है कार्यक्रम किसान वाणी के माध्यम से इस सवाल को पूछ सकते हैं, हमारे सभी साथी आपका जवाब देंगे। फिलहाल आज आपने हमें फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: गाने के बोला सच बोलूं तो मिलकर तुमसे इसी बात का गम है, तेरे प्यार के लिए सारी उम्र बहुत ही कम है।
0: आहा,
1: बोलो ना सनम कुछ बोलो ना।
0: बिल्कुल, हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का आपको ये गीत।

0: तो श्रोताओं, ट्यून किया है आपने 100.4 FM, जी सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और विषय है आज का कि गर्मी आपको ज्यादा सता रही है या महंगाई। आइए देखते हैं कौन से श्रोता है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो,
1: हेलो साहब
0: जी, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहां से?
1: मैं राम प्रसाद तरह बोल रहा हूं, कर दी।
0: राम प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं राम प्रसाद जी?
1: बढ़िया, साहब दया कृपा मालिक की साहब।
0: जी जी, बस सब पर मालिक की कृपा बनी रहे। और राम प्रसाद जी, कार्यक्रम में आज का हमारा मुद्दा है कि गर्मी आपको ज्यादा सता रही है या महंगाई।
1: अरे साहब, गर्मी के साथ ये गर्मी तो मौसम चला आ रहा है
0: जी,
1: गर्मी आदमी बर्दाश्त कर लेता है, जितनी महंगाई हो रही है बात तौर पर, इससे आदमी नहीं समझ पा रहा था
0: जी। तो अच्छा, महंगाई ने राम प्रसाद जी को कैसे प्रभावित किया है, आपको कैसे इम्पैक्ट डाल रही है, कुछ एक बात बताइए हमें।
1: अरे महंगाई को ये हिसाब से कभी किसी चीज के दाम बढ़ रहा है, कभी किसी के दाम बढ़ रहा है, हर चीज दाम बढ़ रहा है, दाम बढ़ रही है, महंगाई हो रही है, जितना आदमी कमा नहीं पा रहा उतना महंगाई दबा जा रहा है, ये बड़ा मशक्कत का मामला है साहब।
0: जी जी, मतलब समय के साथ महंगाई बढ़ रही है ना?
1: हाँ, समय साथ महंगाई बढ़ रही साहब।
0: और आमदनी नहीं बढ़ रही है?
1: आमदनी बढ़ रही साहब, आमदनी बढ़ी।
0: अच्छा, तो राम प्रसाद जी पर महंगाई ने ज्यादा असर किया है बनस्पत की गर्मी के।

0: तो राम प्रसाद जी, आपकी बात जान के हमें बहुत अच्छा लगा। आपने हमें कार्यक्रम में फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: पतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले या मौला मेरे राम।
0: जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: बिना सिफारिश मिले नौकरी, बिन रिश्वत हो काम, अरे इसी को अनहोनी कहते हैं, इसी का कल जुग नाम।

0: सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। विषय है गर्मी आपको ज्यादा सता रही है या महंगाई, और इस रिलेवेंट इस प्रासंगिक विषय के साथ आइए देखते हैं हमारे साथ कौन से श्रोता है फोन लाइन पर। हेलो
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, हमारी कौन से श्रोता है फोन लाइन पर?
1: सर मैं एकता क्लब चंदौली तहसील मीरगंज जिला बरेली से इमरान शेख बात कर रहा हूँ।
0: इमरान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: कैसे हैं इमरान जी?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आकाशवाणी बरेली के प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्यार से नवाजने के लिए कि आप इतनी लगन और तन्मयता से हमें सुन रहे हैं। इमरान जी, आज का हमारा मुद्दा है कार्यक्रम में कि गर्मी आपको ज्यादा परेशान कर रही है या महंगाई?
1: सर अभी जो है मौसम बहुत ज्यादा गर्म है, तो अभी गर्मी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। महंगाई तो सर पहले से चली आ रही है, लेकिन अभी मौसम बदल रहा है
0: जी,
1: तो गर्मी ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि जो गाँव के क्षेत्र

0: वहाँ लाइट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, गर्मी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है।
1: अच्छा, तो इमरान जी का क्या फॉर्मूला है गर्मी से बचने का?
0: सर फॉर्मूला यही है कि आप अपने घर पे हैं तो अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, और अगर कोई जरूरी चीज आपको लानी है बाहर से तब आप बाहर निकलिए, और अपनी जो है खुद की स्वयं सेफ्टी जरूर करिए, पानी पीते रहें, और बाहर निकले तो अगर हो सके तो छाते का प्रयोग कर लें, अगर नहीं है तो आपके पास जो अंगोछा है वो डाल लें, तो अपने काम भी करते रहेंगे और गर्मी से थोड़ी राहत भी मिलती रहेगी।
1: बिल्कुल, यानी कि प्रोटेक्शन के साथ अपना ध्यान रखिए, और गर्मी का जो है आलम तो है ही है, जरूरत ना हो तो ना निकले। और आपने अच्छी बात की, अपने अच्छे विचार हमसे साझा किए।
0: सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद, और सर आपका जो प्रोग्राम पेश करने का तरीका है वो काबिले तारीफ है, बहुत अच्छे अंदाज में आप श्रोताओं तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं और हम लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं सर।
1: थैंक यू सो मच इमरान जी, आप हैं तो हम लोग हैं, आप लोगों के प्रेम है, आप सभी श्रोताओं का ढेर सारा प्रेम हमें आज भी मिलता है कॉमेंट्स पर, लेटर्स में, कॉल्स पर, तो आप लोग की ये प्यार और दुलार ही है कि हम लोग नए प्रोग्राम्स बनाते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इन चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए। आज आपने हमें फ़ोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे?
0: सर मैं कुली मूवी का गाना सुनना चाहूंगा, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, क्योंकि सर अभी हज का महीना चल रहा है, तो इस मौके पर सर ये आकाशवाणी बरेली से ये गाना सुनना चाहूंगा।
1: हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, ट्यून किया आपने 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली, लेकिन सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और आइए देखते हैं हमारे आज के मुद्दे के साथ हमारे साथ कौन से श्रोता हैं फोन लाइन पर। हेलो,
1: हेलो आकाशवाणी,
0: हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं, कहाँ से फोन किया है आपने हमें? सीसगढ़ से। हमारे कौन से श्रोता है? गुड्डू जी, कैसे है? टॉप टॉप, बहुत अच्छे हैं हम। क्या करते हैं गुड्डू जी? अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। आज का हमारा मुद्दा है, गर्मी आपको ज्यादा परेशान कर रहा है या महंगाई?
1: सर गर्मी तो देखिए, मौसम तो सर ये बदलता रहता है सर, और मौसम गर्मी का नहीं है, गर्मी नहीं लगेगी सर, कम लगेगी तो सर लगेगी, ये तो एक स्वाभाविक
0: है। जी जी,
1: इससे बचाव के तरीके सर अपना होना चाहिए सर।
0: जी जी,
1: वाहन करते सर पूरे वाहन कपड़े पहना है सर, पे तौलिया डाले करना है
0: जी,
1: नींबू पानी पिए सर
0: जी,
1: इन चीजों से बचा रखे तो सर बचे रहेंगे और स्वस्थ रहे
0: जी।
1: महंगाई की तो सर तो ये ऐसा वक्त के साथ तो सर चलता ही रहता है, और बाहर से हमारी चीजें कुछ आती है सर, वहाँ पर भी परेशानी है।
0: तो आपने अच्छी बात हमसे आज आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: सर फिल्म का नाम पहचान, गाने के बोल है पैसे भी पहचाने इंसान की कीमत।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आइए देखते हैं आज के हमारे इस मुद्दे पर हमारे साथ कौन से श्रोता जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो
1: हेलो,
0: हमारी कौन सी श्रोता बात कर रही हैं और कहां से?
1: धौरा
0: से। कौन बोल रही हैं धौरा से? सिम्मी। सिम्मी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सिम्मी जी, आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एक विषय पर, जो विषय है गर्मी आपको ज्यादा परेशान कर रही है या महंगाई?
1: फिलहाल इतने टाइम पर तो गर्मी बहुत परेशान कर रही है।
0: अच्छा, गर्मी आपको ज्यादा परेशान कर रही है?
1: जी।
0: तो गर्मी आपको कैसे परेशान कर रही है?
1: मतलब धूप बहुत तेजी की है और टाइम पर बारिश भी बिल्कुल नहीं हो रही है।
0: तो इस गर्मी से आप कैसे बचती हैं?
1: हम ठंडा पीते हैं, अंदर रहते हैं।
0: अच्छा।
1: तो बाहर नहीं निकलते हैं।
0: वेरी गुड, वेरी गुड।
1: निकलते हैं।
0: तो सिम्मी जी, आज आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: इंसान चित्र का गीत है।

0: सद्दाम जी आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। सद्दाम जी, कार्यक्रम में आज का मुद्दा है कि आपको गर्मी ज्यादा परेशान कर रही है या महंगाई?
1: सर, गर्मी का तो मौसम ही चलता है, इससे परेशान क्या सर, इससे तो बचाव करना चाहिए, लेकिन जो महंगाई है ये बहुत बड़ी समस्या है।
0: तो महंगाई कैसे परेशान कर रही है आपको?
1: सर, इससे जो है सबसे पहला मुद्दा तो ये गैस है, जो बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है, ये बहुत महंगाई की ओर जा रही है।
0: जी जी जी।
1: पहले जो है महीने में हम दो सिलेंडर उठाते थे, अब एक ही उठाते हैं, पर महंगाई की वजह से।
0: तो आप गैस आपको महंगी लग रही है और आज तरीके से आप महंगाई का मुद्दा कर रहे हैं। तो सद्दाम जी, आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: सर, फिल्म का नाम है दिलवाले और गीत के बोल है, जो तुम्हें चाहे उसको हटाना अच्छी बात नहीं।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 FM, सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। प्रोग्राम में आज के हमारे विषय के साथ आप कुछ लोगों के चुनिंदा कमेंट्स भी आए हैं, हम आपको सुनवा रहे हैं। आप हैं मुकेश राजपूत दिल्ली से, और ये कहते हैं कि अगर इसी तरह गर्मी पड़ती रही तो समझ लो आदमी का मरना तय है। और आपने कहा है कि बेचारे पशु पक्षी भी परेशान हैं, गर्मी तो ज़्यादा है। मैं भगवान से विनती कर रहा हूँ कि एक बार बारिश करवा दे तगड़ी वाली। और कहते भी हैं कि 28-29 तारीख दिखा रहा है, तो क्या इस बारे में राय है? ऐसी बात आपने कही है। आप हैं मुकेश राजपूत जी। कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख खान, हाशिम, किश्बा नूर और अरम बाबू का मैसेज है कि आज के समय में भीषण गर्मी और साथ ही बढ़ती महंगाई ने आम जीवन का जीना मुहाल कर दिया है। ये एक ऐसा दौर है जहां एक तरफ मौसम का पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है, दूसरी तरफ रोज़मर्रा की चीज़ें भी आसमान छू रही हैं। घर के ज़रूरी सामान महंगे हैं, जैसे चावल, दालें, गैस, पेट्रोल, डीजल आदि खान पीने की जो चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं। प्रवीण चौहान भी कहते हैं महंगाई ज़्यादा क्योंकि गर्मी का तो समाधान हो जाता है, लेकिन महंगाई रोकना हमारे बस में नहीं होती है। शादुल शहर से, राजस्थान से रामकुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़ भी इस विषय पर हमसे बात करते हुए कहते हैं कि गर्मी तो सिर्फ 4 महीने की हिसाब गुजर जाएगी, लेकिन महंगाई प्रतिदिन बढ़ती है। गर्मी के दिन हम निकाल लेंगे दही, छाछ, रबड़ी, नींबू, सिकंजी पीकर, पंखे, कूलर, एसी की ठंडी हवा खाकर, लेकिन महंगाई के साथ तो जीवन भर ही चलना पड़ेगा क्योंकि जनसंख्या विस्फोट। एक अच्छी बात आपने कही कि कारण भी बताए, जनसंख्या विस्फोट, बीमारियां अपने लिए हर प्रकार की दुविधा चाह रही हैं, और इस प्रकार से ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अनोखेलाल मौर्य जी कहते हैं कि बहुत ही अच्छा विषय है, और महंगाई गर्मी हमें गर्मी तो लगती है जब हम चलते हैं तो प्रभु की जो हवा चलती है हमें गर्मी नहीं लगती, फिर महंगाई का समय है, परिवर्तन है इसमें, उसे जो है महंगाई भी आगे पीछे होगी। आपके कमेंट में थोड़ी सी भ्रांति है। प्रदीप कुमार जी कहते हैं कि विषय बहुत अच्छा है, महंगाई और गर्मी, हमें गर्मी लगती है तो हम, जो आपने भी कमेंट कर दिया है सेम कमेंट को। तिलक राज अरोड़ा जी हैं खुर्जा से और अंकुश अरोड़ा हैं साथ में, कहते हैं गर्मी में तो गर्मी पड़ेगी ही, सर्दी थोड़ी ना पड़ेगी, ये तो कुदरत का नियम है, इसलिए गर्मी से क्या घबराना। हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और काम धीमी गति से चल रहे हैं, इसलिए महंगाई भी है। गंगा सिंह रावत जी भी कहते हैं मुझे तो दोनों ही ज़्यादा सताते हैं, क्योंकि गर्मी का एक वक्त होता है जब वो परेशान करते हैं, लेकिन

महंगाई वक्त बेवक्त भी परेशान करती है। अच्छी बात कही आपने, आप हैं रामपुर रोड हल्द्वानी नैनीताल से, राम गंगा सिंह रावत जी। लाल मोहम्मद अंसारी जी भी हैं पुराना करेली से, और साथ में हैं लालू अंसारी। आप कहते हैं कि प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। गर्मी ज़्यादा परेशान करती है महंगाई, तो हमें जो है महंगाई सबसे ज़्यादा परेशान करती है। गर्मी से बचाव के उपाय हैं, लेकिन महंगाई से बचने का फिलहाल तो कोई उपाय नहीं सूझता। फिलहाल किसी चीज़ की खरीदारी करें तो बजट ही कम पड़ जाता है। बात तो सही है। देखिए, महंगाई और गर्मी विषय पर आपके ढेर सारे हमने कॉमेंट शामिल किए। आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये मधुर गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: तो श्रोताओं, इन विज्ञापनों से पहले आप सुन रहे थे प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और अब समय हो गया है कि आपको जानकारी दें हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

श्रोताओं ट्यू आप सुनेंगे कार्यक्रम भजन संध्या का अब से कुछ देर बाद शाम को 5:05 से। महिलाओं का पसंदीदा प्रोग्राम नारी संसार लेकर हाजिर होंगे अनुप्रीता सिंह शाम को 5:30 से, जिसमें होगी चर्चा, वार्ता, किचन टिप्स और इनसे मिलिए सेगमेंट। प्रोग्राम में वार्ता का विषय रहेगा बालिका शिक्षा का महत्व और वार्ताकार है नीतू गंगवार।

चाहे साफ सफाई। और आप प्रोग्राम युवाणी सुनेंगे शाम को 6 बजे, जिसमें होगा आज का सवाल कुछ खास है आज प्यार के दिन, और सेगमेंट होगा चक्रव्यू। शाम को 6:30 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम ग्राम जगत राकेश शर्मा और भैया किशन पाल के साथ, जिसमें होगी चर्चा बागों की देखभाल विषय पर। साथ ही कृषक गोष्ठी होगी जिसमें प्रतिभागी हैं श्रीमती सुनीता नेमवती और आपकी सभी साथी। कार्यक्रम में सुनेंगे आप लोकगीत भी। शाम को 7:31 पर लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन, जिसमें विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर प्रेम मोहन झा। विषय है गुर्दे की डायलिसिस कब और क्यों। और श्रोताओं रात्रि के 8 बजे से रिले करेंगे आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से ही। तो श्रोताओं ये तो था विवरण हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का, अब विवरण हमारी कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का। सुनना न भूलिएगा 8:15 पर प्रोग्राम नमस्ते बरेली। कार्यक्रम लोक गीतों का लेकर हाजिर होंगे 8:45 पर। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से 9:00 से। कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य सुन सकेंगे आप 9:30 पर। आकाशवाणी के दीवाने जो कि एक सीरीज है, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर, इसमें कल आप सुनेंगे विनेश कुमार के विचार आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 10:00। श्रोताओं 10:05 पर लेकर हाजिर होंगे प्रोग्राम आपकी पसंद। कार्यक्रम सबरंग का समय रहेगा 11:00। सुनना न भूलिएगा प्रोग्राम झुमका गिरा रे नीतू त्रिपाठी के साथ 11:15 पर। FM रेनबो लखनऊ के प्रोग्राम रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 12:00 से। और अनुरोध गीत का समय रहेगा 1:00। कार्यक्रम रसरंग लेकर हाजिर होंगे 2:00। आकाशवाणी के दीवाने में आप सुनेंगे महेश कश्यप को 4:00। कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ सुन सकेंगे आप 4:05 से। 5:05 पर समय रहेगा भजन संध्या का। महिलाएं सुनेंगी अपना पसंदीदा प्रोग्राम नारी संसार 5:30 पर, जिसमें होगी चर्चा पेरेंटिंग टिप्स इनसे मिलिए, और होगा सेगमेंट वार्ता का, जिसमें आप सुनेंगे श्रीमती शिखा दीवान से वार्ता, कई जिम्मेदारियां एक साथ संभालती आज की नारी। युवा साथी सुनेंगे प्रोग्राम युवाणी अपने नियमित समय 6:00, जिसमें होगा आज का सवाल कुछ खास है आज ओए लक्की, और होगी प्रोग्राम में एक वार्ता। 6:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम किसान वाणी का, जिसमें होगी आज की बात के अंतर्गत चर्चा कृषि यंत्रों का रखरखाव। भेंट वार्ता होगी प्रोग्राम में, जिसका विषय है मोटे अनाज की खेती, कृषक अनुभव और आपके सभी किसान साथियों के सफल कृषक अनुभव, और जिनसे बातचीत एक राम सिंह की से कर रहे हैं रविंद्र कुमार। महिला कृषक का अनुभव भी होगा प्रोग्राम में। होगा कृषि समाचार, आज का मौसम, आज की नसीहत, आज का सवाल और लोकगीत। ग्राम जगत कार्यक्रम में होगी चर्चा चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर, होगा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम और लोकगीत। 7:00 से सुनना न भूलिएगा इस कार्यक्रम को। और कार्यक्रम होगा अनुरोध गीत 7:31 पर। रात्रि के 8 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। तो श्रोताओं ये तो था विवरण हमारी कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का। ट्यून किया है अपने 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और आइए अब सुनते हैं भजन संध्या।

आप सुन रहे हैं भजन संध्या आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, लेकर आ रहे हैं आपके लिए स्वाति मिश्रा के मधुर स्वर में ये देवी गीत।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हो रहे हैं। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं नारी संसार अनुप्रीता सिंह के साथ।

नमस्कार सखियों, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम नारी संसार में। आपकी अपनी रेडियो सखी रेडियो हम सफर अनुप्रीता सिंह के साथ। सखियों, गर्मी का समय चल रहा है और ऐसी वैसी गर्मी नहीं, बहुत ज़्यादा तेज गर्मी। ऐसे में सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इस मौसम में कभी तो गर्मी हो रही है और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आ जाती है आंधी, और आंधी अपने साथ लेकर आती है बारिश को, और आंधी बारिश मिलकर हमारे घर को जो गंदा करती हैं, भाई सभी जानते हैं क्या हाल होता है। और ऐसे में फिर हमारी सखियों को करनी पड़ती है मेहनत, पूरा घर गंदा जो हो जाता है उसको साफ सफाई करनी पड़ती है। ऐसे में आपका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहनों, आपको काम तो करना है लेकिन अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इतनी गर्मी में आप अकेले सब करती रहेंगी तो हो सकता है कि आप भी गर्मी की शिकार हो जाएं। आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो साफ सफाई तो करिए लेकिन साथ में करिए अपने लिए भी कुछ, और रखिए अपना ध्यान।

0: सखियो, आज का हमारा सवाल है, आप कैसे पहचानेंगी लू के लक्षण? और आइए अब चलते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अगला सेगमेंट हमारा है इनसे मिलिए, जिसमें आज हम लेकर आए हैं कथक टीचर को, जिनका नाम है रुचि शर्मा। हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम रुचि शर्मा है, मैं कथक टीचर हूँ।
0: कथक टीचर है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं बताऊं रुचि जी, तो मुझे कथक बहुत पसंद है, और जब एक कथक टीचर मेरे सामने है, मुझसे बात कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रुचि जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप मतलब कथक सीखे हुए आपको कितना टाइम हो गया है?
1: मैंने कथक सीखना बचपन से स्टार्ट किया था और आज मुझे हो गया कम से कम 27-28 साल हो गए मुझे
0: कथक करते हुए।
1: जी जी जी
0: अच्छा, तो आपने कथक में क्या किया है?
1: मैंने इसमें कथक में प्रभाकर किया हुआ है।
0: प्रभाकर ये कितने समय का होता है, कितने साल का?
1: ये मैं 6 साल का होता है और इसको हम बचपन से करें तो बहुत ही अच्छा रहता है, तो बच्चा अपने तरीके से अच्छे तरीके से सीख पाता है उस चीज को।
0: तो आप कितनी बड़ी थी जब आपने इसको शुरू किया?
1: मैं जब पहले तो ट्रेनिंग हुई थी हमारी और फिर मुझे इसमें कथक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया। मैं उस समय थी 6 साल की थी, तब से मैंने स्टार्ट किया।
0: मतलब आप 6 साल की थी तब से आपने कथक स्टार्ट किया और आज तक आप कर रही हैं, अब आप कथक टीचर हैं।
1: जी,
0: मतलब बहुत खुशी की बात है। और कथक हमारे यहाँ का मतलब देखा जाए तो जो मेन डांस है वो कथक ही है।
1: जी जी,
0: नृत्य। अच्छा, तो अब आप जब कथक सिखाती हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो इसकी शुरुआत कहाँ से करती हैं?
1: इसकी शुरुआत हम कथक में पहले वंदना से, कोई भी हम चीज करते हैं ना, तो हम वंदना करते हैं, पहले गुरु की आराधना करते हैं, फिर उसके बाद नमस्कार करते हैं
0: जी,
1: फिर उसके बाद हमारा तत्काल स्टार्ट होता है।
0: तो और रुचि जी, ये आपने हमें एक शेड्यूल बताया कि सबसे पहले वंदना करती हैं और नमस्कार करती हैं, तो इसमें से कोई एक चीज आप थोड़ा सा गुनगुना के या बताएंगी कि कैसे करती हैं?
1: जी जी
0: जी,
1: जैसे वंदना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं।

0: बहुत अच्छे सच में रुचि जी, आपकी वंदना सुनकर ही मतलब पाँव खुद ब खुद थिरकने की तैयारी में है। ऐसा लग रहा है बस अभी आपसे सीखूं और करना शुरू कर दूं सच में। और साथ ही एक कॉम्प्लीमेंट भी है कि आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, आपने वंदना भी बहुत अच्छी गाई है। शुरुआत में ही जब आप बच्चों को वंदना कराती होंगी तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्दी सीख जाते होंगे।
1: हाँ जी, वो बच्चे बस इंटरेस्ट होने से बच्चे को और रहते मतलब लगन से, बच्चे भी लगन से सीखते हैं। तो मेरे पास आने के बाद तो बच्चे कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं दिया। बच्चे जब अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं ना तो
0: जी
1: वो सीखते बहुत अच्छा सीखते हैं।
0: अच्छा, जब बात होती है कथक डांस की, तो जो जैसे अभी आपने कहा कि सबसे पहले वंदना होती है, फिर नमस्कार होता है, फिर तत्कार से शुरुआत होती है ना?
1: जी
0: तो तत्कार सुनता हर कोई है, जानता हर कोई है कि कथक में तत्कार का मेन रोल होता है, लेकिन ये तत्कार होती क्या है?
1: के पहले पहला जो हमारा बेसिक, जिसे हमारा छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ए से,
0: जी
1: तो ऐसे हमारे तत्काल में सबसे पहला फुटवर्क, अगर फुटवर्क ही नहीं अच्छा होगा तो बच्चा तत्काल के सिवा कोई बोल ही नहीं निकाल पाएगा। इसलिए उसको पहला, सबसे पहला तत्काल सिखाया जाता है, जिससे वो और फुटवर्क की तरफ, हम जैसे आमद है टुकड़े हैं,
0: जी
1: फिर उसी के बेस पे आगे बढ़ता है बच्चा। तो जैसे ता थे तक हम इसे पैर चलाना सिखाते हैं कि घुंघरू की कहाँ पीठ आएगी और कहाँ नहीं आएगी,
0: अच्छा, तो
1: उसको
0: ये जो
1: मूल
0: अभी आपने
1: सिखाते हैं।
0: बताया है,

0: ता थे थे तत, ये तत्कार है
1: जी, ता थे थे तत
0: हाँ, बहुत सुनने में अच्छा लग रहा है। रुचि जी एक बार मुझे थोड़ा सा बताइए, तत्कार कैसे होती है, मतलब कैसे बोली जाती है?
1: इस तरह से हम ठेका है तो ठेका हम इस तरह से बोलेंगे ता थे थे त त आ थे थे त, फिर इसको हम दुगुन तिगुन और चौगुन में हम फिर इसको अटगुन में करते हैं।
0: हाँ, मतलब धीरे धीरे यही स्पीड हाँ, बढ़ती जाती है और जो पैर चलते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं फटाफट फटाफट
1: जी, जी,
0: बिल्कुल उनकी भी स्पीड बढ़ जाती है जी, लेकिन जी, सच में बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर ही, तो खुद ब खुद मुझे लगता है कि पैर चलना शुरू कर देते होंगे
1: जी, और उसमें जो घुंघरू की झनकार

0: Hei, Tan. फिनिश कॉम दुगुन तिगुन और चौगुन में हम फिर अस्को अटकुन में करते हैं।
1: हाँ, मतलब धीरे धीरे यही स्पीड हाँ, बढ़ती जाती है और जो पैर चलते हैं वो उन वो भी बढ़ते जाते हैं फटाफट फटाफट।
0: जी जी
1: बिल्कुल, उनकी भी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन सच में बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर ही, तो खुद ब खुद मुझे लगता है कि पैर चलना शुरू कर देते होंगे।
0: जी जी जी, और उसमें जो घुंघरू की झनकार होती है फिर तो मजा ही आता है।
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और ऐसे ही आप स्टूडेंट्स पूरा कथक बहुत अच्छे से सिखाती रहिए। All the best.
0: जी जी, धन्यवाद।

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक, सरक, सरक, सरक, सरक, सरक, सरक, सरक

दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क धड़क।

सखियो, अभी आपने सुनी हमारी ये इनसे मिलिए का जो सेगमेंट था, उसमें रुचि शर्मा जी को, जो एक कथक टीचर हैं। सखियो, मैंने आपसे एक सवाल किया था कि आप कैसे पहचानेंगी लू के लक्षण। सवाल दोबारा मैंने आपको बोल दिया है, अब आप सोचिए कि आप कैसे पहचानेंगी कि ये लू के लक्षण हैं। आपको इसका जवाब थोड़ी ही देर में दूंगी मैं, तब तक मैं बात कर लेती हूँ आपसे किचन के विषय में। कुछ ऐसी बातें जो हम सब जानते हैं, लेकिन इस समय थोड़ा सा शायद अवॉइड कर देते हूँ। आप तो जानती हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ऐसे में आपको अपने किचन का विशेष ध्यान रखना है। किचन की साफ़ सफाई नियमित रूप से कीजिए। वैसे तो हम अपना किचन साफ ही रखते हैं, लेकिन सखियों मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस समय जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो जल्दी पनपते हैं। गर्मी बहुत है ना, ऐसे ही खाना हमेशा जब बनाइए बस तभी खा लीजिए, यानी कि ताजी ताजी खाना खाइए। रखे हुए खाने को खाने से बचिए। बचिए क्या, मैं तो कहूँगी कि खाइए ही नहीं उसको। गर्मी के मौसम में हमेशा सादा सिंपल खाना खाइए। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला या ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने से बचिए, क्योंकि ये कभी कभी पेट में इन्फेक्शन भी कर देता है। होता क्या है कि गर्मी का जो मौसम होता है, इसमें डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो खाना पचने में समय लगता है, और जितना समय लगता है, हो सकता है कि उस बीच ही वो खाना हमारे पेट में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन पैदा कर दे, और वो जब गरिष्ठ होगा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा, ऑयली होगा, तो हमें और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए खाना बहुत साफ़ सुथरा और एकदम साधारण सिंपल खाइए। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि गर्मी चरम सीमा पर है।

हेलो, मैंने आपसे पूछा था कि आप कैसे पहचानेंगी लू के लक्षण। तो बहुत सीधा सा है। सबसे पहले तो अगर किसी को लू लगी है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। किसी किसी को चक्कर आते हैं और बेहोश भी हो जाता है, कभी कभी उल्टी दस्त हो जाते हैं। इस तरह से अगर इस समय किसी के साथ ऐसा होता है तो उसको साधारण मत लीजिए, समझिए कि उसको लू लग गई है, और तुरंत ही उसका उपचार शुरू कीजिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम नारी संसार। ट्यून किया है आपने 100.4 FM, स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं शाम के ठीक 6। और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम युववाणी।

श्रोताओं स्वागत है, नमस्कार आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा शो युवाणी में। प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, आपका अपना रेडियो होस्ट ब्रजेश। तो श्रोताओं, जैसा कि कार्यक्रम की परंपरा चल रही है इस समय, कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में ही पूछ लें आपसे एक प्रश्न और आप उसका खोज कर रखें इतर उत्तर, और उस उत्तर का मिलान कीजिएगा आप कार्यक्रम के अंत में हमारे उत्तरों से। तो फिलहाल आज का जो प्रश्न है वो है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। मैं आपको एक बार पुनः से प्रश्न के लिए दोहरा देता हूँ। प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। अब श्रोताओं, चूंकि बात चल रही है प्रोग्राम युवाणी की, तो प्रोग्राम युवाणी में हम उस दिन जो खास बात होती है उस पर तो बात करते ही हैं, साथ ही साथ हम बात करते हैं कि उन दिनों समसामायिक विषयों पर भी। तो फिलहाल आज श्रोताओं हम बात करें तो आज के दिन यानी कि 27 मई को ही होती है पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि। 27 मई 1964 को ही उनका आज ही के दिन निधन हुआ था, तब से आज के दिन को ही इस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन लगभग सभी राजनेता, उनके मानने वाले लोग उनके समाधि स्थल शांतिवन पर विशेष प्रार्थना और उनको श्रद्धांजलि प्रेषित करते हैं।

अश्वत्थामा बात करें हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी की, तो उनका औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करते हैं। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उनका काफ़ी योगदान रहा है। लोग कहते भी हैं कि उन्होंने ही जो है कंप्यूटर का प्रचलन भारत में काफ़ी विकसित किया था। सुन रहे हैं आप प्रोग्राम युवाणी।

जो हमने आपसे प्रश्न पूछा है कि प्रोग्राम की शुरुआत में, आपको फिर से याद दिला देते हैं, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। और श्रोताओं, हमने बात किया कि प्रोग्राम में हम जो है वो शामिल करते हैं समसामयिक विषयों को, और उन दिनों क्या खास है, क्या बातें हैं उस दिन के उपलक्ष में, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करते हैं। इसी कड़ी में अब हम आपको बताते चलें कि ईद उल अजहा जो है, जिसको सामान्य तौर पर प्रचलित भाषा में बकरीद भी कहते हैं, इस दिन हम मनाते हैं। ये जो है मुस्लिम समुदाय का एक प्रमुख पवित्र त्यौहार है, और कहा जाता है सत्य और निष्ठा के प्रति प्रदर्शन का ये त्यौहार है, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि जब इस दिन बलिदान, प्रेम, निष्ठा, विश्वास, इन चीज़ों का बहुत महत्व है। बलिदान का मतलब ये कि सिर्फ जिस पर विश्वास है उसके कह देने भर से अपने सबसे प्यारी चीज़ को भी त्यागने का साहस प्रदर्शित करता है ये त्यौहार। तो ईद उल अजहा हम मनाएंगे कल को, और इस त्यौहार की आप सभी को ढेर सारी दिली मुबारकबाद।

श्रोताओं, सुन रहे हैं आप प्रोग्राम युवाणी, और प्रोग्राम से पहले हमने बात की ईद उल अजहा के बारे में। अब श्रोताओं, बात करें हम इन दिनों की हीट वेव का जो है वो असर है इस समय, खास तौर से अगर हम बात करें अपने क्षेत्र में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या देश के प्रमुख उत्तरी हिस्से में हीट वेव की जो है समय समय पे चेतावनियां जारी की जा रही हैं। टेम्परेचर बहुत अधिक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पानी जो है वो खूब ज़्यादा पीजिए, और अगर जरूर

नहीं है तो दोपहर में 12 बजे से लेकर लगभग शाम को 3 से 4 बजे तक आप जो है बाहर निकलने से बचें, और पानी खूब पिए, फलों का सेवन करें और खीरा ककड़ी इन सारी चीज़ों का सेवन करें, ये विशेषज्ञ बोल रहे हैं और डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं। तो अपना ढेर सारा जो है ख्याल रखिए। आगे हम बात करेंगे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में चक्रव्यूह के बारे में। आइए एंजॉय करते हैं इस ब्यूटीफुल ट्रैक को।

तो ट्यून किया है आपने 100.4 एफएम, सुन रहे हैं प्रोग्राम यू वाणी। और श्रोताओं, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आज का हमारा प्रश्न है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो उसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। और मिला लीजिए इस उत्तर को, उम्मीद है आप सब लोगों के उत्तर सही होंगे। और आज है बुधवार, सेगमेंट होता है प्यार की धुन, और सुनते हैं प्यार की धुन में ये मधुर गीत।

सौदा तारानों का है, सौदा आसमानों का है और सौदा जहानों का है। जी हाँ, ये सौदा हमेशा खरा है। और प्रोग्राम युवाणी से आज का सफर यहीं तक। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर मेल कीजिएगा, हमारा एड्रेस आपको पता ही होगा, कार्यक्रम आपका पत्र मिला डॉट आप कार्यक्रम आपका पत्र मिला ईमेल आईडी है आपका पत्र मिला डॉट बरेली एट द रेट जी मेल डॉट कॉम। और अब जो है प्रोग्राम में बिल्कुल भी समय नहीं है, स्टूडियो में दाखिल हो गए हैं भैया कृष्णपाल और भैया राकेश शर्मा। जी हाँ, पहचान रहा हूँ मैं आपको। तो जी हाँ, और अपने साथ देखिए ढेर सारी चीज़ें, डिब्बी मोबाइल और खूब सारी चीज़ें लेके आए हैं। और प्रोग्राम सुनेंगे आप कार्यक्रम ग्राम जगत भैया किशनपाल और राकेश भैया के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत सुनने वाले सब भैया बहनों को आपके भैया कृष्णा
1: और आपके भैया राकेश शर्मा की
0: राम राम।
1: कृष्णा भैया, क्या हाल चाल हैं आपके? हम देख रहे हैं कि बहुत अंगोछा वगैरह लपेट के आए हो, क्या कारण है?
0: अरे भैया, हाल चाल तो बढ़िया है, और जहाँ तक अंगोछा की बात है तो देख रहे हो भैया, गर्मी खूब जोर शोर पर है, नौतपा चल रहे हैं, है ना। और हम तो ये देख रहे हैं कि आपके साथ में डिबिया है, और अभी ब्रजेश तो भैया कह रहे हैं कि भैया डिबिया उबिया सब संग लेके आयो, जामा काका थैला में है, जा तो बताओ
1: भैया। जो डिबिया में है, सिर में दर्द होने लगाए तो बाम लगाने के लिए जामा बाम है, क्योंकि गर्मी में घर को काम है ऐसा है भैया, धूपों में निकलने पर ही आते हैं, और जब धूप में निकलने पर ही आते हैं कोई बार सिर में दर्द होने लगता है, तो ऐसे में जब डिबिया जो को हम जब लगा लेते हैं तो वहाँ में आराम मिल जाता है।
0: मतलब जो है कि पूरा सामान अपनों संग लेके चलते हो।
1: देखो भैया, लोग कहते हैं कि अगर बकरिया मारने के लिए जाओ, शेर को इंतजाम करके जाओ।
0: हाँ जाओ,
1: तो कहीं
0: सही
1: बाहर जाओ तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जानू चाहिए। और बात आपने करी नौतपा की, तो देखो 25 तारीख से लेकर 2 तारीख तक ये 9 दिन बताते हैं कि बड़े गर्म रहते हैं, और जब दिन गर्म है तो आदमी गर्म रहे, हर इंसान गर्म रहे,
0: बिल्कुल जवाब तो सही है।
1: ऐसे में जरूरत है ठंडे तरल पदार्थ को व्यक्ति सेवन करे, और

0: गर्म स्थान पे ना जाए, और अगर कोई जरूरी काम से जाने ही पड़े आपके लिए तो उसकी जो पूर्व तैयारी है सावधानी पूर्वक, जैसे आप अंगोछा लपेट के आए हो, अंगोछा लपेट के जाओ, पानी की बोतल वगैरह अपने संग में रखो, जिससे कि जो गर्मी का प्रभाव है वासे आप बचे रहें।
1: जब बात तो भैया कतई सही कह रहे हो। देखो खीरा है, नींबू है, इनको सेवन अधिक से अधिक करो। जो हरी सब्जियां हैं गाँव में तो अपने खूब मिल ही जाती हैं, है ना। ताज़ी सब्जियां खाओ, फल खूब आ रहे हैं भैया, खरबूजा है, तरबूज है, और अपने गन्ना का जूस पियो।
0: बिल्कुल भैया, देखो कृष्णा भैया, हमारे जो ग्रामीण भैया हैं, आपने कही कि देखो खीरा वगैरह है इसकी खेती करते हैं, सब्जी वाली चीज़ें हैं उनकी खेती करी जाती हैं। इसके साथ ही साथ हमारे बहुत से भैया ऐसे हैं जो कि बागवानी करते हैं, और बागन में आमों के पेड़ मिलते हैं, नींबूओं के पेड़ मिलते हैं। तो इस समय आज हमारी चर्चा को विषय है बागों की उचित देखभाल किस प्रकार से करी जाए, कौन कौन सी सावधानियाँ रखी जाएँ, जहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप क्या कहना चाहोगे?
1: देखो भैया, बागों की बात आपने कही है, तो बाग चाहे आम के हों, नींबू के हों, या फिर अमरूद के हों, अब तो अपने इतना चीकू लगा लग रहे हैं भैया, लेकिन बाग बाग होते हैं जिनसे हमको फल मिलते हैं और हवा तो भैया मिलती है ना। तो जो बागों की देखभाल की बात कही है, तो देखो अब तो बस एक ही बात को ध्यान रखने हैं, क्योंकि गर्मी भैया खूब पड़ रही है, यानी आप ही कह रहे हैं कि भैया नौतपा चल रहा है, और ऐसे में देखी हुई कि भैया जो पेड़ हैं, पौधा हैं, सब मुरझा से जाते हैं, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में पहली बात तो ये है कि भैया पर्याप्त नमी जो है हम अपने पेड़ों में बनाए रखा है, जाके संग संग भैया देख लें कोई कीट पतंगा लग रहा हुआ है तो उसको भी ध्यान रखें। और नमी बनाने की बात है तो भैया एक काम और कर दें, मल्चिंग जिसे कहते हैं ना, जैसे हमने पानी भरो बाकी बाद में जो घास फूस होता है बाद से अपने ढक दें, तो बात नमी बनी रही भैया।
0: बिल्कुल भैया, उसके साथ ही साथ है कहा कि हमें अपने पेड़ पर ध्यान देनी है कि ऐसा तो ना है कि हमारे जो पेड़ लगे हुए हैं उनमें किसी प्रकार को कोई रोग, कोई फंगस लग रहा है, पत्ता हमारे ख़राब हो रहे हैं, किसी प्रकार को कीड़ा सुड़ी वगैरह लग रही है। अगर इस प्रकार की भी कहीं पर कोई अगर समस्या हमारे भैया के लिए दिख रही है तो वह आपको तुरंत निराकरण करें।
1: बिल्कुल, और वैसे तो आपने जो आम की बात कही तो भैया आप जानते हो, अब ये तो कीट पतंगा की बात कर दी आपने, अब भैया अमियाँ लगी हुई हैं पेड़े पे, और तोता टाँ टाँ कर रहा हो, और भैया खुतर रहा हो, फिर क्या करोगे।
0: देखो भैया, जब बात तो आप सही कह रहे हो। देखो हमारे गांव में तो क्या करते हैं, वह घोपनी बना के ले जाते हैं।
1: हाँ, जो रस्सी की बनती है सन की,
0: हाँ
1: अब वह बटी जाती, बागे बाद वहाँ में डेला रखो और घुमाई और मार दई।
0: बस, अब बागे संग संग अब तो भैया देखो समय बदल गया हुआ है, हमारे किसान भैया अपडेट हो गए हैं। वह चाबी आती है धरा को बोलते हैं
1: हाँ
0: वहां में रखो आइटम और लगाओ, जब पथरा पर तब धाए सब बंदे होते सब भज जाते हैं।
1: हाँ हाँ तो भैया ये तो सही है, क्योंकि जब जो फलत है हमारी तभी बात हम अच्छी ले पावेंगे। ऐसी भैया नींबू हैं उनकी भी देखभाल करते हैं, जाके संग संग जो भैया आड़ू हैं उनकी भी देखभाल करें, जो और जो बागान जो हमने लगाए हैं, क्योंकि जब हम देखभाल उचित ढंग से करेंगे, उनको पर्याप्त नमी बनाए रखेंगे, उनको पानी देंगे, तो भैया उनसे तभी हम अच्छी तरीके से पैदावार लेने में
0: बिल्कुल
1: सफल हो
0: भैया, देखो
1: सकते हैं।
0: हमारे जो आम के पेड़ वगैरह हैं उनके थावरे वगैरह बनाए दें, खुदाई उदाई कर दें ठीक से, और गोबर की खाद वगैरह है तो बाखूबी इस्तेमाल करें। कुल मिला के अगर हमारे किसान भैया जिस प्रकार से अपने खान पान को ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से जो बाग में पेड़ वगैरह लगाए रखे हैं उनकी देखभाल करेंगे तो उनसे हमारे मुनाफा ठीक ठाक मिलेगा।
1: बिल्कुल ठीक ठाक मिला है, और ध्यान रखने की बात कही है राकेश भैया, तो देखो सामने देख रहे हैं जो
0: हाँ
1: हमारे आज के मेहमान हैं सुनीता देवी और नेमवती, और इनके संग में देखो जो चली आ रही है पूनम बहन मुस्कात वे।
0: बिल्कुल भैया, इनके का बातचीत करेंगी, शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में, सुनवाते हैं अपने भैया के लिए।
1: हाँ बिल्कुल भैया, जो जो कृषि गोष्ठी है, महिलाओं को कृषि में योगदान और घरेलू कार्य, तो आओ भैया सुनते हैं जे कृषि गोष्ठी।
2: भैया बहनों, समय समय पर हम कार्यक्रम में बहुत सी ऐसी जानकारी लेके आते हैं जो आप सबके बहुत काम आती हैं, और इस संबंध में बहुत से भैया भी आते हैं और बहुत सी बहनें भी आती हैं। आज हम बात करेंगे अपनी दो बहनों से जो आज कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और उनसे कुछ कृषि गोष्ठी कर लेते हैं। बहनों, आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: कार्यक्रम सुनने वाली सभी भैया और बहनों को नेमती मौर्या का राम राम।
2: अच्छा, तो हमारे साथ आज जुड़ी हैं नेमती बहन और सुनीता बहन, तो इन दोनों से जानते हैं इनके खेती बाड़ी के अनुभव। तो नेमती जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की?
3: मैंने एमए किया है,
2: अच्छा,
3: बीएड किया है।
2: आपने ये पढ़ाई लिखाई जब की थी तो उस समय पे आप किस तरीके से अपनी सोचती थी कि हम अच्छे से अच्छे नंबर ला पाऊं?
3: इसके लिए
2: हाँ हाँ
3: हमें अच्छी पढ़ाई करनी होती थी,
2: हाँ
3: घर में काम के हिसाब से हमें अपने पढ़ाई के लिए भी टाइम भी निकालना

0: पड़ता था।
1: अच्छा।
0: कि हम किस तरह से अपना टाइम को चुराएं और अपना टाइम अच्छी जगह पढ़ने के लिए निकालें और वहाँ सही जगह लगाएं।
1: हम ये जानना चाहेंगे कि नियमित जी ये बताइए कि आपने क्या पढ़ाई लिखाई अपनी शादी के बाद भी की थी कुछ?
0: हाँ, मेरी शादी तो के बाद ही हुई है ज्यादातर पढ़ाई।
1: अच्छा, तब तो आपके परिवार के जो लोग हैं उनका बहुत सहयोग रहा होगा।
0: हाँ, सहयोग है सभी का।
1: नियमति जी, हम ये जानना चाहेंगे आप कौन से गांव में रहती हैं?
0: मैं फतेहगंज पश्चिमी में, नौगमा मोहल्ला लगता है वहाँ, जिला बरेली।
1: हाँ, सुनीता जी आप कहाँ रहती हैं?
2: फतेहगंज नई बस्ती, जिला बरेली।
1: हम नियमति जी आपसे बात कर रहे थे कि आपने पढ़ाई लिखाई अपनी शादी के बाद की थी। बहुत सी बहनें आपने देखी होंगी कि शादी के बाद कहती हैं, अरे हमें तो घर है, कोई तो काम है, हम अपनी पढ़ाई लिखाई कैसे करें? उनसे आप क्या कहना चाहोगी?
0: मैं ये कहना चाहूंगी, पढ़ाई लिखाई करने के लिए टाइम की आवश्यकता होती है और कुछ बनने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है।
1: हाँ।
0: कुछ चीज का त्याग भी करना पड़ता है। अगर हम अच्छा बनना चाहेंगे, पढ़ाई आगे करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा। अपनी कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ जरूरतों को छोड़ना भी पड़ेगा।
1: हाँ, बिल्कुल सही बोली आपने कि कुछ जरूरतें अपनी छोड़नी पड़ेंगी,
0: गलत आदतों को छोड़ना पड़ेगा और अच्छी आदतों को अपनाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
1: हाँ।
0: पढ़ाई कर पाएंगे,
1: क्योंकि
0: हाँ।
1: आपने देखा होगा ज्यादातर बहनें हमारी ऐसी होती हैं कि वो शादी के बाद पढ़ाई छोड़ ही देती।
0: होता है कभी कभी ऐसा, कुछ की परिवार की कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उन्हें पढ़ाई छोड़ना पड़ती है।
1: हाँ, हाँ, चलो परिवार की स्थिति की बात तो अलग है,
0: अलग
1: कि किसी का परिवार कैसा है, किसी का कैसा है, वो तो जो रहता है वो ही जानता है। उस संबंध में तो अपने लोगों को कुछ पता ही नहीं है,
0: पता नहीं है।
1: हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम थोड़ा तो बदलाव कर सकते हैं,
0: अपनी पढ़ाई, अपनी इच्छाएं, जो भी अपनी बेसिक नीड है, अपनी जरूरतों के हिसाब से पूरी कर, हर औरत को पूरी करनी चाहिए। मेरे मानना है, अपने मन है कि हमें टीचर बनना है, हमें वकील बनना है, या हमें किसी प्रोफेशन में और भी जाना है, तो हम उसके लिए अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए।
1: हाँ।
0: भले ही शादी हो गई है, लेकिन शादी होने के साथ साथ परिवार और अपना जो हमारा उद्देश्य होता है उसे भी पूरा करना चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा नियमति जी आपने। अच्छा सुनीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पढ़ाई लिखाई की है?
2: नहीं।
1: अच्छा, तो आप अपने घर परिवार में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो करती हो, जो आप घर के काम करती होगी, उसके बाद खेतीबाड़ी भी करती होगी?
2: हाँ, खेतीबाड़ी में करते हैं, जब घर का करके आते हैं तो खेतीबाड़ी के में करते हैं काम।
1: अच्छा,
2: तो जाए कि उसमें पौध भी लगाने हैं।
1: हाँ।
2: तो उसकी देखभाली भी करने हैं।
1: अच्छा, अभी क्या काम ही रहा आपकी?
2: अभी तो ऐसे तुरई है, लौकी है, पौध भी है, तो उसकी देखभाली करने हैं।
1: अच्छा,
2: कैसे स्प्रे करने हैं, कुछ बीमारी लग जाती है तो स्प्रे करने पड़ती है।
1: आप बता रही कि तुरई लगाई है आपने।
2: हाँ।
1: और तुरई के साथ साथ और कौन सी सब्जी लगाई है?
2: लौकी है, तुरई है, भिंडी भी है।
1: जो ये सब्जियाँ हैं ये किस प्रकार से लगाई?
2: ये तो ऐसे है, खाई खोदते हैं, खाई खोद के उसके बरहारा बांधते हैं।
1: अच्छा,
2: बांध भी बांधते हैं। और तो उस पे पेड़ पौड़ा जाते हैं।
1: अच्छा, तो जब आपने जो लगाई होंगी तो बीज कहाँ से लाई हैं?
2: बीज दुकान से ले।
1: तो पता लग गई आपको सही है बीज?
2: हाँ, पता लग गई।
1: कितने खेत में लगाई हैं आपने ये लौकी?
2: एक बीघा खेत में करी है।
1: अच्छा, एक बीघा में करी। तब तो आपको काफी देखभाल करनी पड़ी होगी।
2: हाँ, बहुत देखभाल करनी पड़ती है।
1: पानी उनी किस प्रकार से लगाने पड़ता है?
2: पानी तो ऐसे, अब सूख रही है फसल, मुरझाने लगी तो पानी लगाने पड़ेगा।
1: अच्छा,
2: हाँ, पानी लगाना, खाद पौध पे खाद लगाने।
1: अच्छा, कितने कितने दिनों में पानी लग जाता है? लगभग
2: तीसरे चौथे दिन पानी तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो धूप ज्यादा पड़ रही है।
1: हाँ, धूप ज्यादा पड़ रही है। तो किस समय लगाना चाहिए हमें अपनी खेती में पानी?
2: आज लगा दे, तीसरे दिन फिर लगा दो।
1: मतलब सुबह के समय ज्यादा सही है या दोपहर के समय?
2: शाम के टाइम लगा।
1: तो बहुत अच्छी से आप अपनी जो सब्जी वाली फसलें हैं उनको ध्यान रखती हो।
2: हाँ।
1: तो आप जाकर बाजार से कम लाते हो?
2: हाँ, सब्जी बाजार जो अपनी फसल कर रहे हैं उसी में से लाते, वो तो बाकी बेचनी पड़ती है।
1: अच्छा, बाकी बेचनी कितनी? हाँ। कितनी बिक जाती है?
2: ऐसे अब दो ढले ले जाओ, तीन ले जाओ, जितनी अपनी फसल में
1: हाँ,
2: आ जाती है उतनी ले जाती है तीसरे चौथे दिन।
1: अच्छा, थोड़ी बहुत अपने घर से ही जात हुई जो आप पैदा करती हैं, और थोड़ी बहुत बाजार से ले आती हुई?
2: बाजार से ले आती है, दाल तो थोड़ी बहुत बाजार से ले आती
1: है,
2: हरी सब्जी अपने घर की हो जाती
1: है। तो आप करती ना हो अपने खेत में दाल उल जिस समय पे होती है?
2: उस समय पे कर लेते हैं, थोड़ी सी करते हैं।
1: अच्छा, कौन कौन सी दालें उगा लेती हैं लोग?
2: ऐसे मसूर है, उड़द है।
1: अच्छा,
2: अरहर हो जाती है।
1: अच्छा, अरहर हो जाती है आपकी?
2: हाँ।
1: तो ये तो दालें भी आपके खेत में ही जात हुई?
2: हाँ, जी, खेत में हो जाती।
1: अच्छा, तो नियमति जी आप बताइए, आप अपनी खेती बाड़ी में किन किन बातों को ध्यान रखती हैं? हमें जैसे क्या क्या फसलें आपने करी है इस बार?
0: हमारे यहाँ खेत में लौकी भी है, तुरई भी है।
1: अच्छा,
0: कद्दू भी है।
1: तो आपने भी यही लगाई
0: फसल? हाँ, यही लगाई।
1: अच्छा, अच्छा।
0: मौसम की फसलें हैं।
1: हाँ,
0: ये मौसम के हिसाब से ही समय से लगती
1: हैं। हाँ, ये बात सही कही। तो कितनी कितनी लगाई हैं आपने भी?
0: हमारे यहाँ दो बीघा।

0: लगी हुई है।
1: अच्छा, 2 बीघा लगी हुई है।
0: हाँ,
1: तो कब लगाई थी लगभग?
0: मार्च के महीने में लगाई थी।
1: अच्छा, मार्च में लगाई थी।
0: हाँ,
1: तो बीज फिर आप कहाँ से लाई थी?
0: बीज तो दुकान से लिया जाता है।
1: अच्छा, सही था बीज?
0: बीज बढ़िया था, क्वालिटी का था। अच्छा
1: अच्छा, तब तो अच्छी बात है। तो
0: हाँ,
1: लगाओ कैसे हो, आपने खेत कैसे तैयार करो?
0: पहले हम खेत को खाद डाल के उसको तैयार करते हैं,
1: अच्छा, देसी खाद डालकर।
0: देसी खाद डाल के। हाँ, जो गायों के गो

0: उसमें बीज को गाड़ते हैं, गुड़ाई करते हैं बीज की,
1: हाँ
0: मतलब
1: तो जो बीज गाड़ती हैं वो कितनी कितनी दूरी पे लगा देती हैं आप?
0: एक एक दो दो फीट की दूरी पे।
1: क्यारे में तो आप दो तीन बीज लगाती है होगी,
0: हाँ, दो तीन लग जाते
1: कितने
0: हैं,
1: लगाती हैं?
0: मतलब तीन चार लगा देने चाहिए। कभी कभी ऐसा
1: हाँ
0: होता है एक ही जम पाता है
1: एक ही
0: उसमें
1: जम
0: से,
1: पाता है।
0: बाकी सब नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम उसमें ज्यादा लगा देते
1: हाँ।
0: हैं।
1: अच्छा
0: और मान लो सभी उसमें तैयार हो जाते हैं, तो कुछ समय के बाद एक को लगा के निकाल के तो दूसरी जगह लगा देते
1: अच्छा
0: हैं,
1: जहाँ नहीं
0: जिसमें
1: हो।
0: नहीं होता है उस जगह लगा दिया जाता है।
1: अच्छा।
0: फिर उनपे लकड़ी लगा के ऊपर भी करते हैं खेती, मतलब ट्रैक्टर बांध दिया
1: हाँ
0: जाता
1: ट्रैक्टर
0: है।
1: बांध दिया। अच्छा आप जो बता रही हैं हमें, वो ठट्टर क्यों बांधने चाहिए हमें अपनी फसल में?
0: जिससे हमारी फसल बढ़िया होए, नीचे
1: अच्छा
0: अगर रखेंगे तो सड़ जाती है, पानी लगाते हैं टाइम
1: हाँ
0: में कीड़े भी लगते हैं, और अगर ऊपर भी हो ऊपर होगी तो उसे अच्छी पोषण मिलेगी, हवा भी मिलेगी
1: हाँ
0: और ज्यादा धूप भी नहीं लगेगी, उसे आराम से उसमें रखे रहती हैं।
1: अच्छा एक बात बताइए, ये हमारी नेमती बहन जो बता रही हैं कि ये ठट्टर बनाती हैं, ये ठट्टर होत का है, कैसे करके बनतु है?
0: जो तो ऐसे ठट्टर होते हैं, ऐसे लाते हैं, बाल है रस्सी है वगैरह जो ला के पूरते हैं, पूर बांस की
1: के
0: लकड़ियां खड़ी
1: बांस की
0: करके।
1: लकड़ी है वो लगाते हैं। लगाने के बाद तो उसपे बेल फोड़ाई जाती है, फोड़ाने के बाद जब बच्चा आता है तो वो नीचे को लटक जाता है, वो लटकने के बाद से अच्छी तरीके से पड़ता है, उसमें हवा लगती है।
0: अच्छा, तो कूड़ कूड़ से कूड़ की दूरी कितनी रखती है? मतलब एक आपने पौधा यहाँ लगाओ, फिर दूसरा पौधा कितनी दूरी पे लगाती
1: ऐसे
0: है?
1: लगा देते हैं आधे आधे फिट, एक एक दो दो फिट पे दूरी पे लगा देते हैं।
0: अच्छा, तब तो
1: हाँ
0: आपको काफी जानकारी है जाको,
1: हाँ
0: मतलब आप सब्जियों वाली फसलें काफी दिन से कर रही हैं।
1: हाँ काफी
0: कितने
1: दिन
0: दिन से कर रही हैं?
1: हो गए, 2-1 साल हो
0: अच्छा, तो
1: गए।
0: भिंडी उंडी ना लगानी है आपने?
1: हाँ भिंडी,
0: तो भिंडी कब लगाई है?
1: भिंडी साथ ही में लगाई है, जैसे जो तुरई लगती है तो
0: हाँ,
1: भिंडी लगती है, तो एक
0: तो
1: महीने में तैयार हो पाती है कम।
0: अच्छा, तो बिन
1: हाँ
0: पे मतलब फल आए लिख रहे हैं, यानी कि सब्जियां आए लिख रही
1: हाँ
0: ना?
1: फूल आते हैं तो थोड़ा थोड़ा गुटमना आता है।
0: तो भिंडी तो घर के वैसे ही बह जाती है ना खेत में एक सीधे?
1: ना ऐसे नहीं बह जाती, वो तो गूली जाती है। हाँ एक एक फिट पर आधा आधे फिट पर गूली जाती है वो तो।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: काय से गूलती हो?
1: ये खुरपी ले लो, उसे थोड़ा थोड़ा गड्ढा करके गूलते चले जाओ।
0: तो बा खेत को पहले तैयार ना करती हैं, ऐसे ही खाली अजर्रा खेत में बह
1: ना
0: देती हैं?
1: अजर्रम नहीं, वो तो पहले परेवा करते हैं, पानी
0: हाँ
1: लगा के फिर जुताई करते हैं,
0: अच्छा
1: उसके बाद में खूब सही से फ्रेश हो जाता है, उसके बाद में सर्दी में गूली जाती है।
0: अच्छा, तो कोई दवाई लगानी पड़ती है?
1: दवाई बाद में लगानी पड़ती है।
0: अच्छा, जब बिन में कोई परेशानी आ जाती है
1: हाँ
0: तो।
1: हाँ
0: तो नियमति जी, ये बताइए, अगर जो आपने जो सब्जियां लगाई हैं उनमें कऊ कऊ जैसे कीड़े मकोड़ा लग जाता है हाँ।
1: कुछ, देखो आप देख दी होंगी भिंडी टेढ़ी हो जाती हैं और तुरैयां भी गोल गोल सी हो जाती हैं,
0: हाँ।
1: तो इनके लिए फिर आप क्या करती
0: दवाई
1: हैं?
0: लगानी पड़ती है, कीटनाशक दवाई को स्प्रे किया जाता है।
1: कैसे करके पता करती हैं आपकी जो तुरैया खराब हो गई है या
0: वो
1: हमारी
0: तो
1: भिंडी
0: हमें
1: खराब हो रही है?
0: देखने से ही पता चल जाता है उसमें
1: आप
0: कि
1: दे
0: इसमें कीड़ा लग रहा है। अगर वो सीध पूरा विकसित हो रही है ठीक से
1: हाँ
0: तो वो ठीक है, और
1: हाँ
0: उसको घुमावदार हो जाती है, किसी में छेद हो जाते हैं, जैसे बैंगन होती है, बैंगन की सब्जी इस समय चल रही है,
1: हाँ
0: बैंगनों में छेद हो जाते हैं
1: हाँ
0: और ऊपर से बैंगन दिखेगा बहुत अच्छा
1: हाँ
0: है,
1: बहुत अच्छा है,
0: बहुत अच्छा है, अंदर से देखो तो पूरा खराब
1: पूरा
0: निकलता
1: खराब
0: है,
1: निकलता है।
0: कीड़े उसमें बैठ जाते हैं। अगर हम उसको समय से स्प्रे नहीं करेंगे फल पूरा खराब हो जाता है,
1: अच्छा,
0: तो इसलिए स्प्रे समय समय पर कर देनी चाहिए, 15 दिन में, 10 दिनों में, और अपनी खेती की देखभाल करते रहने चाहिए समय
1: अच्छा
0: समय पर।
1: तो आपने जो बताई कि आप देख लेती हो कि हमारी जो फसल है जो सब्जी वाली फसल है बामा कोई परेशानी है, तो आप घूम घूम के देखती हैं वह पूरे खेत
0: हाँ
1: में?
0: खेत में घूमना पड़ता है, ऐसे थोड़ी नहीं है हम गए खेत पे और मेड़ पे गए और ऐसे पता करके चले आए, पौधे के पास जाना पड़ता है खेत में, तभी हमें पता चलेगा कि इसको ये बीमारी है या इसमें पानी ज्यादा लग गया इसमें कम है, तो हमें उसी हिसाब से उसको करना पड़ता है देखभाल
1: अच्छा
0: उसकी।
1: तो ये जो फसलें हैं हमारी, सुनीता बहन जी तो ये कह रही थी कि वो तीसरे दिन पानी लगा देती हैं, आप सब्जी वाली फसल में कितने दिन पानी लगा देती
0: हाँ
1: हैं?
0: ऐसे लग जाता है 3-4 दिन में ही।
1: अच्छा, तो किस तरीका से लगाता है, मतलब पानी भर कर लगाता है या फुब्बारे से लगाता है, कैसे लगता है?
0: फुब्बारे से नहीं लगता है उसमें,
1: अच्छा
0: कम लगता है, मतलब जो
1: हाँ,
0: पौधे की
1: हल्की
0: इस
1: सिंचाई।
0: हल्की सिंचाई होती है उसमें,
1: हाँ
0: जैसे शाम के टाइम हमें सिंचाई करनी चाहिए फसल में,
1: अच्छा
0: लौकी है तुरई है, इस समय अगर हम सुबह में उस पर लगा देंगे तो जब धूप तेज होती है तो फसल हमारी सूखने लगती है, मुरझा जाती है
1: अच्छा
0: तेज धूप से, तो इस समय हमें इसके लिए हमें शाम के टाइम में सिंचाई करनी चाहिए, जिससे हमारे पौधा सूखे ना और तरावट पूरी रात महसूस करे, तो
1: अच्छा
0: 1-2 दिन सिंचाई बढ़ती चलेगी, ज्यादा दिन चलेगी।

0: लेट करनी होगी सिंचाई फिर।
1: तब तो आप खूब अच्छे से अपनी खेती करती हैं, और आप बता ही रही कि देसी घूरो आप अपने खेत में डालती हैं, तो जो देसी घूरो आप फिर का मोल उल लेती हैं?
0: ना मोल नहीं लेते हैं, हमारे यहाँ भैंस पलती हैं।
1: अच्छा, कितनी भैंसे पालती हैं?
0: 4 भैंसे हैं हमारे।
1: अच्छा, तो दूध दूध दे रही है?
0: हाँ दूध दे रही है, 2 दे रही है, 2 नहीं दे रही है।
1: अच्छा, 2 दे रही है। कितू कितू दे देती है?
0: अच्छी दे देती है, 5-5 लीटर, 6-6 लीटर।
1: अच्छा, और सुनीता जी आप भी बात कर रहे हैं कि आप जो सब्जी वाली फसलें लगाती हैं उनमें खाद लगाती हैं, तो वो खाद आप भी क्या मोल लेती हैं?
2: अपने आप भैंसों की खाद हो जाती है।
1: अच्छा
2: हाँ,
1: तो आप कितनी भैंसे पालती हैं?
2: अब भैंस तो अभी इस टाइम तो एक है।
1: अच्छा, एक है?
2: हाँ,
1: मतलब एक भैंस है, बाको तो कम है होता है।
2: हाँ अभी तो कम ही होता है।
1: अच्छा
2: हाँ,
1: तो कितने कितने दिन में इकट्ठो करके फिर बाको?
2: बाको तो 1 साल में इकट्ठो कर ले हो।
1: हाँ हाँ,
2: तो वो सड़ जाए वो गल जाए वो, तो वो उसको लगाए ले जाके लगा दो।
1: अच्छा,
2: हिला दो।
1: तो आप जो बता रही हैं हमें कि आपकी एक भैंसिया है, बाको कैसे ध्यान रख रही हूँ जो गर्मी के मौसम में?
2: गर्मी के मौसम में अब वो तो सुबह को उठते हैं तो उसका गोबर भी उठोलता है, गोबर उठो झाड़ू लगा देते हैं, झाड़ू लगाने के बाद उसको से फिर सानी करते हैं, अच्छे सानी करके पानी डाल के
1: फिर सानी कर देती हूँ। दिन भरे में?
2: दिन भरे में 3 बार सानी करते हैं।
1: अच्छा,
2: 3 टाइम।
1: तो अब पानी उन्हें कितनी फिर पिला देती हैं?
2: पानी 3 टाइम पानी पियाते हैं।
1: कैसे पियाती हैं? वो तलैया में ले जाकर पिला देती हैं या घर?
2: घर घर पियाते हैं।
1: अच्छा,
2: घर पियाते हैं,
1: नल से निकाल,
2: नल से निकाल के।
1: और हंधवा?
2: हाँ हंधवा देता, तीनों टाइम नहाना आए, सफाई करने है।
1: अच्छा,
2: उसके नीचे फिर मच्छर उच्छर लगाएंगे तो बहुत तो सफाई करने है।
1: हाँ वो बात सही कही, फिर उन्हें बांधती कहाँ? दूसरी जगह धूप में
2: कीचड़ होती है तो सिराई में बांध देते हैं।
1: अच्छा, पेड़ की छाया में बांध देती है?
2: हाँ पेड़ की छाया में बांध देता हूँ, उनसे खोल देते अंदर ले आते हैं।
1: अच्छा, शाम के टाइम?
2: शाम के टाइम पर तो सानी करके अपने अंदर बांध देते।
1: कहाँ कहाँ मिलती है आप आवाज गर्मी के मौसम में सानी?
2: अभी तो चोकर है, दलिया है, ऐसे आटा पिसा ला मोटा, तो वो है तो तरावट की चीज, अब ये जे चीज खवाती
1: है। अच्छा, तो जो चोकर आपने बताओ, चोकर और दलिया?
2: हाँ।
1: जो कहा आप भिजे उजे खवाती हैं ऐसे ही डाल देती हैं?
2: ना भिजे के कब? पानी पानी में भिजेगा?
1: हाँ,
2: 1 घंटा पहले से भिजा दो।
1: अच्छा।
2: तो फूल जाएगा अच्छे से करके।
1: हाँ।
2: तो गाढ़ा गाढ़ा को एक पल्ला उसमें डाल के लपेट के डाल।
1: अच्छा, अब कोई हरो चारो ना है?
2: अभी तो कोई हरा चारा नहीं।
1: अच्छा, दूध दूध दे रही है आपकी भैंसिया?
2: दूध तो नहीं अभी दे रही है।
1: अच्छा
2: हाँ।
1: तो और नेमवती जी आप बता रही थी कि आपके घर में 4 भैंसे हैं जिसमें 2 दूध दे रही हैं, तो जो दूध वाली भैंसिया है उनको क्या ध्यान रखती हैं आप?
0: अच्छे से ध्यान रखते हैं, इस समय चरी चल रही है।
1: हाँ हाँ,
0: वो बो रखी है खेत में।
1: अच्छा,
0: तो वो काट के हम लाते हैं तो उसे खान के और भूसे के साथ में मिला के, और उसमें जो सानी होती है गेहूं का आटा की, आटे की भी करते हैं, चोकर भी बाजार से जाता है।
1: अच्छा,
0: और घर में जो दलिया दलवा लेते हैं वो,
1: तो वो
0: मिक्स करके उसको खिला दिया जाता है।
1: तो अपनी सब भैंसियों को खवाती हैं जो आपके?
0: हाँ, वो सबको भी खिलाएंगे क्योंकि वो 2 महीने बाद उनके वो हैं गाभिन है।
1: अच्छा अच्छा, तो वो 2 महीने बाद दूध देने लगेंगे?
0: दूध देने लगेंगी।
1: चलो बहुत अच्छी,
0: तो उनको भी देखभाल रखनी
1: हाँ,
0: चाहिए।
1: देखभाल तो रखनी चाहिए,
0: अभी से करेंगे हम देखभाल तभी तो वो देंगी।
1: हाँ, आप बता रहे हैं कि 2 महीने बाद आपकी जो भैंसियाँ हैं वे दूध देने लगेंगी।
0: हाँ।
1: तो हमें पहले से ही ध्यान रखने पड़ता
0: है? हाँ, पहले से ही ध्यान रखने पड़ता है।
1: कितने का खवा रही है फिर उन्हें, जैसे दलिया उलिया कुछ?
0: हाँ, दलिया रांधते हैं, उसमें मिठाई डाल के भैंस को खिलाया जाता है सुबह शाम, जब ब्याह जाती है उसके बाद कैल्शियम की शीशी भी आती है वो भी पिलाया जाती है।
1: अच्छा,
0: भैंस के लिए
1: उससे दूध बढ़ता है?
0: दूध बढ़ता है और भैंस में कैल्शियम की कमी नहीं रहती है।
1: अच्छा,
0: बीमार पड़ने के चांस कम रहते हैं भैंस के।
1: अच्छा
0: हाँ, अपने जैसा ही समझो।
1: हाँ हाँ, वो बात तो सही कही आपने।
0: हाँ,
1: कि जैसे हम सबको परेशानी हो जाती है,
0: जैसे हम लोगों को परेशानी होती है ऐसी भैंस को भी होती है, तो उसकी देखभाल करने अच्छे से करनी चाहिए तभी वो दूध दे पाएंगे और हमारा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
1: हाँ,
0: हमारे घर में जो भी जिस लिए हम पाल रहे हैं दूध के लिए, खर्चे के लिए, तभी हमारा खर्चा हो पाएगा।
1: हाँ, तो एक बात और बताइए, आप जो बता रही थी कि आपके घर में जो दूध भैंसियाँ दे रही हैं वो दूध का आप घर में ही इस्तेमाल कर लेती हैं? बेच
0: नहीं,
1: दी
0: हैं? बेच भी देते हैं।
1: कितने बेच देती हैं?
0: ऐसी बिक जाता है 8-9 लीटर।
1: अच्छा, तो कई रुपए लीटर जा रहा हूँ आपके यहाँ पे दूध?
0: ऐसी जा रहा है 50 रुपए।
1: तो बासे आपको जो जानवरों का खर्चा है वो चल जाता है?
0: हाँ चल जाता है, जानवरों का खर्चा भी चलता है, घर का भी चलता है।
1: अच्छा
0: हाँ?
1: चलो बहुत अच्छी बात है। तो उनके जो लभारे हैं उनको जो गर्मी के मौसम में कैसे ध्यान रख रही हैं और अपने सब जानवरों को हाँ, कैसे ध्यान रख रही हैं गर्मी में?
0: उनके लिए सुबह ही निलाया जाता है, निलाने के बाद में हम उसे सानी करते हैं, सानी करने के बाद में खिला खा पी के फिर उसका दूध निकालते हैं। दूध निकालने के बाद उन्हें खेत पर, हमारे यहाँ पेड़ है तो उन्हें पेड़ के नीचे बांध दिया जाता है।
1: अच्छा
0: हाँ, और जो भी साफ सफाई है गोबर की बुक कर दी जाती है, जब तक शाम

0: को आती है तब तक वहाँ सूखा हो जाता है।
1: इसका मतलब आम मच्छर उच्छर ना पनपन,
0: मच्छर उच्छर ना पनपन देता है, पानी रखते ही नहीं है।
1: अच्छा,
0: हर शायद हल्का करा हुआ तो उसे मोटर से धो दिया।
1: अच्छा, तब तो वो कतई सफाई हो जाता है,
0: कतई साफ हो जाता है। अब और उसकी जो खाने की
1: नाद
0: होती है उसको भी साफ किया जाता है।
1: अच्छा, वो रोज रोज
0: रोज साफ करते हैं सुबह।
1: अच्छा, आपने तो कह दी कि आप रोज सफा करती हैं। अच्छा सुनीता जी, आप बताइए आपकी जो भैंसिया है का आप बाकी नाद रोज सफा करती हैं?
2: हाँ, आप रोज सफा करनी पड़ती है।
1: अच्छा, अच्छी सफा क्यों करनी चाहिए? हम
2: वे सफा इसलिए करनी चाहिए कि उसमें गंदकाई नहीं हो, कीड़ा नहीं पड़े, बदबू ना मारे। ऐसे अपना खाना खाते हैं ऐसे उसका खाना है, उस हिसाब से सफाई करनी पड़ती है।
1: और घर के जैसे कहते हैं जानवर खाए वो ना, अगर बाकी
2: वहाँ बदबू आ रही तो वो खाए वो ना, पीछे को हट जाते हैं खाली, तो हम तो जकांगे खा के ना रही। तो वो देखभाल करने पर महकावे तो वो तुम हटाने पड़ेगा।
1: हाँ,
2: दूसरी भी सानी फिर करने पड़ेगी।
1: अच्छा, कौ कौ ऐसे होता है घर के जानवर जो होता है उन्हें कोई परेशानी हो जाती है, जैसे कि बुखार है या फिर उनके पेट में कोई दिक्कत है? हाँ, तो आप कैसे पता करती हैं इन बातों को?
2: इन बातों को वो बुखार आ रहे है तो वो थोड़ा से ससराता है।
1: अच्छा,
2: वो रुंगटू ठाड़ा करता है तो पता चलती है, हाथ सर सिर पे वाके हाथ रखते हैं।
1: अच्छा,
2: दिख रहा है की इसमें बुखार है।
1: अच्छा,
2: तो उसके दवाई भी फिर दिलाते हैं, गाली ना फेरा वो अनुनो बैठा तो बस देखने पड़ेगा।
1: बरसात होने से पहले टीका उका लगवा देती है अपने जानवर के?
2: हाँ, टीका लगवा देते हैं।
1: अच्छा, गाँव में ही आ जाता है?
2: हाँ, डॉक्टर को बुला लेते हैं गाँव में।
1: अच्छा, गांव में। तो नेमवती जी, आप बता रही थी कि आपकी जो भैंसियां हैं वो दूध दे रही हैं, आप बेच भी रही हैं, बेचन के संग संग घर में ही इस्तेमाल करती हैं ना?
0: हाँ, थोड़ा होता है इसमें।
1: अच्छा, तो कैसे का करती हूँ फिर वह दूध को, जो बचो वो दूध है?
0: बचो वो दूध को उबाल के दही भी बनता है, मट्ठा भी बनता है, उसका मक्खन भी निकलता है, कई प्रयोग हो जाते हैं उसका।
1: अच्छा, मतलब घर पे अगर रखा तो कुल चीजें बन जाती
0: है, पनीर भी बना सकते हैं हम उसका घर पे।
1: बहुत अच्छी,
0: खाने की अच्छी चीज है। जो हम बाजार से लाते हैं उससे अच्छा है हम घर पे ही बनाएं,
1: घर पे ही बना लें। और वो शुद्ध भी होगा?
0: वो शुद्ध होता है, वो थोड़ा मिला हुआ होता है।
1: तो आप तो इतने अच्छे से सब बात बताई रही हैं हमारी बहनों को, लेकिन एक बात और बताओ बहन, जो आपने बताई कि आप पनीर भी बना सकती हैं और दही भी बनाती हैं, जो किस तरीका से दही बना लेती हैं और किस तरीका से पनीर बनाती हैं?
0: पहले तो ऐसा होता था कि मिट्टी की हांडी होती थी, बरोसी बनाते थे, उसमें उबालते थे, तो आज भी कहीं कहीं वो चीजें गाँव में है। तो उसी तरह से उबालते हैं, फिर उसे दूसरे शाम को जब ठंडा हो जाता है तो दूसरे बर्तन में जमा देते हैं। पनीर बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, जैसे हमें पनीर बनाने का मन है तो दूध उबालते हैं तो उसमें हम कुछ खट्टा डाल देते हैं, जैसे नींबू है, नींबू डालते ही दूध फट जाता है हमारा, ये तो पता ही होगा सबको। उसके बाद हम उसमें पानी डाल के उसको खूब अच्छे से धो के साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद उसे एक महीन कपड़े में, सूती कपड़े में लपेट के उसका सारा पानी निकाल दिया जाता है। उसके बाद हम उसे फ्रीज में रख देते हैं 2-3 घंटे के लिए, जिससे उसका थक्का ठीक से बन जम जाता है। तो बाद में वो पनीर के रूप में तैयार हो जाता है।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई, हमारी कुछ बहनें ऐसी हैं।
0: मान लीजिए कभी हमारे घर में दूध खराब भी हो जाए बहनों, तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, हम उसका दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं पनीर के रूप में।
1: हाँ, वो बात तो आप सही बता रही हो बहन जी, लेकिन एक बात आपने देखी हुई कि बहुत सी बहनें तो ऐसी हैं जो कहती हैं अरे जो दूध तो खराब ही, जो तो नुकसान दे जाए, कहती है ना, कहती है। तो उनको आप क्या कहना चाहोगी सलाह के रूप में कि हमें अपने जो दूध खराब ही बाई चांस घर के, अब गर्मी को मौसम है आप देखिए रही हैं, जहाँ मैं कऊ कऊ रात को दूध घर के रख देता हूँ तो सुबह को वो खराब हो जाता
0: है, खराब हो जाता
1: कि कऊ भूल गए या फिर घर के बत्ती ना आई, अगर फ्रिज में रखोगे तो बत्ती ना आई या फिर भूल गए कऊ हवा में टांग लो तो वो सुबह खराब हो जाता है। बहने का करती हैं, उठाती हैं और दान की बाल्टी में फेंक दो। तो उन बहनों से आप क्या कहना चाहूंगी?
0: मैं ये कहना चाहूंगी ज्यादातर है तो उसको एक बड़े बर्तन में पानी भरते हैं, उसमें उस डोलची को रख देते हैं।
1: अच्छा,
0: जिससे हमारा दूध सुबह तक सही रहे, खराब ना हो। अगर मान लीजिए किसी कारण से वो खराब हो जाता है तो उसको पनीर बना के देख लेते हैं, अगर हमारा यूज करने लायक है, अच्छा है, तब तो उसे पनीर की बेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं करना चाहिए।
1: लेकिन जहाँ गर्मी के मौसम में कैसे काम कर लेती हूँ, क्योंकि अब तो दोपहरिया में बड़ी तेज धूप होती है।
2: अभी तो दोपहर में बहुत तेज धूप होती है, तो सुबह को जाते हैं, उठते हैं 4 बजे उठते हैं, 4 बजे 10 बजे तक काम करते हैं घर में अपने, ठंडे ठंडे काम कर लेते हैं।
1: अच्छा,
2: ठंडे काम कर लेते हैं तो फिर अपने बच्चों को नहाते हैं, धुवाते हैं, उसको सही से पंखे की हवा में निटाल देते हैं।
1: अच्छा,
2: इस तरह लगा दिया अपने बच्चे, निटाल दिया, फिर अपने आराम से दोपहरी भर घर में रहते हैं, शाम को फिर अपने बच्चे खेल लिए जाते।
1: हाँ।

0: फिर जो आपने बताई आपकी सब्जियां हैं उनकी देखभाल फिर किस समय करती हैं?
1: उसकी शाम सवेर को करते हैं, दोपहर में थोड़ा ना करेंगे।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ।
0: और जब आप सही कह रही हूँ आपकी दोपहर हम ना जानो चाहिए
1: हाँ।
0: हमें अपने खेत पर है ना।
1: हाँ इतनी धूप पड़ती है कैसे चले जाओगे।
0: हाँ
1: अब संजय सवेर तो करने करनी है।
0: हाँ संजय सवेर तो
1: करनी करनी है
0: क्योंकि काम तो खेती को तो ताको होता ही है। हाँ।
1: तो वो अपने सुबह को सुबह के गा तो सुबह को संभाल के देख बाहर कर ले, शाम को अपने कुछ दिक्कत आ रही तो वो देखभाल करने।
0: अच्छा तो पानी उनी ले जाती हूँ संग?
1: हाँ साथ में पानी लेके जाते हैं।
0: अच्छा और कपड़ा वपड़ा ले जाती हूँ सूती?
1: हाँ,
0: घर तो उड़ उड़ के चली जाती हैं।
1: सूती कपड़े लेके आते हैं।
0: अच्छा,
1: छाता भी लेके जाते हैं कि
0: अच्छा,
1: जो अपने धूप ना लगे।
0: हाँ जब ऐसे ही
1: वो देखने पड़े
0: क्योंकि धूप तो घर के सबको लगती है।
1: हाँ,
0: चाहे किसान भैया बहन हो
1: कोई
0: चाहे कोई काम करने वालों हो देखो धूप तो सबके लिए बराबर।
1: इतनी लू चल रही है, लपटा चल रही है, आज तेज ज्यादा चल रही है, लू लग जाए तो बस इंसान मर जाएगा।
0: हाँ
1: मर जाएगा ना,
0: दिक्कत तो ये
1: जाएगी
0: अगर किसी को लू लग गई तो।
1: लू लग गई तो कितनी परेशानी बढ़ जाती है, ऐसे अपने पौध को बढ़ती है।
0: हाँ नियमित जी आप बताइए कि आप अपने घर परिवार में अपने बच्चों का ध्यान किस प्रकार से रख रही हैं या गर्मी के मौसम में?
2: हाँ इस मौसम में हम सुबह सुबह ही खेत पर जाते हैं।
0: अच्छा
2: जल्दी उठ के खेत पर चले जाते हैं, उसके बाद ही आके घर का काम करते हैं।
0: अच्छा
2: पहले खेत में जो निपट होता है काम जैसे सब्जी बीनने का है तो वो सुबह में ही निपट ले जाते हैं।
0: अच्छा
2: कर लेते हैं, उसके बाद हम घर का करते हैं। अपने बच्चों को नहलाना है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। इस समय धूप पड़ रही है काफी तेज, तो कभी कभी ऐसा होता है आम का पन्ना बनाया जाता है, उसके लिए हम आम लेते हैं कच्चे, जो इस समय कैरी चल रही है आम की, दो तीन लेते हैं, जैसे लोग होते हैं उसी हिसाब से ले लेते हैं। उस हिसाब से लेने के बाद हम उसे पहले तो आग में भूनते थे, लेकिन अब क्या होता है गैस है हमारे यहाँ तो उसे पानी में उबाल लिया जाता है।
0: अच्छा
2: फिर उसे छील लिया जाता है, जो आम का अंदर का गुठली होती है उसे निकाल के जो उसके ऊपर का छिलका होता है वो भी उतार दिया जाता है, अंदर का जो गूदा होता है उसको हम निकाल के एक गिलास में या जग में रखते हैं, उसमें पुदीना डालते हैं और नींबू डालते हैं और स्वाद अनुसार जो काला नमक होता है वो डालते हैं। तो वो घोल के और हल्की सी चीनी डाल के बच्चों को पिला देनी चाहिए जिससे लू ना लगे।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमारी जो बहनें हैं वो अगर सुन रही होंगी तो फिर जय प्रकार से बनावा इनका ही देखो।
2: हाँ।
0: हम बना के देखेंगे ऐसे कैसे लगाए।
2: हाँ, अच्छा लगा है, स्वादो बढ़िया आता है।
0: और
2: पानी ऐसी सादा नहीं पीना चाहिए, ऐसा हो सके तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा मिला लेनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो उसमें नमक और थोड़ा नींबू थोड़ी सी चीनी मिक्स करके पी लेना चाहिए।
0: हाँ।
2: कोई बाहर से आ रहा है खेत से आ रहा है तो भी बना के देना चाहिए जिससे बच्चे बूढ़े सभी भी पी सकते हैं इससे।
0: और हमारी बहुत सी बहनें आपको आज कार्यक्रम के माध्यम से सुन रही हैं। सुनीता जी आप संदेश के रूप में उन बहनों से क्या कहना चाहोगी?
1: बहनों से क्या कहना चाहेंगे, ये कहना चाहेंगे कि बढ़िया से रखो, उसमें ऐसे बाहर से आ रहे हैं सब लोग तो अपने दही है मक्खन है उसमें ठंडा पानी लाओ, थोड़ा चीनी डालो, शरबत बना के ठंडा करके उसे पिला दो तो उसके शरीर में अंदर से तरावट आ जाए।
0: हाँ बिल्कुल सही कही आपने,
1: तरावट आ जाए।
0: हाँ तो और नियमति जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बहनों को संदेश के रूप में क्या कहना चाहोगी?
2: मैं यही कहना चाहूंगी सभी बहनों से कि अपना अपने परिवार का अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें इस मौसम में। धूप में बच्चों को ज्यादा ना खेलने देना चाहिए और उन्हें जो छुट्टियां पड़ गई हैं उनमें उसका होमवर्क भी कराना चाहिए।
0: और आप दोनों स्टूडियो में आई, आपने इतनी अच्छी बातचीत हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: देखो कृष्णा भैया अब है जो बातचीत हुई ही बातचीत में पूनम बहन जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से बातचीत करी ही कृषि गोष्ठी के अंतर्गत और विषय हो महिलाओं का कृषि में योगदान एवं घरेलू कार्य। इसके संग संग देखो कृष्णा भैया है का इस समय घर के गांव में जनगणना वाले आए रही हैं तो हम भैया बहन से जय कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास में कोई साथी जानकारी लेने के हिसाब से पहुँचें तो उनको सहयोग करें, जो बातें वे पूछें वे बातें उनके लिए बतावें, अच्छे से व्यवहार करें उनके लिए। जाना है कि बिल्कुल कतई बकवास करो उल्टे सीधे बोलो कि क्यों आएगा ही इन पर हमारों का फायदा करवा दोगे, इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग ना करें।
6: जब आप तो भैया सही कह रहे हो, जैसे कोई सटीक जानकारी कुछ लोग होते गाँव में ना देना चाहते हैं।
5: हाँ भैया सही कह रहे हो।
6: तो नहीं अरे भैया जब तो हम ना बतावेंगे क्या कम रहा है तो बहुत ना बताना चाहते हैं, बहुत सी बातें होती हैं। तो बेहू बेचारे देखो आप देख रहे हो दोपहर तैयारी धूप में अपने जा रहा है जनगणना करना ही, तो जो जनगणना कर रहे हैं

0: को हम सहयोग करें और जनगणना में भागीदार बनाएं।
1: बिल्कुल भैया, देखो है का किस्सा भैया, इसके साथ ही साथ हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपने नाम हमारे पास तक भेज जाते हैं, अपने मन को लोकगीत सुनने की चाहत रहती है उनकी, तो का हो तो बे भैया के नाम शामिल करें जिनने कमेंट हमारे पास में भेजी है।
0: अरे राकेश भैया, जहाँ मैं कहने वाली क्या बात है, नेकी और पूछ पूछ भैया, जो थैला है जानकारी लिखा रहो, कौन से लोग भी सुनवा रहे हैं और किन किन भैया ने कमेंट लिख के भेजी हैं, वह डिबिया खोल लो जिसमें
1: बिल्कुल
0: भैया
1: भैया,
0: पूरी
1: देखो
0: जानकारी है।
1: भैया हमारी डिबिया में सबसे पहले नाम निकल के आओ है, आप हैं ग्राम दूने नगर जिला बदायूं से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू, विशाल, संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, नित्या, सरिता और अंतिमा जो कि हमारे नियमित श्रोता हैं। और इसके साथ भैया बताओ अगले साथी देखो हैं कटरा चांद खां, मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली से आप हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, बेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य।
0: और जे फरमाइश हमको भेजी है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार ने, और आप हैं बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश, अंजलि रोशनी सारवा और उनके परिवार के सभी सदस्य, और आप हैं बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से, रामचंद्र माखी राजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और उनके परिवार के सभी सदस्य, और आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से।
1: और इसके साथ साथ भैया अगले साथी हैं, आप हैं ग्राम बमनपुरा पोस्ट मरौरी उसावा बदायूं से, गुड्डू, नीलम, शिवा, गणेश, रामू, बेबू, कार्तिक और आराध्या। और इसके साथ हमारे अगले साथी हैं ग्राम मलगांव विकास खंड आरमपुर जाफराबाद बरेली से, आप हैं कमल सिंह, धर्म सिंह, अर्जुन सिंह, धनवीर सिंह, सुमन देवी, स्वाति, सीमा, कंचन और उमा। और इसके साथ एक साथी ये हैं परा वहाउद्दीनपुर जिला बरेली से, सुनील श्रीवास्तव, सत्यपाल श्रीवास्तव, धर्मपाल, आकाश, मुनेंदर, मोनू, सुरेंदर और अमन।
0: और जे फरमाइश भेजी है बिचपुरी गांव से, लिखने वाले हैं करण मौर्य, अर्जुन मौर्य, गोधन मौर्य और प्रेमपाल मौर्य, और आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, और दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। और जे फरमाइश हमको मिली है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र, PS नेहावकर और निर्मला, विशाल नेहावकर, और आप हैं कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से, जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य, मानवी मौर्य, और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यसब अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्य, तो आप सबकी पसंद पर
1: देखो
0: भैया।
1: भैया है का गर्मी को समय है और गर्मी के समय में इन लोगों ने ऐसी फरमाइश करके भेजी है हमारे लिए, बोल है धनिया की चटनी बनाई। भैया देखो
0: ओहो
1: गर्मी के समय में लोग धनिया और पुदीना की चटनी तो बना के खूब खाते हैं।
0: हाँ, लेकिन भैया कोई समस्या ऐसी हो जाती है कि परिवार में कोई खानों ना चाहते हैं, जैसे घर में सास हैं, ननद हैं, या अरे साहब हमें तो सही ना लग रही है, तो ये एक लोकगीत है जाके माध्यम से अपने भैया बहनों को करा दे रहे हैं मनोरंजन, जिसको सुर दो है दिशा सक्सेना ने।

0: धनिया की चटनी बनाई सखी सास उलझी ना खाए रे। हमने कही ना बात भैया कि कोई ना कोई परिवार में ऐसे हो जाता है कि कुछ ही पसंद ना आता, तो भैया अब जैसे हम सासुल ना खाए नहीं चटनी।
1: देखो भैया, जो छोटी मोटी बातें तो घर घर घर में लगी हैं, कोई बात ना है, हम अपने भैया को करवाते हैं एक प्यारे से लोकगीत के साथ में और मनोरंजन।
0: कौन सा लोकगीत है भैया, कौन सा
1: बोल
0: सुना रहे?
1: है कोई मांगे कढ़ैया ना दे, और स्वर है बीना सक्सेना को।
0: यानी हमारो मन हलुआ को।
1: जी

0: कोई मांगे कढ़ैया न दे हमारो मन हलुआ को। और भैया हलुआ को मन तो आपों को लग रही है हीरो, लेकिन घड़ी घड़ी देखो।
1: बिल्कुल कृष्णा भैया, आप समझ आते ना है जो कि अपने भैया लोगों से और की बातचीत करें,
0: लेकिन इसी वादे के साथ कि नई नई जानकारी के बीच आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने भैया कृष्ण पाल
1: और अपने भैया राकेश शर्मा को दो अनुमति। भैया बहनों
0: राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम ग्राम जगत। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। और श्रोताओं, आइए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनते हैं। अशफाक पुत्र मुंशी बख्श निवासी ग्राम डहिया थाना भोजीपुरा जिला बरेली से सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री खुशबू दिनांक 18 अप्रैल 2026 को अपने निवास स्थान से गुमशुदा है। इनकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, कद 5 फुट, रंग गेहुआ, दोहरा मजबूत जिस्म, आंखों का रंग काला, बालों का रंग काला, चेहरा गोल। ये गुलाबी रंग का सूट और सलवार पहने हुए हैं। जिस किसी को इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो, वो कृपया इस पते पर सूचित करें। गुमशुदा सेल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद बरेली उत्तर प्रदेश।

0: श्रोताओं, अब एक अन्य खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। संतोष तिवारी पुत्र सत्यदेव तिवारी निवासी रामचंद्रपुरम कॉलोनी करगैना चौकी बरेली से सूचित करते हैं। उनकी पुत्री मुस्कान दिनांक 17 मार्च 2026 से अपने निवास स्थान से गुमशुदा है। इनकी उम्र करीब 24 वर्ष है। कद 5 फुट 3 इंच, चेहरा गोल रंग हुआ, इनके चेहरे पर तिल का निशान है। जिस किसी को इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो कृपया इस पते पर सूचित करें। गुमशुदा सेल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद बरेली उत्तर प्रदेश। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: श्रोताओ, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 FM पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। वहीं बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 29 मई से लू से राहत की संभावना जताई है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने 29 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी यूपी में आंधी तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
5: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट

0: करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: सार्थक पीडीएस योजना का उद्देश्य एआई, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास एसआईआर कराने का अधिकार है।
2: देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है एसआईआर कराने का, उस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें संचालित करने की तैयारी की है। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
3: 15 जून से जेएर एयरपोर्ट से फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही कुछ रूटों पर ई बसों का चलना शुरू हो जाएगा। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम 30 रुपए होगा। नोएडा विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि इसी सप्ताह यूपी रोडवेज निगम से एमओयू की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले 100 ई बसें चलाने की तैयारी है। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
1: कल मनाए जाने वाले ईद उल अजहा पर्व को लेकर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने त्योहार को सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। त्योहार में हुड़दंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। कई जगहों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की 2023 की धारा 163 लागू की गई है। पुलिस की तरफ से लोगों को ये भी हिदायत दी जा रही है कि खुले में जानवरों की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रों में गश्त करके शासन के आदेशों का पालन कराने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। श्रावस्ती में संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे जिले को 4 सुपर जोन, 12 जोन और 71 सेक्टर में बांट दिया गया है। अयोध्या में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अयोध्या रेंज के DIG सोमेन वर्मा ने बताया कि पर्व को लेकर संबंधित लोगों और समितियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
4: हमारी जो भी संबंधित जनपद हैं, वहाँ पे हर जगह पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है, सेंट्रल पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है, जहाँ पे DM और SP स्वयं रहे हैं। इसके बाद भी हर स्थान पे जहाँ पे कुर्बानी होती है, नमाज अदा होगी, वहाँ पे भी जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट, उसको संवाद के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से सबको बता दिया गया है।
1: वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से अपील की है कि शासन और जिला प्रशासन के आदेशों का पालन करें। लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फिरंग

0: के महले ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है।
1: हर साल की तरह इस साल भी इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी जाहिर सी बात है की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो लिया जाए, ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए, और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं मकामात पे की जाए जो कि जहां पर की पहले से इजाजत है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ही शाम के 7:31 हो रहे हैं और आइए सुनते हैं रेडियो हेल्पलाइन।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: रोहेलखंड का आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली।
4: मानसिक तनाव, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, सोचते सोचते खो जाना, याददाश्त की कमी, परेशान रहना, रोज के कार्य करने में असक्षमता, मेंटल ट्रॉमा जैसी किसी भी समस्या में परामर्श एवं सुझाव करें गंगाशील अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता से।
5: कैंसर के इलाज का अति आधुनिक अस्पताल,
6: गुर्दे और पेशाब संबंधी बीमारियों के इलाज की सभी सुविधाएं,
7: महिलाओं के बांझपन और जठरानी की सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा,
6: स्किन अथवा त्वचा के रोगियों का संपूर्ण इलाज,
7: 24 घंटे इमरजेंसी सेवा,
6: आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली। इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 8273254444।
8: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूँ मुकेश कुमार पांडे और मेरे साथ स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद है बरेली के गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम मोहन झा साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
9: धन्यवाद पांडे जी और धन्यवाद बरेली आकाशवाणी।
8: सर, हमारी बातचीत का विषय है डायलिसिस। हालांकि इस बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं, कुछ ऐसी वास्तविक बातें हैं जो हमारे श्रोताओं तक पहुंचना जरूरी है, आप भी ये चाहते हैं। आज हम डायलिसिस के बारे में बात करेंगे और भ्रांतियां जो भी हैं उनको जानेंगे, जो वास्तविकता है वो अपने श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास होगा और इसके साथ ही श्रोताओं की जो समस्याएं आएंगी फोन लाइन के माध्यम से उनके समाधान भी आपसे जानेंगे। सबसे पहले तो यही डॉक्टर साहब कि डायलिसिस आखिर है क्या, क्या होता है?
9: पंडित जी देखिए, सबसे पहले तो मैं टॉपिक पर जाने से पहले थोड़ा संक्षिप्त में अपने बारे में बताना चाहूंगा ताकि वो ये पता चल सके कि वो किनको सुन रहे हैं और किनसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, इससे ऑथेंटिसिटी भी बिल्कुल कन्फर्म होती है। तो मैं डॉक्टर प्रेम मोहन झा हूं और मैं MBBS MD DRNB हूँ, किडनी की बीमारियों का सुपर स्पेशलिस्ट हूँ और गंगाशील अस्पताल गंगाचरण अस्पताल दोनों में मैं गुर्दा रोग विभाग को देखता हूँ।
8: दोनों जगह आप सेवाएं दे रहे हैं
9: जी।
8: डॉक्टर साहब, आपने जो अपने डिग्री के विषय में बताया, क्या विशेष डिग्री होती है ये DNB?
9: MD मेडिसिन तो एक जनरल फिजिशियन होते हैं
8: जी,
9: वो मोटा मोटा सारी चीजें देखते हैं
8: जी बिल्कुल।
9: और उसके बाद आता है सुपर स्पेशलाइजेशन, यानी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में हाईएस्ट जो डिग्री होती है वो ये होती है। जैसे किडनी के लिए DNB या DM नेफ्रोलॉजी होती है और आज से 3 साल पहले मैंने वो डिग्री पूरी कर ली थी और कुल मिलाकर

0: जो मेरा अनुभव है वो 7 से 8 साल का है गुर्दारों के फील्ड में। अब हम टॉपिक की ओर चलते हैं।
1: हमारा आज का विषय डायलिसिस है, भ्रांतियां और जो वास्तविकता है उसके बारे में जानने की अभिलाषा है, इच्छा है डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले तो डायलिसिस के बारे में बताइए, गुर्दा और डायलिसिस का आपस में क्या संबंध?
0: आपने सही सवाल पूछा, दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो डायलिसिस को समझने से पहले हमें गुर्दों के बारे में समझना पड़ेगा।
1: जी,
0: हमारे गुर्दे शरीर में 24 घंटे हर पल हर सेकेंड काम करते हैं और बेसिकली ये सिर्फ एक काम नहीं करते, ये बहुत सारे काम करते हैं, जिनमें से एक काम होता है खून की सफाई।
1: अच्छा,
0: जैसे कि शरीर में जो हम खाना खाते हैं, जो डाइजेशन होता है, उसमें यूरिया क्रिएटिनिन एज अ वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, तो उसको शरीर से निकालना है। इसके अलावा शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करना है। जैसे आप पानी कम पीते हैं तो पेशाब कम बनता है, पानी ज्यादा पीते हैं तो पेशाब ज्यादा आता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है और कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं, इनकी मात्रा को कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा जो खून बनाने का हार्मोन होता है एरिथ्रोपोएटिन, वो भी किडनी से निकलता है।
1: अच्छा।
0: इसके अलावा जो विटामिन डी बनाने का हार्मोन होता है वो भी किडनी से निकलता है।
1: इतना महत्वपूर्ण काम है किडनी का?
0: किडनी हमारी इतना महत्वपूर्ण काम करती है और ये हमें पता नहीं होता, हमारे अंदर ये काम हर समय किडनी कर रही होती है। जब किडनी किसी वजह से डैमेज हो जाती है, अचानक से डैमेज हुई हो चाहे धीरे धीरे डैमेज हुई हो, तो कई बार डायलिसिस की जरूरत पड़ जाती है। तो डायलिसिस वही काम टेम्परेरी बेसिस पे करती है,
1: यानी वो शरीर के बाहर मशीन के द्वारा किया जाता है जो किडनी काम कर रही है।
0: जी,
1: लेकिन डॉक्टर साहब आपने कहा कि किडनी सिर्फ पेशाब को छानने का काम नहीं करता बल्कि कई हार्मोन बनते हैं, क्या ये सब भी संभव होता है डायलिसिस में बाहर की किसी मशीन के द्वारा हो पाना?
0: डायलिसिस से हार्मोन नहीं बन सकते
1: जी,
0: इसलिए जिन मरीजों में डायलिसिस की जरूरत पड़ती है उनमें साथ में और भी दवाइयां दी जाती हैं।
1: अच्छा,
0: जो नेचुरल किडनीज हमारी होती हैं वो नेचर के द्वारा बनाई हुई है, इसलिए वो बेस्ट होती हैं। ठीक है, तो उनका कुछ काम डायलिसिस के द्वारा, कुछ काम दवाइयों के द्वारा होता है। तो इसीलिए डायलिसिस को एक जीवन रक्षक प्रक्रिया बोला जाता है, लाइफ सेविंग प्रोसेस बोला जाता है डायलिसिस को।
1: जी, जब इतनी बात हो रही है तो डॉक्टर साहब ये भी आपसे जरूर जानना चाहेंगे, किडनी चूंकि दो होती है, कई लोगों में ये भी सुना है एक किडनी होती, तो दो के पीछे क्या उद्देश्य है? प्रकृति क्या एक संदेश या मैसेज देना चाहती है? क्या दोनों किडनी एक साथ काम करती है या फिर एक कुछ समय काम करती है दूसरी उसके बाद काम करती है? क्या व्यवस्था होती है शरीर की?
0: जी, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे दिन में एक किडनी काम करती है रात में दूसरी किडनी काम करती है, ऐसा नहीं होता है। दोनों किडनी हर समय काम कर रही होती है और नॉन स्टॉप काम कर रही होती है, बिना किसी आराम के काम कर रही होती है। जिन लोगों में पैदाइशी एक किडनी होती है उनमें वो एक किडनी के सारे जीवन नॉर्मल कट जाता है, जिन लोगों में किसी वजह से एक किडनी निकालनी पड़ती है और दूसरी किडनी अगर सही है तो उनमें भी जीवन नॉर्मल चल जाता है, जिनमें दोनों किडनी ठीक है उनमें भी जीवन नॉर्मल चल जाता है।
1: यानी किडनी का जो काम है वो आपने बता दिया है, किस तरह काम करती है ये जिज्ञासा भी हमारे श्रोताओं की पूरी हुई। अब डायलिसिस के विषय में बात हो जाए सर, क्या होती है, कब करनी पड़ती है?
0: देखिए, डायलिसिस में पहले तो कब करनी है ये जानना चाहिए। तो इसके दो तरह के इंडिकेशंस होते हैं, एक क्लिनिकल इंडिकेशन, एक बायोकेमिकल इंडिकेशन। बायोकेमिकल इंडिकेशन वो होते हैं जिनमें यूरिया क्रिएटिनिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई
1: जी,
0: या सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा कम या ज्यादा हो गई, या कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, या आप कह सकते हैं कि शरीर में एसिडिटी की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, तो ये बायोकेमिकल इंडिकेटर्स हैं। क्लिनिकल इंडिकेटर्स में आते हैं कि किसी किडनी पेशेंट को दौरे पड़ने लग जाएं यूरिया क्रिएटिनिन ज्यादा बढ़ने की वजह से, जिसको यूरिमिया या यूरिमिक सिम्टम्स बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, या सांस फूलने लग जाए, पेशाब आना बंद हो जाए, भूख लगना बंद हो जाए
1: जी,
0: नींद आना बंद हो जाए, खून की बहुत ज्यादा कमी होने लग जाए, तो ये सारी वजह होती हैं जिनमें हम डायलिसिस की जरूरत पड़ती है।
1: अच्छा,
0: तो डायलिसिस दो तरह की होती है, एक खून वाली डायलिसिस और एक पानी वाली डायलिसिस।
1: अच्छा,
0: तो ज्यादातर लोगों को खून वाली डायलिसिस के बारे में पता होता है, जिसको गुर्दों की धुलाई बोलते हैं,
1: हीमोडायलिसिस भी इसी को कहते
0: हैं। जी, हीमोडायलिसिस इसी को बोलते हैं। इसमें एक फिशुला या कैथेटर के थ्रू पेशेंट के शरीर से एक ट्यूब से ब्लड मशीन के थ्रू पास होता है फिल्टर से, और दूसरे ट्यूब के थ्रू वो साफ होके वापस चला जाता है। तो मशीन का काम सिर्फ ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है और इसमें ब्लड लॉस ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं होता है, बल्कि खून को साफ करके वापस लौटा दिया जाता है। दूसरी जो पानी वाली डायलिसिस होती है उसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: जिसमें कि पेट में एक सर्टेन फ्लूइड होता है जिसको पेरिटोनियल फ्लूइड बोलते हैं, जो अलग अलग कंसंट्रेशन का आता है, वो पेट में डाल दिया जाता है और कुछ अंतराल के बाद उसको निकाल लिया जाता है, ये पेट वाली डायलिसिस होती
1: है। डॉक्टर साहब, किन लोगों में हीमोडायलिसिस या खून वाली डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, वो किस तरह के मरीज?
0: ओवरऑल ये

0: ये पेशेंट की चॉइस पर भी डिपेंड करता है
1: जी।
0: एक्यूट कंडीशंस में या जिनमें अचानक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनमें हीमोडायलिसिस हम प्रेफर करते हैं। और जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है तो, और वो सुटेबल कैंडिडेट है, विलिंग है, तो पेरिटोनियल डायलिसिस उसको सजेस्ट कर दी जाती है। पेरिटोनियल डायलिसिस का ये एडवांटेज होता है कि पेशेंट अपना घर पे कर सकता है।
1: अच्छा।
0: दिन में, रात में, सोते समय भी होती रहती है। पेशेंट कोई ऑफिस गोइंग है तो आराम से ऑफिस जा सकते हैं, या आप बाहर कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो पेरिटोनियल डायलिसिस के साथ आप आराम से बाहर घूमने भी जा सकते हैं। हीमोडायलिसिस में ये लिमिटेशन होती है कि आपको हफ्ते में 3 बार या 2 बार जैसा रिकमेंड किया है किडनी स्पेशलिस्ट ने, वैसे आपको आके 4 घंटे तो एटलीस्ट लेट नहीं होता है।
1: अच्छा।
0: जैसे सपोज हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के लिए बोला गया है, तो हफ्ते में 3 बार तो आपको आना ही है, तो 4 घंटे तो डायलिसिस चलेगी, प्लस आपका आने का टाइम, जाने का टाइम, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, पेरिटोनियल डायलिसिस में वाइटल्स ज्यादा अच्छे से मेंटेन रहते हैं।
1: अच्छा।
0: और हीमोडायलिसिस में थोड़ा फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं बीपी में जी।
1: अच्छा।
0: लेकिन हीमोडायलिसिस का जो रेस्पॉन्स होता है वो क्विक होता है और ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन जिन पेशेंट में यूरिन आना बंद हो गया, यानी रेजिडुअल रीनल फंक्शन खत्म हो गया, उन पेशेंट्स में फिर पेरिटोनियल डायलिसिस ज्यादा सुटेबल नहीं रहती है, तो उनको हीमोडायलिसिस पे स्विच करना पड़ता है। या जो कोई पेशेंट बहुत ओवरवेट हैं, या जिनकी पेट की सर्जरी हो चुकी है, या पेरिटोनियल डायलिसिस की वजह से पेट में फंगल इन्फेक्शन हो गया, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हो गया, या कई बार कैथेटर डल चुका है और पेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो चुकी है, तो वो सारे पेशेंट सुटेबल होते हैं हीमोडायलिसिस के लिए।
1: अच्छा। अब ये बताइएगा डॉक्टर साहब, क्या परिस्थितियां होती हैं जबकि डायलिसिस या फिर सीधे से हीमोडायलिसिस की बात हम करना चाहेंगे, हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ती है?
0: ये तो हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं, जैसे मैंने बताया कि क्लिनिकल और बायोकेमिकल दो तरह के इंडिकेशंस होते हैं।
1: अच्छा।
0: जिनमें
1: क्लिनिकल इंडिकेशंस,
0: क्लिनिकल इंडिकेशंस में जैसे सूजन आना, सांस फूलना, पेशाब न आना और दौरे पड़ना, ब्लीडिंग होना
1: जी,
0: ये सारे क्लिनिकल इंडिकेशंस होते हैं।
1: अच्छा।
0: और जो इनमें डायलिसिस की अगर सलाह दी गई है तो करा लेना चाहिए, क्योंकि डायलिसिस आपकी जान बचाती है।
1: अच्छा। डॉक्टर साहब, जैसे डायबिटीज का मर्ज हो गया या फिर दिल के मरीज हो गए और इसी तरह की अन्य बीमारियां भी हैं, कैंसर है, किसी को थायराइड की बीमारी है, तो क्या डायलिसिस के साथ ऐसा है कि कोई खास बीमारी अगर किसी व्यक्ति को है तो उस व्यक्ति को ज्यादा संभावना है डायलिसिस की, या ये एक अलग तरह की विधा है, अलग तरह की समस्या हो सकती है?
0: देखिए, डायलिसिस का रिस्क सीधे किडनी की बीमारी के रिस्क से जुड़ा होता है।
1: अच्छा।
0: और किडनी की बीमारी का रिस्क, जो आपने बीमारियां बताई कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, कैंसर है, या किडनी में पथरी है, या बहुत ज्यादा कोई लंबे टाइम से दर्द की गोलियां खा रहा है, या बहुत ओवरवेट है, अनहेल्दी खाना खाते हैं, बीपी के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, तो उनमें किडनी की बीमारी होने का रिस्क ज्यादा होता है। और किडनी की बीमारी होने का रिस्क ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली एंड स्टेज किडनी डिजीज होने का रिस्क बढ़ेगा और डायलिसिस के चांसेस बढ़ेंगे इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पॉपुलेशन।
1: अगर किसी व्यक्ति को परिस्थितियां ये कहती हैं कि उसे डायलिसिस की जरूरत है, कई बार लोग टालते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए नए प्रयोग करते रहते हैं खुद पर, उनका ये मानना होता है कि हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। डायलिसिस जैसी प्रक्रिया जो आप बता रहे हैं बड़ी साधारण हो गई है आज के दौर में, और अब दो तरीके आपने बता भी दिए हैं, अगर कोई व्यक्ति लगातार टाल रहा है उसे डायलिसिस की जरूरत है तो वो किस ओर जा रहा है?
0: जैसे मैं बता रहा हूँ, आज मेरे पास 2 पेशेंट आए थे
1: जी,
0: मतलब कई सारे पेशेंट थे, इनमें 2 स्पेशली मेंशन करने लायक पेशेंट थे
1: जी।
0: एक पेशेंट था जिसको मैंने 6 महीने पहले देखा था, और 6 महीने पहले उसका, 24 साल का लड़का था, 6 महीने पहले उसका क्रिएटिनिन 4 के आसपास चल रहा था, हीमोग्लोबिन उसका 7 पॉइंट था, तो मैंने उसको ब्लड चढ़ाने के लिए और प्रॉपर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए और सारी दवाइयों के लिए, सब वैक्सीनेशन के लिए सारा समझाया। उस दिन वो आया, वो रेस्पॉन्स भी आया, लेकिन उसके बाद जैसा कि आमतौर पे होता है कि लोगों के रिश्तेदार, मिलने वाले, मोहल्ले पड़ोस वाले, ये सारी चीजें कभी कभी भटका देती हैं
1: जी।
0: तो उनके साथ भी यही हुआ और वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यूज करने लग गए। हालांकि देखिये, मैं किसी भी पैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ, है ना, लेकिन जो उनका रेस्पॉन्स था, वो लड़का 3 महीने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लेने के बाद, उसको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के पास वो इसलिए गया क्योंकि उसको ये वादा किया गया कि हम आपकी किडनी ठीक कर देंगे और हम आपको डायलिसिस की नौबत नहीं आने देंगे। एक लड़का जिसका वेट 64 केजी था
1: जी,
0: वो लड़का 30 केजी वेट के साथ आया, इतना सीवियर वेट लॉस हो गया, उसका सारा खाना पीना बंद करवा दिया गया था, और मेरे पास सीजर्स यानी

0: मिर्गी के दौरे के साथ आए। हालत इतनी खराब थी, बीपी 200 के ऊपर, और फिर हमने उसको वेंटिलेटर पे लिया, डायलिसिस करी कई सारी, और उसके बाद वो लड़का डिस्चार्ज होके गया,
1: नॉर्मल हो पाया।
0: एक वो लड़का था जो आज आया, और उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि शायद अगर वो रेगुलर दिखाता रहता तो उसको इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरे जो पेशेंट हैं वो 28 साल का लड़का था जिसको उल्टी दस्त हुए, और कहीं बाहर ट्रीटमेंट वो करा रहा था और उसके गुर्दे एकदम बैठ के डिहाइड्रेशन की वजह से, तो 3 दिन से उसको पेशाब एक बूंद भी नहीं आया था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उल्टियां हो रही थी, शरीर पे सूजन आ गई थी। तो वो मेरे पास इमरजेंसी में आया था, हमने भर्ती किया, जांचें करी उसकी, तो ये सारे इंडिकेशन थे डायलिसिस के लिए। तो उसका क्रिएटिनिन था 9
1: जी,
0: और हीमोग्लोबिन रह गया था उसका 8। तो हमने उनको बोला, उनके

0: वो 28 साल का लड़का था जिसको उल्टी दस्त हुए और कहीं बाहर ट्रीटमेंट वो करा रहा था और उसके गुर्दे एकदम बैठ के डिहाइड्रेशन की वजह से
1: जी।
0: तो 3 दिन से उसको पेशाब एक बूंद भी नहीं आया था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उल्टियां हो रही थी, शरीर पे सूजन आ गई थी। तो वो मेरे पास इमरजेंसी में आया था, हमने भर्ती किया, जांचें करी उसकी, तो ये सारे इंडिकेशन थे डायलिसिस के लिए। तो उसका क्रिएटिनिन था 9
1: जी
0: और हीमोग्लोबिन रह गया था उसका 8। तो हमने उनको बोला, उनके घर वालों को, कि डायलिसिस करनी पड़ेगी। तो जैसा कि सबके मन में या समाज में ये भ्रांति है कि एक बार डायलिसिस शुरू हो गई तो जिंदगी भर चलेगी, तो मैं श्रोताओं को बोलना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार डायलिसिस शुरू हो गई तो जिंदगी भर चलेगी। ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है, न ही हर मरीज पर लागू होती है। तो जैसे कि ये बच्चा था, जैसे ही मैंने इसको डायलिसिस के लिए बोला, इसके घर वालों ने साफ मना कर दिया, हम डायलिसिस नहीं कराएंगे। हमारे यहाँ पे एक पेशेंट की डायलिसिस हुई थी और वो फिर डायलिसिस जिंदगी भर से हो रही है उसकी। फिर मैंने उनको काफी समझाया, बहुत सारे लोग भी आए, कई घंटे डिस्कशन भी हुआ, लेकिन फाइनली वो नहीं माने। उन्होंने कहा आप छुट्टी कर दो, हम दिल्ली ले जाएंगे। फिर किसी फैमिली में समझदार आदमी ने डिसीजन लिया कि नहीं, यहीं रुकते हैं, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो मानते हैं। डायलिसिस हुई उस बच्चे की, 4-5 डायलिसिस हुई और उसके बाद धीरे धीरे उसका किडनी रिकवर होने लग गई। हमने उसका इन्फेक्शन ठीक किया, हाइड्रेशन मेंटेन किया, इसको जिसको बिल्कुल यूरिन नहीं आ रहा था उसको यूरिन आने लग गया और 15 दिन के अंदर उसकी डायलिसिस बंद हो गई। अब वो बच्चा सिर्फ 1 साल में एक बार रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए आता है, उसका हीमोग्लोबिन 14-14.5 और क्रिएटिनिन 0.8-0.9 ऐसे चल रहा है। उसके घर वालों को तब एहसास हुआ कि शायद अगर उस दिन नहीं डायलिसिस कराते तो शायद वो बच्चा बचता नहीं।
1: बिल्कुल, वास्तविकता ये है
0: जी।
1: और भ्रांतियां मन में क्या क्या लोग पाले रहते हैं आपने
0: तो बताएं। दूसरा, जो डायलिसिस एक बार शुरू होकर जिंदगी भर चलती है वो उन लोगों पे लागू होती है जिनकी किडनी धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। जब किडनी बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है तो उनमें रिकवरी के चांसेस नहीं होते, लेकिन जब किडनी अचानक से किसी वजह से बैठती है, इसको AKI बोलते हैं, तो उसमें 90% मामलों में यूजली 1 से 1.5 महीने में किडनी रिकवर कर जाती है और डायलिसिस की अगर जरूरत पड़ रही है तो वो बंद हो जाती है। लेकिन जो क्रॉनिक किडनी डिजीज या एंड स्टेज किडनी डिजीज होती है उसमें या तो डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट, दो ही रास्ते होते हैं।
1: सच्चाई क्या है और क्या मिथक पाले हैं हमारे मन मस्तिष्क में पलते रहते हैं, किन चीजों को हम फॉलो करते हैं, ये बहुत स्पष्ट है। डायलिसिस कोई ऐसी शर्त नहीं है, जो एक बार अगर किसी व्यक्ति की हो गई उसे जीवन पर्यंत डायलिसिस पर ही रहना है। तरीका आपने बताई दिया डॉक्टर साहब। आप क्रिएटिनिन के बारे में बार बार बात, क्रिएटिनिन आखिर क्या होता है और इस जांच से क्या स्पष्ट होता है, क्या तय कर पाते हैं?
0: क्रिएटिनिन मसल प्रोटीन होती है, जब हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं तो वो बॉडी में एसिमिलेट होता है, मसल्स बनती हैं, नई नई मसल बनती हैं, पुरानी मसल टूट रही होती हैं, ये लगातार चल रहा होता है बॉडी में। तो जो पुरानी मसल्स के टूटने से जो प्रोटीन रिलीज होती है वो होती है क्रिएटिन, जो बॉडी में डाइजेस्ट होकर क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होती है और जो किडनी के द्वारा यूरिन में पास हो जाती है।
1: अच्छा।
0: किसी वजह से अगर किडनी डैमेज होती है तो वो क्रिएटिनिन किडनी फिल्टर नहीं करती है और वो खून में इकट्ठा होने लगता है।
1: अच्छा।
0: तो क्रिएटिनिन के लेवल से हमें ये पता चलता है कि किडनी का GFR क्या है या कह लीजिए कितने % किडनी काम कर रही है
1: जी। एक डॉक्टर साहब भ्रांति समाज में ये भी है, अगर किसी की हीमोडायलिसिस या खून वाली डायलिसिस हो रही है तो उस व्यक्ति का हार्ट या दिल बहुत कमजोर हो जाता है, सच्चाई क्या है?
0: देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स पे जो डायलिसिस है एक्चुअली वो टेक्नीशियंस के भरोसे चल रही होती है
1: जी,
0: लेकिन जिन भी सेंटर्स पे नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर में या गुर्दा रोग विशेषज्ञ के सुपरविजन में डायलिसिस चल रही है और जहां पेशेंट रेगुलर एडवाइस फॉलो कर रहे हैं
1: जी,
0: डाइट कंट्रोल करके रखे हुए हैं, BP कंट्रोल है, शुगर कंट्रोल है, तो उन पेशेंट में हार्ट में दिक्कत नहीं आती है। जिन पेशेंट के BP कंट्रोल नहीं रहते या शरीर में पानी की मात्रा बढ़ी हुई है, परहेज नहीं कर रहे हैं
1: जी,
0: तो इन लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें डायलिसिस की गलती नहीं है, इसमें अगर हम BP कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम खाने पीने में परहेज नहीं करेंगे, टाइम पे दवाइयां नहीं लेंगे, टाइम पे दिखाएंगे नहीं, तो ये कारण होते हैं एक्चुअली इसके हार्ट में दिक्कत आने के। दूसरा, एक और सबसे बड़ी जो भ्रांति है लोगों में वो ये है कि डायलिसिस के हर मरीज को या हर डायलिसिस में खून चढ़ाना पड़ता है
1: जी।
0: नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम रेगुलर डायलिसिस करा रहे हैं, रेगुलर आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम ये सब ले रहे हैं और एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन ले रहे हैं तो खून की कमी नहीं होती है। जो लोग अपने आयरन प्रोफाइल और विटामिन B12, फोलिक एसिड, इनकी

0: मॉनिटरिंग नहीं करते या जो एडिक्वेट डायलिसिस नहीं कराते, उन लोगों में धीरे धीरे खून की कमी होने लगती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताइएगा, क्योंकि कई लोगों का कहना यह भी है कि जिन लोगों की डायलिसिस होती है उन्हें पानी पीने की मनाही होती है या बहुत कम पानी पीने को दिया जाता
0: है। ये देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमें पेशाब कितना है। आमतौर पे ऐसे तो सीजन के हिसाब से बदलता है। एक होता है इनसेंसिबल वाटर लॉस, है ना, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन शरीर से पानी का लॉस होता रहता है। जैसे सांस में भी पानी होता है, मॉइस्चर होती है, स्किन से भी स्वेटिंग होती है, तो गर्मियों में स्वेटिंग ज्यादा होती है तो गर्मियों में इनसेंसिबल लॉस ज्यादा होता है, सांस के साथ लॉस होता है। ऐसे सर्दियों में भी एयर ड्राई होती है, हमारी सांसों से मॉइस्चर लॉस होता है, स्किन से होता है, तो ये इनसेंसिबल लॉस होता है, जो आमतौर पर 400 से 600 ml पर 24 आवर माना जाता है। जितना यूरिन आ रहा है उसमें करीब आधा लीटर और एड करके आप पानी ले सकते हो।
1: अच्छा।
0: अगर किसी पेशेंट को 2 लीटर यूरिन डेली आ रहा है तो वो 2.5 लीटर पानी पी सकता है, लेकिन जिस पेशेंट को यूरिन ही 24 घंटे में 200 ml आ रहा है तो वो 2.5 लीटर पानी नहीं पी सकता।
1: अच्छा।
0: क्योंकि बाकी का सारा पानी उसके शरीर में इकट्ठा होगा, सांस फूलेगी, सूजन आएगी, ठीक है। तो जिस मरीज को 100 ml यूरिन आ रहा है वो 500 ml पानी ले सकता है 24 घंटे में।
1: अच्छा।
0: तो ये इस बात पे डिपेंड करता है।
1: पानी की बात होगी डॉक्टर साहब, इसके अलावा और भी कई तरह की ऐसी भ्रांतियां होंगी जो आपके पास लेकर के अब हमारे जो श्रोता हैं, या ये कहें कि जो मरीजों के साथ के लोग हैं वो आते होंगे, तरह तरह के सवाल करते होंगे, क्या अनुभव है आपका?
0: अच्छा, एक मुझे याद है, कुछ दिन पहले एक पेशेंट मेरे पास आया था, तो मैंने डायलिसिस के लिए बोला था, लेकिन वो उन्होंने सूजन आ गई थी पूरे शरीर पे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, खून भी कम था, लेकिन उन्होंने क्या किया, किसी की बात सुन के और एक भगोने में नमक का पानी भर के और बच्चे को उसमें खड़ा कर दिया।
1: अच्छा।
0: और 8 घंटे से ज्यादा खड़ा रहा वो बच्चा, और 8 घंटे नमक के पानी में खड़े रहने से उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उसको इमरजेंसी में हमें डायलिसिस के लिए लेना पड़ा। जिस पेशेंट का ओपीडी बेसिस पे डायलिसिस हो सकती थी, आराम से हो सकती थी, उस बच्चे की इमरजेंसी बेसिस पे डायलिसिस करनी, एक तो ये है। दूसरा, मैं सारे डायलिसिस वाले मरीजों से बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों को अचानक की स्थिति में डायलिसिस के लिए बोला गया है, AKI की कंडीशन में बोला गया है, कृपया किसी भी डाउट को लेके अपने डॉक्टर से बात करें, जो क्वालिफाइड है, जो ट्रेंड है किडनी की बीमारियों के इलाज को लेके। मोहल्ला पड़ोस वाले रिश्तेदारों की, दोस्तों की ना सुने, क्योंकि ये लोग ट्रेंड नहीं होते हैं गुर्दे की बीमारियों के इलाज के लिए। और अगर डॉक्टर ने डायलिसिस की जरूरत बताई है तो करा लेनी चाहिए, क्योंकि डायलिसिस जान लेती नहीं है, जान बचाती है। पहली बात। दूसरी बात, जो लोग रेगुलर डायलिसिस पे आ चुके हैं उन लोगों को कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। पहली बात ये कि स्टैंडर्ड जो है वो हफ्ते में 3 या 1 हफ्ते में 12 घंटे डायलिसिस का स्टैंडर्ड होता है। तो एक डायलिसिस आमतौर पर 4 घंटे की होती है, तो 1 हफ्ते में 3 डायलिसिस कराएंगे तब आपका डायलिसिस का टाइम 12 घंटे बनेगा, तो रेगुलर डायलिसिस कराएं। दूसरी बात, अपनी बीपी की, शुगर की, आयरन की, कैल्शियम की,
1: इसकी जांच की
0: रेगुलर जांच कराएं, और जो दवाइयां चल रही हैं वो रेगुलर दवाइयां खाएं। तीसरा, जो खाने पीने का परहेज बताया जाता है, स्पेशली प्रोटीन का इंटेक, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब चीजों का प्रॉपर जो है अपनी सिचुएशन के हिसाब से, वेट के हिसाब से, रिपोर्ट्स के हिसाब से जो है डॉक्टर और डाइटिशियन दोनों से डिस्कस करके डाइट चार्ट बनवाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर पीरियड पे हीमोग्लोबिन, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, एल्बुमिन, वायरल मार्कर, SGOT-PT, यूरिक एसिड, पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल, आयरन प्रोफाइल, ये सारे रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर होने चाहिए। मेरे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं पांडे जी, जो जब अस्पताल आते हैं तो खुद कार चला के आते हैं, और जब अस्पताल में घुसते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये पेशेंट है, और वो पेशेंट पिछले 10 साल से डायलिसिस कराने हैं।
1: अच्छा।
0: आप विश्वास नहीं करेंगे, सूट पहन के आते हैं और बिल्कुल पेशेंट की तरह नहीं लगते, डायलिसिस कराते हैं और खुद गाड़ी चला के चले जाते हैं। तो ये सब उस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे खुद को मेंटेन कर रहे हैं, कैसे एडवाइस फॉलो कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, अपने डॉक्टर पर भरोसा और अपनी स्वयं के बारे में जागरूक होना भी बहुत जरूरी है, चाहे बीमारी कुछ भी हो और प्रक्रिया इलाज की डायलिसिस ही क्यों ना हो। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि अगर गुर्दे में किसी के पथरी हो गई और पथरी के बाद उन्होंने ऑपरेशन कराया तो

0: एनालिसिस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, सच्चाई क्या है?
1: देखिए, इसमें सच्चाई ये है कि अगर किसी को पथरी है तो समय पे ऑपरेशन करा लेना चाहिए। बहुत सारे लोग पथरी के लिए तंत्र मंत्र और ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के भरोसे रहते हैं। हाँ जी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के भरोसे रहते हैं, चूरन काढ़ा ये वो ये सब करते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना किडनी के फंक्शन की मॉनिटरिंग भूल जाते हैं, धीरे धीरे किडनी डैमेज होने लगी है और नतीजा वो किडनी खत्म हो जाती है। जिन भी लोगों को किडनी में पथरी है वो भटके नहीं, एक क्वालिफाइड किडनी स्पेशलिस्ट से मिलें और उसका मेडिकल या सर्जिकल जिस भी तरह का ट्रीटमेंट रिकमेंड किया गया है उसको फॉलो करें। अगर किडनी में बड़ी पथरी है जो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती और सर्जरी की सलाह दी गई है तो जितना जल्दी सर्जरी करा लेंगे उतना जल्दी किडनी बच जाती है और वो डायलिसिस से बच जाते हैं।
0: यानी ये कोई शर्त नहीं है, अगर किडनी में पथरी है और पथरी का ऑपरेशन करा दिया तो डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी?
1: जी,
0: ये भ्रांति है और इस भ्रांति को मन में ना पालें।
1: जी
0: डॉक्टर साहब, चूंकि हम बात कर रहे हैं डायलिसिस की और आप किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, सर ये और बताइएगा, कहते हैं कि जिन लोगों को थायराइड होती है उन्हें भी किडनी खराब होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं और थायराइड के मरीजों को भी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, क्या ये सच है?
1: थायराइड के मरीजों को डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है, डायलिसिस की जरूरत किडनी के मरीजों को पड़ती है।
0: जी,
1: और किडनी की बीमारी का जो रिस्क है वो थायराइड वाले पेशेंट्स में थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि हाइपोथायराइड वाले पेशेंट्स में वेट गेन ज्यादा होता है।
0: जी,
1: तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर टाइम पे दवाई ली जाए, टाइम पे मॉनिटरिंग की जाए, किडनी का रिस्क सेम ही होता है।
0: और क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब, चूंकि बात बड़ी महत्वपूर्ण है, डायलिसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, भ्रांतियां लोगों के मन में अभी भी पता नहीं क्या क्या होगी, जबकि सच्चाई इससे अलग है। आपने बताया कि डायलिसिस जान जोखिम में नहीं डालती, बल्कि डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसी विधा है जिसके माध्यम से जान बचाने की कोशिश होती है और जान बचाई भी जाती है, क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? और
1: देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर किसी पेशेंट को किडनी में दिक्कत है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़े हुए हैं और जो जीएफआर है
0: जी,
1: वो 10 से कम है, पोटेशियम बार बार बढ़ जाता है जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा
0: जी,
1: या शरीर में एसिड का लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा, या सांस फूल रही है, या बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, या यूरिन में ब्लीडिंग है, कोएगुलोपैथी है और फ्लूड ओवरलोड है, या यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से दौरे पड़ने लग गए हैं, तो वो लोग कृपया टाइम बर्बाद करके मरीज की जान को जोखिम में न डालें और समय पे डायलिसिस के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इससे मरीज का जीवन सुरक्षित हो जाता है। किसी भी तरह का कंफ्यूजन होने की स्थिति में ने मोहल्ले पड़ोस वाले या रिश्तेदार या कोई भी ऐसा आदमी जो गुर्दे की बीमारी के इलाज के लिए प्रशिक्षित नहीं है उससे सलाह ना लें।
0: बिल्कुल, एक प्रशिक्षित चिकित्सक से बात करें, जो सुझाया जाए, जो बताया जाए उसके सुझाव को मानते हुए उचित इलाज कराएं। डायलिसिस की बात जहां तक है तो ये मैं समझ सकता हूं डॉक्टर साहब इतनी बातचीत करने के बाद कि डायलिसिस एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है जो जीवन की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अगर डायलिसिस की सलाह या सुझाव दिया जाता है तो अवश्य कराएं, अपना जीवन बचाएं।
1: मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, कर्म करना हमारे हाथ में होता है, फल देना ऊपर वाले के हाथ में होता है। ऐसे ही मरीज की बीमारी की स्थिति, लक्षण और रिपोर्ट के आधार पर अगर डायलिसिस जरूरी है तो करानी चाहिए, बाकी तो जीवन ऊपर वाले के हाथ में होता है। डॉक्टर होने के नाते हम लोग सजेस्ट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, हर पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली जो लाइफ है वो ऊपर वाले के हाथ में होती है, लेकिन कोशिश करना हमारे मरीज के और मरीज के घर वालों के ही हाथ में होता है।
0: कोशिश तो हमेशा करनी चाहिए, प्रयास,
1: कोशिश में पीछे नहीं हटना चाहिए। और मैं श्रोताओं को स्पेशली बोलना चाहूंगा कि गंगाचरण हॉस्पिटल रामपुर गार्डन और गंगाशील हॉस्पिटल डीडीपुरम बरेली दोनों में 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है, और जो हमारे ये दोनों सेंटर हैं ये उन चुनिंदा सेंटर्स में से आते हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए अलग से डायलिसिस मशीन की व्यवस्था है। उनको मतलब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस पॉजिटिव पेशेंट को डायलिसिस के लिए लिया ही नहीं जाता है, हमारे यहाँ उनको लेते भी हैं और उनके लिए प्रॉपर एक अलग सेगमेंट की भी व्यवस्था है, डेडिकेटेड स्टाफ होता है। कोई दिक्कत होने पर जो है आप आके मुझसे मिल सकते हैं
0: जी
1: और बात कर सकते हैं।
0: डॉक्टर प्रेम मोहन झा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को डायलिसिस के बारे में जो भ्रांति

0: हैं उनके विषय में अवगत कराया और जो वास्तविकता है उससे भी अवगत कराया। आपका स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
2: रोहेलखंड का आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली।
3: मानसिक तनाव, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, सोचते सोचते खो जाना, याददाश्त की कमी, परेशान रहना, रोज के कार्य करने में असक्षमता, मेंटल ट्रॉमा जैसी किसी भी समस्या में परामर्श एवं सुझाव करें गंगाशील अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता से।
4: कैंसर के इलाज का अति आधुनिक अस्पताल,
2: गुर्दे और पेशाब संबंधी बीमारियों के इलाज की सभी सुविधाएं,
5: महिलाओं के बांझपन और जठराने की सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा,
2: स्किन अथवा त्वचा के रोगियों का संपूर्ण इलाज,
5: 24 घंटे इमरजेंसी सेवा,
2: आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अस्पताल।
6: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 एफएम पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम रेडियो हेल्पलाइन। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज रहे हैं और अब आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।
7: आलोचक और संपादक डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म जयंती दिवस 27 मई 1894 को छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में जन्म हुआ डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का। उन्हें प्रेम से मास्टर जी और साहित्यिक जगत में साहित्य वाचस्पति भी कहा जाता है। आप राजनांदगांव की प्रसिद्ध हिंदी त्रिवेणी की तीन धाराओं गजानन माधव मुक्तिबोध, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और डॉक्टर बलदेव प्रसाद में से एक माने जाते हैं। बख्शी जी ने निबंध, कहानी, आलोचना विधाओं में महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया। निबंध संग्रह में पंचपात्र, प्रबंध पारिजात, पद्मवन, मकरंद बिंदु और कुछ बिखरे पन्ने, कहानी संग्रह में झलमला और अंजलि, आलोचना और इतिहास में विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य का मध्यकाल और हिंदी का नाट्य साहित्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बख्शी जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य बेहद कुशलता से संभाला। आपके निबंधों में गंभीर विषयों को भी अत्यंत सरल, स्वाभाविक और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने की अद्भुत कला थी। आपके लेखन में भारतीय संस्कृति, मानवतावाद और जीवन के व्यवहारिक पक्षों का सुंदर समन्वय मिलता है। आज के संक में आकाशवाणी के तमाम सुनने वालों की ओर से हिंदी साहित्य के इस महान प्रतिष्ठित निबंधकार, कहानीकार, आलोचक और संपादक डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी को श्रद्धा सुमन अर्पित है। श्रोताओं, आज के संक में आज आपको सुनवाते हैं काव्य पाठ, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं श्री हरगोविंद यादव।
8: सबसे पहले एक गजल पढ़ता हूँ। बदनीति फलती नहीं यारो बताओ क्या करें, तिथि मौत की टलती नहीं यारो बताओ क्या करें, गुजरा जमाना लौट कर आता नहीं भाई मेरे, तीली बुझी जलती नहीं यारो बताओ क्या करें, तेरी मेरी ये जिंदगी कांटों भरी है दोस्तों, ये शाम यूं ढलती नहीं यारो बताओ क्या करें, तिरछी नजर करती भैया नाराज वो हमसे बहुत, सच बात ये खलती नहीं यारो बताओ क्या करें, भगवान के दरबार में छोटा बड़ा कोई नहीं, रिश्वत वहाँ चलती नहीं यारो बताओ क्या करें। दूसरी गजल है, दिल का काम निगाहें करती, काम दर्द का आहें करती, दिल का काम निगाहें करती, काम दर्द का आहें करती, धीरे धीरे चलते रहना मंजिल पूरी राहें करती, मतलब की है सारी दुनिया काम बुरा अफवाहें करती, चलती रहती दिल की धड़कन, चलती रहती दिल की धड़कन, काम भला तो बाहें करती, सबकी चाहत अपनी अपनी, भ्रम पैदा गुमराहें करती, हम अच्छे आदमी हैं शैतान नहीं हैं। अगली गजल, ख्वाबों में अक्सर आती हो अपना ही राग सुनाती हो, लगती हो परियों की रानी साथ सदा खुशियां लाती हो, मरकर भी जिंदा रहते हैं जब अपना प्यार लुटाती हो, यूं मीठे ख्वाब दिखाकर तुम रातों की नींद उड़ाती हो, यूं मीठे ख्वाब दिखाकर तुम रातों की नींद उड़ाती हो, नफरत है झूठे वादों से तुम लाली पाप दिखाती हो, ख्वाबों में जीना मरना है चंचल मन को तड़फाती होगी, पूरी होगी चाहत अब तो तुम रब से खैर मनाती हो। अगली एक कविता पढ़ता हूँ जो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में है। जमानी दीवानी दिखाती नजारा, सभी को सुहाती न आती दोबारा, सदा ही सुहाती स्वयं की।

0: बढ़ाई, ठगों को लुभाती पराई कमाई, किसी को तुम्हारी उदासी नभाती, अकेले अकेले न रातें सुहाती, जहां की बुराई दिलों से हटाओ, जिंदगी हमेशा खुशी से बिताओ। गरीबी गुलामी कराती रही है, सगा है न कोई बताती रही है, उजाला अंधेरा भगाता रहा है, विधाता ठगी से बचाता रहा है। कभी भी किसी को न बैरी बनाओ, अभागे दुखी को गले से लगाओ, हमेशा निराशा दिलों से हटाओ, हितैषी जनों से न दूरी बनाओ। अब मैं कुछ दोहे पढ़ता हूँ। कटुता बढ़ती जा रही आपस में दिन रात, मानो दानो हो रहा कड़वी है ये बात, प्रभु से मेरी प्रार्थना मिले सभी को प्यार, आपस की कटुता मिटे कभी न हो तकरार। रोम रोम में जहर है चतुराई पर नाज, फर्जी हमदर्दी करें वो हैं धोखेबाज। घृणा किसी से ना करें मन में सुखद विचार, पास कष्ट न आएगा सदा रहो खुशियार। गुरुओं का आदर करो पाओ सच्चा ज्ञान, कर्म सदा अच्छे करो विधि का यही विधान। भले आचरण से बने अच्छा व्यक्ति महान, रहन सहन में शिष्टता और बढ़ाए मान। अहंकार की देन है चिंता घृणा विरोध, कोसों दूर खुशी रहे सुख में है अवरोध। चोर कभी धनवान न होगा, दुष्टों का सम्मान न होगा, डिजिटल का आधुनिक जमाना छल करना आसान न होगा, अपने दुर्गुण दूर भगाओ अब यूं ही व्यवधान होगा। सच की जीत हमेशा होती, झूठे का गुणगान होगा, बच के रहना गद्दारों से तुम्हें कभी नुकसान न होगा। नशा मुक्त अभियान चलाओ बिन संकल्प निदान न होगा, यारों जंगल को मत काटो धरती का अपमान होगा। दोहे पढ़ता हूँ। पैसा ही इंसान है बाकी सब बेकार, नाते रिश्ते खत्म है मतलब के सब यार। अंदर से कुछ और है बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और है बाहर से कुछ और, गिरगिट जैसे लोग हैं आया कैसा दौर खाया कैसा दौर। एक मुक्तक पढ़ता हूँ। खेतों में हरियाली हो कृषकों में खुशहाली हो, धन्य हमारी धरती है घर घर रोज दिवाली हो। तिरंगा रस का मुक्तक, ये मेहंदी महावर तुम्हारे लिए, मौन संकेत केवल हमारे लिए, दो दिलों का मिलन है जरूरी प्रिय, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। मोहब्बत की भाषा पढ़े धीरे धीरे, जवानी की रंगत चढ़े धीरे धीरे, संबंध खराब हो जाते हैं उधारी में, ये बात है सबकी जानकारी में, बगैर लेन देन काम चलता नहीं, हम जी रहे उनकी बेकरारी में। अगला मुक्तक, देखो वनों में कैसा सुंदर वातावरण है, देखो वनों में कैसा सुंदर वातावरण है, हमारी धरती का कैसा सुंदर आवरण है, पृथ्वी के हम सहभागी हैं, इसी तरह से जीवन का हम सौंदर्यशाली हैं।
1: अभी अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत कर रहे थे श्री हरगोविंद यादव। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: मीडियम वेव 401

6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर अपने रेडियो सेट पे, न्यूज ऑन AIR ऐप से अपने स्मार्टफोन और DTH पर आप हमारा ये प्रसारण सुन रहे हैं। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:10 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं बेला सुलाखे के स्वर में गाए भजन।

इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना बेला सुलाखे के स्वर में भजन। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:30 होने को हैं। हम आपको बता दें कि एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं उदित नारायण की आवाज में और प्यार हो गया फिल्म के इस गीत के

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में

मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक एस जे PGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही

0: मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: आशिकी फिल्म से कुमार सानू की आवाज में कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुन रहे थे। इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 46.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में

0: केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में

0: सोमवार को पेश किया जाए गया था।
1: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली

में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% जीएसटी को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्नपत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।

0: नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। आज इस कार्यक्रम में पहला गीत नाइट इन लंदन फिल्म से, आनंद बख्शी के बहू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, गायक स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

अगले गीत में मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले की आवाज है। लाट साहब फिल्म के ये गीत हसरत जयपुरी का रचा हुआ है, धुन शंकर जयकिशन की।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता। सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अगला गाना हमराज फिल्म से हमने चुना है। साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, आवाज महेंद्र कपूर की।

फर्ज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, आनंद बख्शी की बहू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आपके लिए कार्यक्रम में। आइए अब आपको सुनवाते हैं सीआईडी 909 इस फिल्म का गाना, एसएच बिहारी का लिखा हुआ, धुन ओपी नैयर की है, गायक कलाकार आशा भोसले और महेंद्र कपूर।

आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं अराउंड द वर्ल्ड, इस फिल्म का गाना। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीतकार शंकर जयकिशन, गायक स्वर मुकेश और शारदा के।

0: कैसी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी आवाज है, फिल्मों में क्यों नहीं आते। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में आ गया।

0: कोचों में ओ हो जब चले तो।
1: सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे

क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी, 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते, और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हाँ कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म।

दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, जो फिल्म में बिरजू की माँ का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह कर लिया।

सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती, डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार। सुनील दत्त के करियर के कई चरण हैं, आइए

उस दौर की बात करते हैं जब बी.आर. चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुमराह।

सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं।

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: बोला, तुम गाने में हमको हराया, हाँ, तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या?

0: तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या?
1: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
0: तुम खोपड़ी तोड़ेंगे?
1: हाँ।
0: तुम हमारा खोपड़ी तोड़ेंगे?
1: हाँ।
0: तुम तोड़ेगा?
1: हाँ।
0: पीछे काय को झगड़ा करना जी?
1: हाँ।
0: बोला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
1: तुम ठीक कहते हो।
0: देखो एक चौकरा एक चौकरी गार्डन में घूमता है तो फिर कबाब में अड्डी काय को?
1: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
0: बोला आगे नहीं आना।
1: हम आएगा।
0: आगे नहीं आना।
1: आएगा।
0: तुम आगे आएगा?
1: आएगा।
0: तुम आएगा?
1: आएगा।
0: अच्छा तो फिर हम पीछे जाएंगे जी।
1: अबे तुम कैसे पीछे जाते हो? ये कसरत का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार। यो यो यो यो यो यो यो।
2: सन 1965 फिल्म

सन 1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल राय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है जो उनसे ये गाना सुन रही है।

0: दौर ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थीं। तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते हैं प्यार के।
1: खामोशियां

इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई थी।

सन 1971 में सुनील दत्त ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की ये फिल्म है रेशमा और शेरा। संगीत जयदेव।

सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा। सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए। सन 1976 नागिन। सन 1979 जानी दुश्मन। और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान। सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया, रॉकी। 26 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई फिल्म रॉकी, जिसके जरिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थीं। इधर रॉकी फिल्म रिलीज हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की मां नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए।

0: सुनील दत्त ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जगजीत, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात कर ली जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।
1: एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
0: 90 के दशक में सुनील दत्त की दो बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आगे चलकर सन 2007 में आई राजकुमार हीरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई MBBS, ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहां उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी मुसीबत से हारे नहीं, डटे रहे और अपने निजी जिंदगी की मुसीबतों के बावजूद समाज की बेहतरी के लिए लगे रहे। सुनील दत्त को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

एक मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज गए हैं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं कुछ पुराने फिल्मी गीत। तो चलिए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं मेरा साया फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज आपको बता दें, आशा भोसले की है।

जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और वाकई बॉलीवुड का वो दौर ना जिसने हमें, हमारे बॉलीवुड को समृद्ध किया, वो अपना वादा निभाता ही चला आ रहा है। सुकून देने वाले संगीत और रूह को यह एहसास कराने वाला शब्द जिसने बॉलीवुड के तमाम गीतों में एक ऐसी मिठास खोल दी जो आज भी सुनने पर हमें उतने ही तरोताजा कर जाते हैं जितने तब किया करते थे। कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में, ताजमहल फिल्म से। आगे बढ़ चलते हैं और एक और उसी दौर का खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म तीसरी कसम से आशा भोसले।

झाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो किप

अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं, तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं, कहिए हाथों में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास है तेरे होंठों की प्यास है ऐ

तू में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

मोहम्मद रफी की आवाज़ में शागिर्द फिल्म से कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। आगे बढ़ चलते हैं और अब आपको सुनवाते हैं आन मिलो सजना फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत, जिसमें आवाज़ है लता मंगेशकर की।

आए दिन बहार के इस फिल्म के इस गीत के साथ ही, जिसमें आवाज थी आशा भोसले की, पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपके रेडियो सेट पे, न्यूज ऑन AIR ऐप से आपके स्मार्टफोन और DTH पर आप आकाशवाणी लखनऊ का ये प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए आज का कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं रामचंद्र भागवत का वायलिन वादन, राग है हमीर।

अभी आप सुन रहे थे रामचंद्र भागवत का वायलिन वादन, राग था हमीर। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में, फिर समाचारों को आप अंग्रेजी में सुन सकते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोबर

0: संवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।